0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। आज का योगा टिप्स। योग में श्वास पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। हर आसन को सहज श्वास के साथ करने का प्रयास करना चाहिए। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हम हमेशा से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर कुछ न कुछ करते आते हैं, चाहे वो खान पान को लेकर के हो, चाहे वो योग अभ्यास को लेकर के हो, चाहे वो मानसिक शांति को लेकर के हो। क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य अगर एक बार गिर गया तो धन भी उसे उठा नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही आज जो कुछ हम लोग लेकर के आए हैं वो आपके लिए तो सबसे सर्वोपरि है ही, खास करके उन सभी के लिए है जो कि जॉब में हैं। आजकल बच्चे कम उम्र में ही उन्हें जॉब मिल जाती है, या फिर बड़े बुजुर्ग हों या छोटे बच्चे, उन्हें क्या हो जाता है कि मोबाइल की लत लग जाती है। मेरा इशारा शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसका निवारण और उसका संचालन हम खुद कैसे कर सकते हैं। संचालन से याद आया, जब हम अपने आप को स्वयं चलाने की कोशिश करते हैं तो ही बहुत सारी चीजें बिगड़ती हैं, बनती हैं। ठीक उसी को अगर हम स्वचालित रूप से करने लगते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, हमारा मानसिक स्तर भी अच्छा होता है और हम अपने मन के मुताबिक काम भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही योग प्राणायाम के साथ में एक ऐसी डिजीज के बारे में जो कि आजकल आम हो गई है। हर घर में हर एक दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम है ही, जो कि है सर्वाइकल। सर्वाइकल सबसे पहले हम जानेंगे कि वो है क्या, क्योंकि सर्वाइकल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देखने से या फिर कहीं घूमने फिरने से, अगर आप कहीं जा रहे हैं और हल्की सी अगर मोच आ गई तो लोगों को लगता है कि हमें सर्वाइकल हो गया है। सर्वाइकल एक्चुअल में है क्या? सर्वाइकल का मतलब है गर्दन का वो हिस्सा, यानी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन के ऊपर 7 कोशिकाएं C1, C7, ये जब सब एक साथ मिलकर के, जब इस हिस्से की हड्डियां, डिस्क, मांसपेशियां या नसों में समस्या होती है तो वो आम बोलचाल में लोग इसे सर्वाइकल कहते हैं। ये क्यों होता है, ये इसके कारण क्या है? जैसे लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर पर झुककर काम करना और एक ही टक उसे देखते रहना, गलत तरीके से बैठना या सोना, आजकल बहुत ज्यादा देखा गया है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, तकिया 2 ले लेना और 2 तकियों पर आराम से लेट करके मोबाइल देखना और घंटों मोबाइल देखना, बढ़ती उम्र के साथ गर्दन की हड्डियों में घिसाव, गर्दन में चोट लगना, लंबे समय तक एक ही मुद्रा में काम करना और बैठना, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? आइए हम आपको वो बताते हैं। गर्दन में दर्द या अकड़न, कंधे और हाथ तक दर्द फैलना, हाथों में झंझनाहट या सुन्नपन का रहना, सिर के पीछे दर्द, गर्दन झुकाने में कठिनाई और कुछ लोगों को तो चक्कर भी आने लगते हैं। ये ठीक हो सकता है, बिल्कुल अधिकांश मामलों में, यदि ये व्यायाम, योग और सही बैठने की आदत से हम इसकी आदत बना सकते हैं। फिजियोथेरेपी और जरूरत पड़ने पर दवाइयों में काफी आराम भी मिल सकता है, लेकिन कहते हैं ना, योग से जुड़े और सही बैठने की आदत डालें तो हमें इन सब चीजों की भी कोई जरूरत नहीं होती है। यदि नस पर अधिक दबाव हो या गंभीर समस्या हो तो आगे जांच और विशेष उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसके कारण आपको लगता होगा कि शायद इसके कारण भी हम बता दें कि ये किन कारणों से होता है। यदि आपको लगता है कि आपको सर्वाइकल है तो ये कुछ ऐसे छोटे मोटे सिम्टम्स होने लगते हैं कि आपको गर्दन में हल्का सा दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा और या आपको उठने बैठने और चलने में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे नियम जो मैं आज आपको बताऊंगी, यानी सर्वाइकल में अपनाने वाले योग्य नियम। गर्दन को लंबे समय तक एक ही स्थिति में बिल्कुल ना रखें। मोबाइल को नीचे झुककर देखने की बजाय आंखों के सामने ही रखें और कम समय के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें। जब भी आप मोबाइल का इस्तेमाल करें तो आप 0 पॉइंट का ही, लेकिन आपको चश्मा लगा करके ही मोबाइल को देखना है। हर 30-40 मिनट बाद 2-3 मिनट का ब्रेक जरूर लें, यदि आप किसी जॉब में हैं या घंटों बैठकर आपको काम करना पड़ रहा है। बहुत ऊंचा या बहुत मोटा तकिया ना लगाएं, पतला तकिया बेहतर रहता है।
अचानक गर्दन झटकने या भारी वजन उठाने से भी बचें। कई बार मैंने देखा है महिलाएं सुबह जब काम करती हैं अपने घरों में, पानी भारी से भारी बाल्टी को यूं ही झटके में उठा लेती हैं, या फिर जमीन पर कोई चीज गिर जाती है तो उसे झटके से झुक करके उठा लेती हैं। तो ये आदतें भी आगे चल करके आपको सर्वाइकल का शिकार बना सकती हैं। रोज 20 से 30 मिनट हल्की सैर करें। पर्याप्त नींद यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त नींद कहलाती है, जो कि हर किसी को लेनी चाहिए। सर्वाइकल के लिए योग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल कई घरों में सुनने को मिला है, देखने को मिला है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको यही कहते हैं कि आप अपना वजन कम करें और योग अभ्यास करें। गिरवा संचालन यानी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाने के लिए यह आसन किया जाता है। आप रोज 15 से 20 मिनट इस आसन को कर सकते हैं, जो कि है ग्रीवा संचालन। दूसरा है ताड़ासन। कई बार बहुत सारी सीरीज में हमने ताड़ासन के बारे में बताया है। भुजंग आसन, मकरासन, मामरी आसन, मांजरी आसन या उसे कैट काउ स्ट्रेच भी कहते हैं, बालासन और अंत में शवासन, जो कि 5 से 10 मिनट हम आराम की मुद्रा में जाकर के इसको कर सकते हैं। अब आता है प्राणायाम की स्थिति। अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम 10 मिनट और 5 मिनट करके आप अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। सर्वाइकल के लिए आज मैं आपको एक डाइट चार्ट भी देने वाली हूं, जो कि सुबह से लेकर के शाम तक का आपको हर एक खाने की डाइट उसमें बताई जाएगी। सबसे पहले तो सुबह गुनगुना पानी, आपको आदत डाल लेनी है कि एक गिलास गुनगुना पानी आराम से बैठ करके सिप सिप करके आपको पीना है। इकट्ठा भी नहीं पी जाना है, थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी सुबह पीना है। 5 से 6 भीगे हुए बादाम, 1-2 भीगे हुए अखरोट और थोड़ी सी किशमिश, इसको आपको रात में ही भिगो के रख देना है। कहा जाता है कि जिन भी लोगों ने इस डाइट को लेना शुरू कर दिया, यानी कि सुबह आपने ड्राई फ्रूट्स और या सूखे मेवे को खाना शुरू कर दिया, जीवन भर जब तक आपकी आयु है तब तक आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अब आते हैं नाश्ते की ओर। दलिया, ओट्स, पोहा, मूंग दाल का चिल्ला और साथ में 1 गिलास दूध, दही या छाछ भी आप ले सकते हैं। दोपहर में 2 से 3 रोटी यानी कि बहुत ही पतली और हल्की रोटी, हरी सब्जी, दाल, सलाद और 1 कटोरी दही अगर आपको नुकसान नहीं करती है तो। शाम को मौसमी फल जैसे सेब, अमरूद, पपीता आदि आप ले सकते हैं। शाम का समय है, 5 और 6 के पहले ही आपको ये ले लेना है। भुने चने या अंकुरित दाल। अब आती है रात की बात, यानी कि रात में हम खाना कैसा लें। रात में हमेशा से हल्का भोजन लेना चाहिए। पतली पतली 2 रोटियां अगर आप खा रहे हैं तो ठीक, वरना 1 रोटी और दाल और सब्जी की क्वांटिटी को बढ़ा देना चाहिए। सोने से 2 घंटे पहले खाना खाएं और सोने से आधा घंटा पहले जिन भी लोगों को लगता है कि वो दूध पीते हैं और उन्हें वो हजम हो जाता है तो दूध में चुटकी सी हल्दी डाल करके दूध का सेवन भी कर सकते हैं। क्या खाएं जिससे हमें और पौष्टिक आहार मिल सके। दूध, दही, पनीर, तिल और अलसी के बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दालें और अंकुरित अनाज और पर्याप्त पानी यानी कि 2 से 3 लीटर प्रतिदिन पानी आपको पी जाना है। इन चीजों से आपको बचना है, जैसे जंक फ्रूट हो गया, तला भुना भोजन, अधिक चीनी और कोल्ड ड्रिंक्स। लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप पर झुक कर काम करना सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। तो ये थी दोस्तों सर्वाइकल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, योग और डाइट प्लान। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस डाइट प्लान और योगासन को आप अपनी जिंदगी में, आप अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में जरूर इसे अपनाएंगे। और उसके बाद में जब आपने अपनाना शुरू कर दिया तो चैट बॉक्स में आकर के हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये डाइट प्लान और योग करने से, अगर आपको सर्वाइकल है और उसमें फायदा हुआ है
तो मैसेज में जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक नई सीरीज के साथ, एक नए योगासन के साथ। तब तक करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज योग पाठशाला में मैं आप सभी को कराने जा रही हूँ, यानी हम सभी मिलकर के करने वाले हैं सूक्ष्म व्यायाम। आप सभी को बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि कई दिनों से हम जो आसन व्यायाम करते आ रहे हैं, काफी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमें काफी उससे आराम है। जब हम किसी भी चीज को तीव्रता से और तल्लीनता से करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वह हमेशा से लाभप्रद ही होता है। आइए हम अपने मन की समस्त शक्तियों को एकाग्रचित करके, एक साथ मिलकर के अपने मन को एकाग्र करेंगे। और अपने मन को एकाग्र करने के लिए सबसे पहले हम एक से दो मिनट का ध्यान, जो कि हम हमेशा से आसन, प्राणायाम और कोई भी आप अगर योग अभ्यास कर रही हैं तो उसके पहले हम करते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है गहरी लंबी सांस भरना है और सुखासन में बैठ जाना है। सुखासन की स्थिति में आने के बाद में हम अपने एकाग्रचित होकर के दोनों आंखों के बीच मध्य त्रिनेत्र पर ध्यान लगाते हुए बोलते रहेंगे,

दोनों हाथों की हथेलियों में घर्षण करने के बाद में इसे चेहरे पे और आंखों में लगाने के बाद में हम आगे के व्यायाम को शुरू करेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम किसी भी योग को करने से पहले, हम किसी भी आसन को करने से पहले, हम किसी भी प्राणायाम को करने से पहले अपने मन में यह धारणा डाल लें कि इस योग अभ्यास से, इस आसन से, इस व्यायाम से हमें समुचित लाभ मिलेगा। क्योंकि आपने ये बात गौर से सुनी होगी, ये एक साइंटिफिक रीजन है कि हम जो सोचते हैं, जो हम करते हैं, उसका सीधा और सरल जो उसका असर होता है हमारे शरीर और हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। ठीक उसी तरह यदि हम किसी भी नई चीज को अपनाते हैं और अगर पहले से ही हम यह मन में धारणा डाल दें कि इससे कोई खास लाभ हमें नहीं मिलने वाला है, इसका लाभ यदि हम लंबे समय तक करेंगे तो ही मिलेगा, तो निश्चित है उसका जो समय है वो तो बढ़ेगा ही और साथ ही साथ में उसका लाभ भी आपको समुचित रूप से नहीं मिल पाएगा। ध्यान योग करने के बाद में योगा मैट पर किसी एकांत वातावरण में जाकर के बैठ जाएंगे और अपने आगे के व्यायाम को शुरू करेंगे। आज दोस्तों, योग की योग पाठशाला में हम जो व्यायाम करने जा रहे हैं वह है सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम को माइक्रो योग एक्सरसाइज भी कहा जाता है। कई बार आपने बड़े बड़े योगा करने वालों को या फिर आपने यूट्यूब चैनल में सुनते कहते सुना होगा कि माइक्रो योगा एक्सरसाइज, कई भ्रांतियां हो जाती हैं, ये माइक्रो योगा एक्सरसाइज क्या है? तो आइए थोड़ा सा, यानी कि हम संक्षिप्त परिचय देंगे सूक्ष्म व्यायाम को लेकर के। सूक्ष्म व्यायाम जो कि योग का एक ऐसा रूप है जो कोमल प्रभावपूर्ण आंदोलन से मिलकर बना है, यह शारीरिक ऊर्जा और मानसिक शांति बढ़ाने में मदद करता है। योग यानी कि सूक्ष्म योगासन जब हम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है हमारी बॉडी लचीली हो जाती है, ताकि हम आगे के सभी प्राणायाम को करने के लिए हमें एक बहुत ही बढ़िया सा सुचारू रूप से एक आसन और प्राणायाम करने के लिए साधन मिल जाता है। शरीर को लचीला बनाने के साथ साथ सूक्ष्म योगासन हमारे सारी बेहतर और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी नियमित रूप से कसरत और योग करने में मदद करता है। साथ ही साथ आइए अब हम आपको बताते हैं कि यह हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपके शरीर को कई शारीरिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। सभी को पता है कि आज के समय में ज्यादातर लोग एक जगह बैठकर घंटों काम कर रहे होते हैं, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ता है। इसके अलावा शरीर के दूसरे अंगों में भी अकड़न और दर्द की समस्या होती रहती है। इन समस्याओं से बचने के लिए और शरीर को लचीला बनाने के लिए आपको सूक्ष्म योगासन का अभ्यास करना चाहिए। इससे पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और साथ ही जोड़ों के दर्द में भी आराम मिल सकता है। सूक्ष्म योगासन आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही करता है, तनाव मुक्त रहने में सहायता करता है, इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। तो आइए सूक्ष्म योगासन में सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि है चक्की चलाना। नाम से ही विदित हो रहा है कि चक्की, जब हम पुराने जमाने के लोगों की तरफ जाएं, अपनी दादी नानी से बात करें, तो पहले मसाले, दाल और गेहूं तक को घर में ही पीस करके यूज किया जाता था। तब कहा जाता है
कि ज्यादातर बीमारियां भी नहीं होती थी, क्योंकि खुद मेहनत करके, मसालों को पीस करके, गेहूं को पीस करके ही हम रोटियां बनाते थे और वो बहुत पौष्टिक हुआ करती थी। समय बदला, दौर बदला, अब घर में चक्की तो दूर की बात है, अब आ गई है मिक्सर ग्राइंडर। जी हाँ दोस्तों, एक प्लग दबाया और मसाला मिनटों में तैयार। पर साथ ही साथ हमारे शरीर में कई ऐसी चीजें उपलब्ध हो गई, पड़ गई, उत्पन्न हो गई, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया। कई लोग अपने ऑफिस में एक जगह पर घंटों बैठ जाते हैं, जिससे होने वाली रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इन सारी चीजों से निजात पाने के लिए आज हम चक्की आसन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप योगा मैट पर सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। यदि आपके पास योगा मैट नहीं है तो आप कोई भी साफ और सुथरी चद्दर बिछा लें। वातावरण को एकांत और सुगंधित में बनाए रखने के लिए थोड़ा सा अनुकूलित स्थान पर जाएं। यदि अगर हो सके तो आप अपने घर की छत पर, क्योंकि सुबह का जो वातावरण होता है वह छत पर बैठिए, आसपास के वातावरण और पेड़ पौधों के साथ बातें करते हुए वातावरण को और सुंदर बनता है। आइए अब हम अपना चक्की चलाना यानी कि सूक्ष्म व्यायाम कैसे किया जाता है बताते हैं। साफ और सुथरी चद्दर पर सुखासन की स्थिति में हम बैठ जाएंगे। आंखें बंद, एकाग्र चित होकर के सर्वप्रथम हम अपनी इंद्रियों को शांत करके यह सोचेंगे कि इस अभ्यास से हमें महत्वपूर्ण लाभ मिलने वाला है। तत्पश्चात हम दोनों पैर को सामने की तरफ खोल लेंगे। पैरों को खोलने के बाद दोनों हाथों को सामने खोल करके हाथों के पंजों को आपस में जोड़ लेंगे। उंगलियों को एक साथ मोड़ते हुए दोनों हाथों को पैरों के पंजों से गोल घुमाते हुए पीछे की तरफ घूमते जाएंगे, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप एक चक्र ले रहे हैं, यानी कि आपने चार चक्र लिए हैं क्लॉकवाइज, तो चार चक्र आपको एंटी क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा, यानी कि घड़ी की सुई की तरीके से एक बार उल्टा और एक बार सीधा। तत्पश्चात आपको हाथों को मोड़ते हुए पीछे रीढ़ की हड्डी को मोड़ते हुए सीधे हो जाना है, फिर गोल गोल घूमते हुए हाथों को घुमाते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाना है। चक्की नुमा में जब आप आएंगे तो आपको खुद प्रतीत होगा कि जैसे पुराने जमाने की औरतें चक्की में गेहूं पीसती थीं, वैसे ही सेम आपको लगेगा। प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटते हुए सुखासन की स्थिति में हम बैठ जाएंगे। तत्पश्चात हम पुनः अपनी योग अभ्यास की स्थिति में एकांत होकर के बैठ जाएंगे। यह सूक्ष्म व्यायाम आप किसी भी समय कर सकते हैं, बशर्ते आपको केवल इतना ध्यान देना है कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं। वैसे तो योग अभ्यास का सबसे अच्छा समय सुबह होता है। यदि अगर आप इसे दोबारा करना चाहते हैं, यानी कि हम दिन में दो बार करना चाहते हैं, तो हम शाम का समय इसके लिए अनुचित

की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, साथ ही पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव होता है। सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से आपको जोड़ों के दर्द और हड्डियों की बीमारियों को दूर करने में भी मदद करता है। यह शांति बढ़ाने में बहुत ज्यादा लाभप्रद है। साथ ही साथ सूक्ष्म व्यायाम को हम बता दें कि यह योग शक्ति का स्वाद है। अब आप कहेंगे, योग शक्ति का स्वाद कैसे हो गया? बिल्कुल, योग शक्ति का स्वाद इसलिए क्योंकि हम जब किसी भी और आसनों को करते हैं तो सबसे पहले हम उनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जानते हैं। तो ये था हमारा आज का सूक्ष्म व्यायाम का पहला पार्ट, जो कि आज हमने सभी ने मिलकर के किया, चक्की चलाना। नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। योग योग पाठशाला में 8 दिवसीय आत्म प्रीति में आप सभी का स्वागत है। कल क्योंकि पहला दिन था, जो कि सबसे पहले हम लोगों ने लिया था अद्भुत अनुलोम विलोम, तो अद्भुत अनुलोम विलोम के बारे में बताया था। और आज शिविर का है दूसरा दिन। दूसरे दिन में आज हम आपको बताएंगे कुशल कपालभाति। कपालभाति कुशल क्यों है, हम सबसे पहले उस पे बात कर लेते हैं। चतुर, होशियार, प्रवीण, व्यक्ति जो कुशल होता है, होशियार होता है और चतुर होता है, निपुण, पारंगत और कुशल कारीगरी। अब हम इसको योग के माध्यम से कैसे समझेंगे? कपालभाति, आप सभी को पता है कि कपालभाति नाक से श्वास, गले से संबंधित और पेट से संबंधित सभी क्रियाओं को यह ठीक करता है। तो हुआ ना कुशल, चतुर और पारंगत, यानी कि कुशल कारीगरी। आज हम जिस पे आपको योग कराने जा रहे हैं वो है कुशल कपालभाति। कपालभाति के बारे में हमने आपको पहले भी बहुत सारी प्राणायाम माध्यम से समझाया है, और आज भी हम कुशल कपालभाति को और विस्तार से जानेंगे। पर ऐसे कुशल का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, चालाक, निपुण, विशेषज्ञ, प्रवीण, समझदार, मुबारक हो, शुभ, पवित्र और शिव का दूसरा नाम है कुशल, जो कि नाभि से लेते हुए हमें त्रिनेत्र तक ले जाता है। आपने गौर किया होगा दोस्तों कि जब हम कपालभाति करते हैं तो नाभि से लेकर के त्रिनेत्र तक श्वास की जो गति होती है वो मध्यम से लेकर के तीव्र तक हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। कपालभाति को लेने से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से श्वास को लेते हैं और किस तरीके से

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9216 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: ये कितने का है?
3: ₹5।
2: हमारे पास 2 ही रुपया है, रख लो।
3: आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ,

0: गधा अपने पल्ले बांध न जाए, भाग झिंकी भाग। वहाँ मुफ्त की रबड़ी खाए, देखो अपने रज्जू ताऊ।
1: मक्कल गुमा के मक्खी उड़ाए, रतन और ताऊ दोनों बिकाऊ।
0: छुटकी, भगवान करे वो सुखी रहे और उन दोनों का साया भी हमसे दूर रहे।
1: हर वक्त टोकती रहती है, तू मेरी बहन नहीं भाई है।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: मतलब चांद की चूड़ी से पहले भैया आज विश करना पड़ेगा स्पेशल डे। आज का दिन आपको याद है कि नहीं, आज है 14th of September और आज ही के दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ आज जो है कजरी तीज भी है, जिसकी शुभकामनाएं हम आप सभी को गुड मॉर्निंग गुंडा से प्रेषित कर रहे हैं। सो चलिए भाई, इतनी खूबसूरत सी सुबह है और आज जैसा कि एक्सपेक्टेड था उससे चेंज हुआ। मुझे एक्सपेक्टेड था कि शायद आज भी वैसे ही तेज़ तर्रार धूप निकलेगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसा हुआ नहीं। उस तरह की कोई ऐसी धूप नज़र नहीं आई और फिलहाल बदली से आज के दिन की शुरुआत हुई। डे में बताया तो आज जो है वो ऑफकोर्स हमारा मंडे है और आज के मंडे का स्पेशल थॉट ऑफ द डे हम आप तक ज़रूर पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भैया आज का थॉट ऑफ द डे आप तक पहुंचने वाला है और बड़ा ही खूबसूरत है आज का मंडे स्पेशल थॉट। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या है, सोचना भी चाहिए और अच्छी बात भी है और मुझे बताना भी चाहिए कि भाई आज का स्पेशल थॉट ऑफ द डे आपके दिन को कैसे ज़्यादा स्पेशल बनाने वाला और क्या आज अलग होने वाला है। सो यस, आज का जो थॉट ऑफ द डे है वो दरअसल कहता है कि जिंदगी को पीछे मुड़कर समझा जा सकता है, जिंदगी को पीछे मुड़कर समझा जा सकता है, लेकिन जिया हमेशा उसे आगे की तरफ ही जाता है। कितनी प्यारी बात है, कितनी खूबसूरत बात है, कितनी फैक्चुअल बात है, कितनी सच्ची बात है ना, कि जिंदगी को पीछे मुड़कर समझा जरूर जा सकता है कि जिंदगी क्या है, कैसे गुजरी, क्या सोचा, क्या मिला और क्या नहीं मिला, लेकिन जिया हमेशा उसे आगे की तरफ ही जा सकता है। अगर जिंदगी जीना है तो आगे की तरफ ही बढ़ना होता है और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता है। ये कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का, आज की सुविचार का। आई होप कि ये सुविचार आपको ज़रूर पसंद आने वाला है और इस बात को आप पुख्ता मानने भी वाले कि हाँ ऐसा होता है कि ज़िंदगी को जब समझने की बात होती है तो पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन जहाँ जीने की बात आती है वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, समय के साथ आगे बढ़ते रहना। जी हाँ, और ये इतना फैक्चुअल है, मुझे लगता नहीं कि इसमें अलग से कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कभी भी जब स्टक हो लाइफ में, कभी जब रुक रहे हों और आप अपनी गुजरी हुई लाइफ को देख करके उसमें जीने की कोशिश करें तो जिया हमेशा आगे की तरफ जा सकता है। बस गुजरी लाइफ को तो समझा जा सकता है, समझने के नज़रिए से अगर आप देख रहे हैं तो बेहतर है, लेकिन अगर आप जीने के उससे देख रहे हैं तो शायद आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पीछे की तरफ जा करके आगे नहीं बढ़ सकते, आगे की तरफ ही जा करके आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत ही सिंपल सा ये रूल है हम सब की लाइफ का। आई होप कि भाई इस बात को कहीं ना कहीं आप भी समझ पा रहे होंगे और पुख्ता तौर पर हम आपसे ये बता दें कि आज का ये थॉट ऑफ द डे बहुत प्यारा है, इसको जितना करीब से समझा जाए उतना बेहतरीन लगने वाला है। तो ज़िंदगी जब जीना हो और ज़िंदगी में जब बढ़ना हो तो आगे की तरफ ही देखिएगा, पीछे की तरफ तो बस लाइफ को समझ सकते हैं। कैसा लगा आज का थॉट ऑफ द डे, चलिए फटाफट से कमेंट करिए और बताइए, मुझे आपके बताए जाने का इंतज़ार है। और एक बार वापस से आप सभी को हिंदी दिवस और कजरी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: गल मिठी मिठी बोल। तो भैया चलिए मिठी मिठी तो हम बातें करते हैं, वैसे भी हम अक्सर ही मिठी मिठी बातें करते हैं, वो भी मॉर्निंग वाले टाइम में तो कुछ ज़्यादा ही होती रहती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज के आपके थॉट ऑफ द डे के रिएक्शंस की तरफ और साथ ही विशेस की तरफ, क्योंकि आज आप लोगों ने जो रिस्पॉन्सेज दिए हैं उसको लेकर के हम बताने वाले हैं कि चैट पर क्या क्या मैसेजेस आ चुके हैं एंड यस क्या कुछ लिखा है, क्योंकि आप हमको ट्यून करते हैं फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। सो उसी एप्लीकेशन पे जो कुछ आप लिखते हैं हम तक सीधे पहुंच जाता है। क्या कुछ लिखा है चलिए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो अरविंद जी लिखते हैं फ्रॉम मनकापुर से कि व्रत है शिव गौरी के अमर प्यार का, त्योहार है सुहाग और मनमोहक श्रृंगार का, भोलेनाथ और माता पार्वती का मिले आशीर्वाद, सदा खुशियों से आबाद रहे आपका परिवार। कजरी तीज की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी को, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, आपका भी शो में स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। महेंद्र देपन फ्रॉम राजस्थान से मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग। सुबह का एक छोटा सा संदेश आपने लिखा है, हर दिन नई उम्मीद लेकर आता है, बस जरूरत है तो बीते कल को पीछे छोड़कर आज को मुस्कुराकर जीने की, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो हौसला हमेशा उनसे बड़ा रखिए। क्या बात है, आपका भी स्वागत करते हैं मॉर्निंग स्पेशल शो में। आशु जी हैं लखनऊ से, सुंदर सुबह का प्यार भरा नमस्कार सर जी, आपको भी नमस्कार। और एक ताजगी, एक एहसास, एक खूबसूरती, एक आस, एक आस्था, एक विश्वास, यही एक अच्छे दिन की शुरुआत है। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया लिखा, थैंक यू सो मच। और इसके बाद में सविता दुबे जी मौजूद है, लिखा है आज कजरी तीज, गणेश चतुर्थी और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आज गणेश चतुर्थी भी है भाई, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड सविता जी आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके बाद आप लिखा, मैंने समाचार सुना गणेश चतुर्थी है, हाँ बिल्कुल है, बेशक है। प्रीति शुक्ल जी फ्रॉम बहराइच से लिखती हैं, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग, 100% सत्य बयां करता हुआ ऑसम थॉट, थैंक यू सो मच कि आपको बहुत अच्छा लगा आज का ये थॉट। अंबर गोयल जी है, गर्ल हिंदी में बोल, अदल में ये गर्ल नहीं कह रहा, GIRL गर्ल नहीं कह रहा, ये GAL गर्ल कह रहा, गर्ल मतलब बात पंजाबी में, तुसी की गल किंदा है ना। तो इसके बाद जो है सविता जी लिखती हैं, सुविचार बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और अंबर जी हैं, सुप्रभात आरजे अदनान जी, सुप्रभात। एंड साथ ही साथ आप लिखती हैं आशु जी कि जिंदगी में कितने भी आगे निकल जाए फिर भी सैकड़ों लोगों से पीछे रहेंगे, जिंदगी में कितने भी पीछे रह जाए फिर भी सैकड़ों लोगों से आगे रहेंगे, अपनी जगह का लुत्फ उठाएं, आगे पीछे तो दुनिया चलती ही रहेगी। वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच कि आपको भी थॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए भाई, इतनी खूबसूरत अब बातें चल चुकी है, इतनी बेहतरीन मोड़ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, तो क्यों ना कुछ बहुत बेहतरीन बेहतरीन से आपको सॉन्ग्स सुनाए जाएं, साथ में मिल करके एंजॉय किया जाए और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए, है ना। सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आज है मंडे और मंडे को कहते हैं कि भैया अगर आपने प्रॉपर एंजॉय नहीं किया तो फिर आपका पूरा वीक ऐसे ही रहने वाला है, और हम ये तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसा वीक पूरा का पूरा गुजर जाए। तो चलिए भाई, आपको ले चलते हैं अब अगले नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ और एंजॉय करते हैं म्यूजिकल ट्रैक आपके अपने गुड मॉर्निंग गुंडा शो में। स्टे ट्यून्ड।

0: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर।
1: हेलो,
2: अरे कहाँ हो तुम?
1: अरे तुम हो, अरे तुम्हें वो ज्वेलरी शॉप याद है ना, जहाँ तुम्हें एक बार मैं लेकर गया था?
2: कौन सी?
1: अरे जहाँ तुमने वो हीरे का हार पसंद किया था।
2: हाँ, याद है।
1: लेकिन तब मेरे पास पैसे नहीं थे।
2: हाँ।
1: और मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन तुम्हें ये हार जरूर दिलवा दूंगा।
2: काश आदमी कुछ और मांग लेती। जी हाँ याद है।
1: मैं बस उसी के सामने वाले सलून में बाल कटवा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा।
3: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सुबह 80s वाला अभी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पूरी तरह से छा चुका है, चल चुका है, और हर कोई अपनी तस्वीरों को देख देख कर खुश है। और यही बात कि अगर 50 साल पहले 60 साल पहले आते तो फिर कैसे दिखते, है ना। इसकी चर्चाएं जो है वो ज़ोरों पर है। पर अगर 80s की बात करें तो 80s का जो दौर था, अभी तो 2026 में हम सभी चल रहे हैं, लेकिन अगर आज से 45-50 साल पहले की बात अगर हम करें तो 80s के दौर में उसकी अपनी टेक्नोलॉजी, उसका अपना एरा, उसकी अपनी वाइब और बहुत कुछ था। तो चलिए उनमें से कुछ बातों को तो हम आप तक ज़रूर पहुंचा देते हैं, और कुछ वक्त के लिए आज के इस मंडे चलते हैं वापस से 80s में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

मुझे अभी भी याद है, आज से लगभग 12-14 साल पहले मेरी फ्रेंड का जो स्कूटर था, वो जब निकालता था उसके फादर का वो स्कूटर, चेतक बजाज का, तो मुझे ये पता ही नहीं होता था कि आखिर ये स्कूटर झुका के ही क्यों चलाया जाता है। अक्सर जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी तो वो इंजन साइड नीचे करता था गाड़ी, और उसके बाद फिर गाड़ी को स्टार्ट करता था, फिर किक मार में स्टार्ट हो जाती थी। सो एटीस का वो व्हीकल वाला जो झुक कर चलता था, जब तक झुकेगा नहीं तब तक चलेगा नहीं, ऐसा उसको देख के याद आता है। एंड लिटरली मतलब वो जो स्कूटर आती थी बजाज वाली, अगर आपने भी ध्यान दिया हो, एंड डेफिनेटली आपको पता होगा, जब उसको ऑफकोर्स ले करके थोड़ा झुका लो अपने साइड, उसके बाद ही वो बढ़ती थी, उसके बाद वो चल जाती थी अगर स्टार्ट नहीं होती थी। मतलब ये एक अजीब ही टेक्नोलॉजी थी, वो क्या था मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि हाँ ऐसे करके ही चलती थी, क्योंकि ये मैंने खुद अपने फ्रेंड को करते हुए देखा। जब वो स्टार्ट करता था स्कूटर तो वो इसी तरह स्टार्ट करता था और ऐसे ही होके तब चलती थी। इसके अलावा 80s का एक बहुत बेहतरीन एक एरा रहा था, और तब पड़ोसियों का नेटवर्क होता था। जी हाँ, और तब पड़ोसी क्या करते थे कि ओ गुड्डू मम्मी को भेज, तेरे मामा का फोन है। मतलब इस तरह जो है वो पड़ोसी बताया करते थे कि उनके घर में फलाने तुम्हारे रिश्तेदार का कॉल आया है, तो फिर आवाज लगा दिया करते थे विंडो से चिल्ला करके, बोल करके, और लोगों तक पहुंच जाती थी। सो फिलहाल ऐसा ही था, तब लोगों का नेटवर्क था, यानी फिर कम्युनिकेट डिवाइसेस इतनी नहीं करती थी, उससे कहीं ज़्यादा कम्युनिकेट हम आपस में इंसान करते रहे थे। उसी दौर में जब 80s की बात आती है तो फिर वो आपको एंटीना वो टीवी भी याद आती होगी, कुबड़ वाली अगर हम टेक्निकल भाषा में बोले तो CRT, यानी 80s का वो टीवी जो क्लियर नहीं पर प्योर ज़रूर होता था। आया नहीं, अरे अब आया नहीं, नहीं आया, आया आया आया नहीं, नहीं चला गया वापस से। ये एंटीना ठीक किया होगा आपने भी, या आपने ठीक करवाया होगा, और भाई बहनों ने मिलके ऐसे किया होगा। एक एंटीना को हल्का टिल्ट कर करके देखा करता था तो दूसरा नीचे से रिस्पॉन्ड करता था, फीडबैक देता कि आया या नहीं आया, और इसमें ही आधा शो जो निकल है वो जाया करता था। यानी अगर आधे घंटे का शो है तो 10 मिनट से 5 मिनट तो इसी में चले जाते थे। इसके अलावा 80s की मेल की अगर बात करें, आज तो हम जीमेल यूज कर रहे हैं और कई सारे मेल्स के प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, लेकिन 80s के मेल की बात करें तो वो मेल जो है जो बगैर नोटिफिकेशन के आती थी वो क्या थी, डाकिया डाकिलाया, डाकिया डाकिलाया, यस। एंड इसके अलावा आपको एक और बात बताए जो सबसे बड़ी बात उस दौर की थी, वो थी म्यूजिक को लेकर के, जिसके सुर ताल उलझ जाते थे। यानी वो कैसेट जिसमें पेंसिल डाल करके कई बार उसको वापस से सही करना पड़ता था, तो ऑफ कोर्स 80s का वो दौर म्यूजिक के लिए भी लाजवाब था। नई नई कैसेट्स आती थी, कैसेट्स एक दूसरे से लोग बदलते थे, और उसके बाद अगर उलझ जाए तो पेंसिल मांग करके उसको सही करते थे, उसको घुमा करके रील अंदर करते थे ताकि वो कैसेट जो है वापस से चलने लायक बन जाए। सो फिलहाल ये दौर बड़ा ही खूबसूरत था अपने वक्त में, और इसका आज भी कहीं ना कहीं जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं तो ये हमारे 90s तक आया, 2000 के बाद तक ये आया और कुछ टाइम तक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ बदल गया। पर न जाने क्यों आज भी मेल मिलाप की जब बात आती है, यादों की बात आती है, फीलिंग की बात आती है, तो हम पुराने दौर की तरफ ही भागते हैं, क्योंकि तब इंसान खुद के लिए ज़्यादा वक्त निकालता था, तब इंसान चीज़ों को फील ज़्यादा करता था। अब इंसान ने एडवांस होने के चक्कर में, मॉडर्न बनने के चक्कर में इतना खुद को बिजी कर लिया है कि उसको ना खाने का होश रहता है, ना किसी से मिलने का ठिकाना, बस करते चले जा रहे हैं। अब क्या पाना है ये तो ना आपको पता है ना हमको पता है, लेकिन अब चूंकि दुनिया चल रही है तो बस हम भी चल रहे हैं, कुछ ऐसे ही रहता है। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अपने लिए अपनों के साथ में क्या बात है। चलिए अगर ये होता है तो हम तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। यस, सो फिलहाल 80s का दौर तो बहुत कुछ कहता है,
80s का दौर, तो वापस से उन सभी यादों को ले आया जिनको लेकर के अभी हमने आपसे जिक्र किया। मुझे लगता है कुछ और ऐसी बातें होंगी, कुछ और भी ऐसी चीज़ें होंगी जिसको आपको याद आता होगा, क्योंकि अगर आप भी 80s के दौर से बिलोंग करते हैं या 80s के बाद में आए लेकिन आपको 80s की चीज़ों को हमेशा बताया गया घर में आपके, तो आप भी साझा कीजिए ना। म्यूज़िक के बारे में हमने बता दिया, इसके अलावा इसके अलावा हमने व्हीकल के बारे में बता दिया जो स्कूटर झुका के ही चलता था, बजाज वाला। इसके अलावा हमने फ़ोन का नेटवर्क बता दिया और टीवी का भी हमने बता ही दिया है, और साथ ही साथ मेल के बारे में भी हमने जाना। तो भाई इतनी सारी चीज़ों को हमने 80s का जो है वो बता दिया है, जो कि कहीं ना कहीं 80s का एक नॉस्टैल्जिया है। तो चलिए फिलहाल इस नॉस्टैल्जिया में आपको क्या क्या याद है, 80s की अगर कुछ यादें हैं और अगर कुछ आप साझा करते हैं तो मुझे लगता है उस दौर में हम वापस से जा सकते हैं कुछ वक्त के लिए। जिस टाइम मशीन की बात करते हैं, जिस पार की बात करते हैं, वो हमारी यादों में मौजूद है और हम उसमें जा सकते हैं। तो क्या ख्याल है, मिलकर चलें? चलिए, अगर आपकी भी कुछ यादें हैं तो ज़रूर बताइए।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशन्स ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840333।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हर सफर सुबह शाम।
1: तो भाई आ ही जाती सुबह शाम जब ये गुजरे हुए जिंदगी के कुछ पल इतने हसीन होते हैं कि मुड़ करके हम वहीं 80s की यादों में पहुंच जाते हैं। सो फिलहाल कुछ आपके रिस्पॉन्सेज भी आ गए हैं और आपने बयां भी किया है, कुछ बातों को कहा भी है। चूंकि मैंने आपसे पूछा था 80s की कुछ व्हीकल के बारे में, टीवी के बारे में, म्यूज़िक के बारे में हमने आपको बताया था, तो आपने भी रिस्पॉन्ड किया है। क्या लिखा है आइए बताते हैं।
2: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, RJ Khan.

आशु जी कहती हैं, सर जी पहले बहुत एकता थी, अब तो एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं। इसके बाद सविता जी कहती, सर आपने मेरी आंखों के सामने बचपन दिखा दिया, थैंक यू। और आशु जी कहते, बिल्कुल सर जी आप एक एक बात सही कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही आपने लिखा है कि सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एंटीना घुमाते घुमाते इंसान वैसे ही थक जाता था। बेशक सही फरमाया आपने कि कहीं ना कहीं एंटीना सही करते करते ही हमारी इतनी ज़्यादा थकान हो जाती थी कि अब सोचते थे भाई अब प्रोग्राम आना है या नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा जल्दी होती थी कि भाई अपना फेवरेट प्रोग्राम छूट ना जाए, ऐसे जो मैस्डअप सिग्नल होते थे उनके बीच ना चला जाए, तो ये सिग्नल जल्दी से सही हो जाए और उसके बाद हम अपना प्रोग्राम ज़रूर देखें। और सबको टाइमिंग पता होती थी इवन अपने शोज़ की, कि कब किसको देखना, मम्मी को अपने प्रोग्राम की, पापा को अपने प्रोग्राम की, हम लोगों को अपने प्रोग्राम की। अच्छा जब तक दूरदर्शन पे था चीज़ें तब तक ख़राब नहीं थी, क्यों? क्योंकि सबका अपना टाइम बना हुआ था, उसी टाइम पर ही सब आते थे। पापा के अपने न्यूज़ का टाइम तो वो न्यूज़ देख रहे हैं, मम्मी के अपने सीरियल का टाइम तो वो अपने सीरियल्स देख रही हैं, बच्चों का अपने कार्टून्स का टाइम या इस तरह की स्टोरीज़ का टाइम तो भाई हम वो देख रहे हैं। इसमें बहुत मज़ा आता था। और जब छतरी लगी, डिशेज आई, उसके बाद झगड़े, हम ये वाला चैनल तो हम ये वाला चैनल, क्योंकि फिर डेडिकेटेड चैनल्स हो गए। लेकिन कुल मिलाकर के बचपन बहुत ही बेहतरीन बीता। और एटीज की जब हम बात करते हैं तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो आज तक हमारे साथ में चल रहा है। एंड आई होप कि आपको भी कुछ ऐसी यादें रही हों, मे बी फैशन को लेकर के रहा हो कि फैशन उस दौर का कैसा था, क्योंकि अभी आप जब से AI से बना रहे हैं तो आपको एक अंदाज़ा होता जा रहा है कि भाई उस वक्त के जो यंगस्टर्स होते थे वो किस तरह के फैशन को करते थे, और आज के फैशन को हम लोग खुद ही अपने सामने से देख रहे हैं, तो कितना ज़्यादा डिफरेंसेस हैं 80s के फैशन में और आज में। ऐसे ही बहुत कुछ था जो पुराना था और उसको लेकर के उसका इस्तेमाल करना, उसमें खोए रहना, वो एक अलग ही दौर था जिसको शायद आप भी अगर फील करेंगे तो बताने वाले। फिलहाल 80s की तो हमने बात बताई कुछ चीज़ों के बारे में, लेकिन फिलहाल अब हम बताने वाले हैं आपको कुछ वक्त बाद इंस्टाग्राम के नए अपडेट्स के बारे में। जी हाँ, अब दूसरों की फ़ोटो पर बिना रीपोस्ट किए आपका भी हक होगा, आ गया है एक ऐसा फीचर। तो चलिए 80s से छलांग वापस से लगा के इसी दौर में आने वाले इंस्टाग्राम की नई अपडेट्स की तरफ। लेकिन आपको क्या करना है भाई, आज तो छुट्टी घर पे है, बने रहना है गुड मॉर्निंग गुंडा शो में आरजे अदनान के साथ और एंजॉय करना है आपको अपना गुड मॉर्निंग गुंडा रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर, क्योंकि ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और आपको बताने वाले थे भाई इंस्टाग्राम के अपडेट्स के बारे में, जो नया नया आया है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम का हो सकता है। तो भाई देर किस बात की, चलते हैं इंस्टाग्राम के नए अपडेट्स की तरफ और बताते हैं कि भाई अपडेट में क्या कुछ है जो आपके लिए इसको और भी ज़्यादा खास बनाने वाला है ना। चलिए लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, आपने ट्यून कर लिया है ऑफ कोर्स अपना 89.6 FM और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग वाला शो गुड मॉर्निंग गोडा विद योर मॉर्निंग चॉक आरजे अदनान लाइव। तो भाई, इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स के लिए एक नया और काम का फीचर फिलहाल जो है वो पेश कर दिया है। जी हाँ, वही इंस्टाग्राम जिसको अक्सर आप स्क्रॉल किया करते हैं, जिसकी रील्स देख करके आपको लगता हो हो लाइफ का इतना बड़ा बड़ा ज्ञान मिल गया, ओहो, जिसको देख करके आपको लगता है ओहो इतने आराम से किसी भी रेसिपी को ट्राई किया जा सकता है और न जाने क्या कुछ इंस्टाग्राम पे तो चलता ही रहता है। लेकिन इसी बीच इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। सो इस नए फीचर की मदद से अब यूजर्स जो है उन पोस्ट को भी अपने मेन प्रोफाइल ग्रिड पर दिखा सकेंगे जिनमें उन्हें टैग किया गया है। जी हाँ, इसके लिए पोस्ट को फिर से अपने अकाउंट से शेयर या फिर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी सीधी सी बात है, अब वो यूज़र्स भी उन पोस्ट को अपने मेन प्रोफाइल ग्रिड पर दिखा सकेंगे जिनमें उन्हें सिर्फ टैग किया गया है। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको रीपोस्ट करना पड़े या वापस से अपने अकाउंट से शेयर करना पड़े या अपलोड करना पड़े, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। बल्कि इस फीचर के थ्रू जो भी आपको टैग करेंगे वो आपके मेन ग्रिड पर भी दिखाई देगी। यानी आपका जब कोई मेन ग्रिड खोलेगा, ओपन करेगा, तो उसमें वो वीडियोस भी शामिल होंगी जिसमें आपको टैग किया गया है। इसके लिए अलग से अब आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। यही नया फीचर है और मुझे लगता है भाई ये सच में काफ़ी ज़्यादा काम का होने वाला, क्योंकि कई ऐसे पोस्ट्स होते हैं जिसको लेकर आप सोचते हैं वापस से करना पड़ेगा पूरा। और अब इन्हीं चीज़ों को दूर करते हुए फिलहाल इंस्टाग्राम ने ऐसा नया फीचर लॉन्च कर दिया, मे बी आपके बहुत ज़्यादा काम का हो, है ना। सो यस, ऑफ कोर्स काम का क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसे कई सारी बातें हैं जो मुझे लगता है कि आप सोचा करते थे कि भाई अगर ऐसा हो जाएगा तो ज़्यादा ऑफ कोर्स अच्छा रहेगा। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि ये फीचर आपके काम का हो और आप नेक्स्ट टाइम जो है इतनी ज़्यादा जहमत ना उठाएं, बल्कि फटाक से जो आपको टैग करे वो आपके मेन ग्रिड पर भी शो होने लग जाए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो जाहिर है आपके लिए काफ़ी बेहतर है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये अच्छा तो चलता ही रहने वाला है। फिलहाल आपको ले चलने वाले हैं एक और खूबसूरत से सॉन्ग की तरफ, और मुझे लगता है ये सॉन्ग भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आंखें आने वाला है, क्योंकि ये सॉन्ग अपनी अलग एक वाइब लेकर के आता है। कुछ सॉन्ग्स होते हैं ना जो कहीं ना कहीं अपनी तरह की चीज़ों को ले आते हैं, जिनको सुना जाए तो लगता है कि वाह वाह वाह क्या बात है, इस सॉन्ग की तो अपनी ही ज़्यादा वाइब है। और ऐसी ही वाइब्स को जब लेकर के कुछ सॉन्ग्स हाजिर होते हैं तो लगता है क्या बात है, इनको तो बस सुनते रहने का बहुत ज़्यादा मन होता है। और ऐसे कई सारे सॉन्ग्स इवन आपके मॉर्निंग शो में प्ले भी होते हैं और आप सुनते भी हैं और उसके बाद आप अप्रिशिएट भी करते हैं और आपको अच्छा भी लगता है, क्योंकि आपको ये सॉन्ग्स पसंद आते हैं, ये सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बेहतर लगते हैं। उनमें से ये एक सॉन्ग है जो अपने टाइम में जैसे ही रिलीज़ हुआ था, जैसे ही आम लोगों तक पहुंचा था, उसके बाद भाई धूम मच गई थी। जी हाँ, यकीन मानिए धूम मच गई थी, क्योंकि ऐसा सॉन्ग ही होता है कि भाई कई सॉन्ग्स धूम मचा देते हैं। उनमें से फ़िलहाल एक बड़ा ही खूबसूरत सा ये नगमा आपके लिए हम पेश कर रहे हैं आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गुना में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। स्टे ट्यून्ड।

0: सारी तनख्वाह खर्च कर डाली।
1: बची है पूरे 8 आने। धुन सुनाओ ना।
0: अरे नहीं,

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन

0: See, you're a natural.
1: वो तो मैं हुई. अच्छा बाकी सब रिकॉर्डिंग में संभाल लेंगे. हाँ सौ लिए हैं.

साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हाँ जी, तो फिलहाल हमने आपको अनाउंस किया था, बताया था कि भाई आज है हिंदी दिवस यानी 14 सितंबर। तो चलिए आप 10:30 बजे से यानी 10:30 से हम आपकी कॉल लेने वाले हैं और आज सीधे सीधे आप हर वो चीज़ कहिएगा जो हिंदी के बारे में होगी, यानी बहुत पॉइंट टू पॉइंट, बहुत शॉर्ट कट टू कट बात हम करेंगे। अगर आपको कोई कविता सुनानी होगी या कुछ दोहा कहना होगा और हिंदी के महत्व को समझाना होगा तो आप 10:30 से 11 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं 6393 3164 पर, यानी 6393 3164 29 पर। सो हमें आपके कॉल्स का इंतज़ार रहेगा 10:30 से 11 बजे के बीच में। फिलहाल सुनते रहिए अपना गुड मॉर्निंग गोंडा अपने मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM पर, क्योंकि ये है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल 7234020202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9260 9761 9260 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: और बात करते करते देखा भाई, ठीक इस वक्त अगर हम स्टूडियो की बात करें तो 10:30 हो चुके हैं। 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड अब चल चुका है। चलिए फटाफट से आप कॉल कर सकते हैं 6893 पर, यानी 6393316429 पर। सो यहाँ पे अब आप कॉल करने वाले हैं। और आ चुकी है 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस। सो इस ख़ास दिन को और भी ज़्यादा ख़ास बनाने वाली हैं आपकी बोलने वाली कविताएं, आपके दोहे। यानी हम सीधे सीधे जो बात करने वाले हैं वो हिंदी के किसी कंटेंट को आपसे सुनने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप भी दिलचस्पी ले रहे हैं और कुछ सुनाना और बताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है 89.6 FM के मॉर्निंग वाले शो में, हिंदी दिवस स्पेशल शो में, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हिंदी दिवस। और इसके बाद हम आपसे अब लगातार जुड़ते रहेंगे 10 बजे तक के बाद से, यानी 10:30 से 11 बजे तक लगातार हम कॉल इन प्रोग्राम में आपसे बातचीत करते रहेंगे। और इसके बाद फिर हम आपसे ले लेंगे विदा 11 बजे। यानी अब ये शो जो लास्ट तक चलेगा वो कॉल इन प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें आपकी हम कॉल्स लगातार लेते जाने वाले हैं। तो चलिए इसी बीच में देखते हैं कौन कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं और देखते हैं कि भाई वो क्या कुछ सुनाने वाले हैं और क्या कुछ उनको अच्छा लगता है। हाँ जी, हेलो,
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे?
0: बहुत बढ़िया। आपको भी हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।
0: थैंक यू सो मच। तो आज क्या सुनाने वाली हिंदी में आप?
1: हिंदी में सुनाएंगे, बोलूंगी।
0: हाँ जी, मतलब कोई कविता या कोई श्लोक या कोई दोहा?
1: सर बताएं सर, तो हम रात भर सके।
0: अच्छा,
1: तो आए 5 बजे।
0: ऑल राइट, तो अभी कुछ कहना चाहेंगे आप हिंदी दिवस के वो लेकर के?
1: हिंदी तो हमारी मातृभाषा।
0: ओके, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको कॉल किया।
1: थैंक यू सर।
0: थैंक यू। सो भाई चलिए, आप भी कॉल कर सकते हैं और आप भी कोई कविता या कोई स्टोरी जो छोटी सी हो जिसको हम सीधे सीधे हिंदी दिवस से जोड़ सके उसको लेकर के बात करते हैं और अगली कॉल को जोड़ते हैं, देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी, हेलो,
2: हेलो
0: जी, गुड मॉर्निंग।
2: सुप्रभात।
0: आपको भी, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आज उपास भी हूँ, आज तृतीय रकम के पर्व है तो अच्छी हूँ, खुश हूँ।
0: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हिंदी दिवस पर आप क्या सुनाने वाली हैं?
2: मैं कविता सुनाऊंगी।
0: प्लीज सुनाइए।
2: मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, 2-3 रखा कर जाएगी।
0: वाह क्या बात है, आपने न सिर्फ हिंदी दिवस की मुबारकबाद दिलाई बल्कि आपने सीधे तौर पर बचपन में भी ले गई। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क में आप और आ जाएं। अभी ठीक है। वापस से प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा दिक्कत कर रही है वॉइस आपकी।
2: आपको ढेर सारा।
0: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई आपने कॉल किया और मछली जल की रानी जो है वो सुनाया कविता, और ये कविता हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई, एंड इवन इससे कई सारी मेमोरीज भी जुड़ी है, चूँकि बचपन से ही इस कविता की दीवानगी एक अलग ही किस्म की रही है। तो चलिए अब सीधे चलेंगे अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि भाई अगली कॉल पर कौन है और हिंदी दिवस पर आप क्या डेडिकेट करने वाले हैं। हाँ जी, हेलो,
3: सर जी, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग।

0: क्या नाम है आपका?
1: आशु मिश्रा बोल रही सर जी। हिंदी
0: जी।
1: दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कुछ सुनाएंगे आज हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में?
1: जी सर जी, मेरी छोटी सिस्टर जो है सुत कीर्ति, उसी की लिखी हुई।
0: अरे वाह,
1: कविता है सर जी।
0: बिल्कुल,
1: और प्यारी सी अच्छी कवित्री भी है सर जी, बहुत टैलेंटेड है उसके अंदर।
0: अरे वाह,
1: पढ़ाती भी है सर जी।
0: जी
1: प्रणाम। शिक्षक सबका ज्ञान बढ़ाते, नए नए पाठ सिखाते।
0: एक थोड़ा सा मुझे लगता है आपको नेटवर्क में आना पड़ेगा, क्योंकि अभी वॉइस आपकी बहुत क्लियर नहीं आ रही। प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए आप।
1: शिक्षक को प्रणाम।
0: जी
1: शिक्षक को प्रणाम। शिक्षा सबका ज्ञान बढ़ाते, नए नए नित पाठ सिखाते। हम बच्चे विद्यालय जाते, उससे पहले उनको पाते। करते नहीं कभी वो लागा, बारिश गर्मी या हो जाड़ा। कहते तुम सब अनुमहान, शिक्षक को हम करें प्रणाम। जी सर जी।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही खूब आपने सुनाया अपनी छोटी बहन श्रुति कीर्ति जी का, जो कि आपने बताया कि वो अध्यापिका भी हैं और लिखती भी है, एक तरह से कवित्री भी है।
1: जी सर जी, उसकी बुक भी बहुत छपी हुई है सर जी, और फिर से एक छपने वाली है।
0: अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर, उनको बहुत मुबारकबाद अर्जुन नान की तरफ से।
1: जी सर जी, और उन्हें आई गई असल में वो जा भी चुकी है सर जी।
0: जी जी जी, उनसे मुलाकात है मेरी। बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई शिक्षकों को लेकर के, और बड़ा ही अच्छा लगा। और आपको भी हिंदी दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको बोलने में बड़ी परेशानी आते हो जब आप हिंदी में बोलते हो?
1: अभी ध्यान तो नहीं है सर जी, लेकिन ऐसे बहुत शब्द हैं सर जी तो हम लोग नहीं बोल पाते हैं, अपनी मातृभाषा को ही नहीं बोल पाते हैं।
0: जैसे कई लोग जब गलती हो जाती है तो उसको कहते हैं इसका प्रायश्चित ना?
1: बिल्कुल सर जी।
0: और कई उसको जब नहीं बोल पाते बोलते हैं प्रायश्चित कर लिया।
1: बिल्कुल सर जी। अब आजकल सर जी इंग्लिश बहुत इजी हो गई है सबके लिए, लेकिन अपनी मातृभाषा भूलते जा रहे हैं सब लोग, हिंदी।
0: करेक्ट
1: जी सर जी,
0: बिल्कुल सही।
1: हम लोग भी सर जी पहले हिंदी में ही जैसे जो होते टेबल उबल सब कुछ है, लेकिन अब कोई कह दे कि हिंदी में सुना दो, अब नहीं सुना पाते सर जी हम लोग। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं सर जी वो इस तरह हैं कि हिंदी भी उनकी बहुत अच्छी है, इंग्लिश भी बहुत अच्छी है।
0: अरे वाह
1: जी सर जी,
0: यानी आपने दोनों ही सिखाने पर जोर दिया, तो बच्चे फिर दोनों जानते हैं, जाहिर सी बात है।
1: बिल्कुल सर जी,
0: क्योंकि वो घर में ही सुनते हैं, अगर घर में ही भेदभाव हो रहा है कि ये हिंदी क्यों बोल रहे हो, इस पर ऐसे बोलो, तो बच्चों को फिर वही चीजें आने लग जाती है। थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी बात कही आपने, और बहुत ही अच्छे अंदाज में अपनी छोटी सिस्टर की कविता भी आपने सुनाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो भाई ये तो थी हमारी आशु मिश्र जी फ्रॉम लखनऊ, और देखिए ना कितनी अच्छे से उन्होंने कविता सुनाई। आज चूंकि 14 सितंबर है, यानी हिंदी दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अब आप चाहे तो आप भी कॉल कर सकते हैं, और आप भी सुनाना चाहे तो कोई कविता या कोई दोहा जो आपको बहुत पसंद आता हो, उसका मायने के साथ में कि भाई ये मायने हैं इसके और ये बड़ा मुझे पसंद आता है, तो उसको भी आप कोट करके बता सकते हैं। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी आपको भी हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बादल जी कैसे हैं आप?
2: बस बढ़िया है, अपने सुनाइए।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज क्या सुनाने वाले हैं आप?
2: हमारे यहाँ शायद सत्तू का पराठा बना है।
0: अच्छा अच्छा, नहीं हिंदी दिवस पर आप क्या सुनाने वाले हैं?
2: अच्छा, सुनाने वाले हैं? सुनाने वाले तो ऐसा कुछ नहीं है, शब्दों को लेकर अभी बात किया बोलना, लेकिन शब्दों में बोलना तो कठिन है, वो एक अलग चैप्टर है आज की जनरेशन को। लेकिन सबसे बड़ी जनरेशन समझिए, ऐसे ऐसे शब्द हो गए हैं जो आदमी उसको हिंदी का वर्ड यूज ही नहीं करता, उसको आता ही नहीं है। जनरेशन का क्या है, वंशज वंश जो आगे जा रहा है, उसका हिंदी शब्द ही नहीं आता है जुबान पर कि आदमी कैसे बोले।
0: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे कुछ वर्ड्स आप बता सकते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं?
2: अब एक तो हमने जनरेशन ही बोल दिया, एक वर्ड हो गया।

0: आदमी नहीं बोल पाता है, सामान्य साधारण के लिए सिंपल का यूज करता है, साधारण नहीं बोलता है, सामान्य के लिए कॉमन या जनरल यूज करता है उसको नहीं बोल पाता है, यूज करता बोलता है, उपयोग करना नहीं बोल पाता है।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही कहा।
0: सामान्यतः बोलचाल की भाषा में इतना इंग्लिश मिक्स हो गया है, अब देखिए मिक्स हो गया, मिश्रित नहीं हुआ है, समझिए हम खुद
1: समझ रहे हैं अच्छे से सही कहा।
0: तो ये जो शब्द शब्दावली है लोगों की, जो हिंदी इंग्लिश मिक्स होती जा रही है, ये हमारी हिंदी को सबसे ज्यादा नुकसान दे रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: उर्दू अल्फाज तो हमारे यहाँ थे क्योंकि भाषाएं मिश्रित हो गई थी, काफी और मतलब जो आपके इधर से इराक ईरान सऊदीया से जो भाषा है अरबिक, लेकिन इंग्लिश जो मिक्स हुआ, जबकि अंग्रेजों ने सबसे कम समय में शासन किया भारत पर, लेकिन इंग्लिश बहुत ज्यादा जो है इसमें मेल खुल चुकी है।
1: बिल्कुल, हिंदी शुरुआत से रही है, संस्कृत रही है और उर्दू भी यही जन्मी है, और लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये हुई कि भाई इतने सारे शासन हुए, इतनी सारी हमने सभ्यताओं को देखा कि काफ़ी चीज़ों को हम मिक्स एंड मैचअप करते गए, मतलब कहीं ना कहीं मिश्रित करते गए, और आज बिल्कुल मैशअप लैंग्वेज बोलते हैं, मिश्रित भाषा।
0: और कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आदमी मतलब इंग्लिश के अलावा हिंदी का शब्द उपयोग कर ही नहीं पाता, जैसे एक ऑब्जर्वेशन, कंफ्यूज।
1: सही बात है,
0: कंफ्यूज मतलब भ्रमित। ऑब्जर्वेशन का तो हम खुद ही भूल रहे हैं कि क्या होता है। एक्सपीरियंस अनुभव,
1: अनुभव
0: जी
1: सही बात है। तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनका भी हमको हिंदी ध्यान तक नहीं रह गया कि क्या होता है,
0: क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या ये है।
1: बिल्कुल,
0: मतलब भ्रमित करना तो हमें लगता है कि 99% लोग बोलते ही नहीं होंगे, कंफ्यूज ही बोलते होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो नहीं बोल पाते वो कंफ्यूज बोलते हैं।
0: हाँ, जो नहीं बोल पाते, मिसगाइड करना, ये भी एक भ्रमित करने की वो है।
1: बिल्कुल सही बात है, सही
0: मतलब अगर आप एक जो है बातचीत शुरू करते हैं तो हमें लगता है कोई ऐसी लाइन नहीं है, लाइन अब देखिए फिर हम भी कोई ऐसी रेखाएं नहीं है,
1: कोई ऐसी पंक्ति नहीं है।
0: हाँ, कोई ऐसी पंक्ति नहीं है, देखिए कितनी समस्या हो रही है, हमको खुद हो रही है, मैं अपने को फील करता हूँ।
1: नहीं, क्योंकि हम लोग हैं, सही बात है, ऐसा बोल रहे हैं ना, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है
0: जी। हम ना प्रॉपर इंग्लिश बोल पा रहे हैं और ना ही प्रॉपर हिंदी बोल पा रहे हैं।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही फरमाया आपने, आज के सिनारियों में तो फिलहाल यही चल रहा है, सही बात है।
0: और अगर हम शुद्ध हिंदी बोलने पर आए तो सामने वाला उसको समझेगा भी नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी विपदा है,
1: विडंबना है,
0: विडंबना है।
1: सही
0: समझेगा भी नहीं,
1: सही कहा।
0: हम ऑफिस को कार्यालय बोल रहे तो आधे मतलब जो अभी नई जनरेशन है या बहुत लोग ऐसे हैं वो सोचें कार्यालय मतलब
1: पार्टी,
0: कोई ऑड बहुत पुरानी चीज है,
1: कोई पार्टी का कार्यालय है, कोई
0: कंपनी।
1: राइट राइट राइट,
0: ऑफिस बोलना मजबूरी हो गया, शॉप बोलना मजबूरी हो गया है। दुकान आदमी को जो है शेम फील कराता है, शर्मिंदगी होती है उससे। तो हमारा यही कहना है कि इसको अगर थोड़ा सा लोग अपनी समझदारी से डिफाइन करें, अलग अलग करें तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फरमाया आपने, एंड थैंक यू सो मच इतने वैल्यूएबल पॉइंट्स के लिए बादल जी, बहुत शुक्रिया, और बड़े अच्छे से आपने चीज़ों को डिफाइन किया।
0: ओके, धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका भी, थैंक यू सो मच। और देखिए गोंडा से ही हमारे बादल गोयल जी भी थे, और अब फिलहाल हम चलेंगे अगले कॉलर की तरफ, और चूंकि आज हिंदी दिवस 14 सितंबर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, यानी रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर, तो देखते हैं अगले कॉलर कौन है। हाँ जी, हेलो।
2: हाँ जी, नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बता दें।
2: मैं विजयन शर्मा बोल रहा हूँ, जम्मू संभाग से वयोवृद्ध नागरिक हूँ।
1: जी विदेधन शर्मा जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में, कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, बुढ़ापे की उम्र में जैसा होता है वैसा ही स्वास्थ्य रहता है, थोड़ा बिगड़ा रहता है, लेकिन आप

0: बात करने का बहुत इच्छुक हो जाता हूँ कभी कभी। मैंने पहले भी आपसे बात हुई है मेरी,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: आज मैंने एक विशेष दिन समझ कर आपको कॉल किया है।
1: जी, हिंदी दिवस है और आपने बताया भी बुक्स भी आपकी कई सारी पब्लिश्ड हो चुकी हैं।
0: हाँ, मेरी किताबें कुछ मैंने प्रयास किया रिटायरमेंट के, मैं एक राजकीय अध्यापक रहा हूँ, तो मैं 1991 में रिटायर हुआ, तो उसके बाद मेरा प्रयास रहा कुछ अपने विचार लोगों तक पहुँचाने के लिए। मैंने किताबों का सोचा लिखना, तो किसी ने मुझे प्रेरणा किसी की हुई तो उन्होंने छुपा दी, वो मैंने एक कथा वाची थी, बाद में लंबी वर्षी है, तो उनकी प्रेरणा से मैंने कथा करवाई यहाँ, तो भागवत की, तो उनकी प्रेरणा से मैंने किताबें छुपाई, वो यहाँ 18 किताबें छुपा दी आज तक। अब मेरे पास मटीरियल का मुझे पड़ा होगा 4 किताबों का, लेकिन मैं छुपा नहीं पाऊंगा, तो इसकी विशेषता कोई विशेष बात है। मुझे आपकी बातचीत से बड़ी मतलब खुशी होती है। मैंने पहले आपसे बात की, मैं अक्सर देखता हूँ कि रेडियो पर बोलने वाले लोग जो है बड़े सिलेक्टेड, बड़े काबिल हस्ती होते हैं, कुछ जानकार होते हैं, नॉलेज होता है, और उनकी आवाज जो है वो टेस्टेड होती है। तो आपकी बात मैं बानी में बहुत मिठास रही है। मैं कभी भी किसी के लिए कभी लिख रहा था कि आपकी नीची जुबान में जमजम बरसता है, इसको सुनने के लिए हमारा दिल तरसता है।
1: बहुत बड़ी बात कह दी आपने और बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये।
0: दिल को मिलता है सुकून।
1: क्या बात,
0: दिल को मिलता है सुकून जब आपसे बात होती है। बहुत खुशी होती है मुझे जब आपसे मुलाकात होती है।
1: क्या बात है।
0: ना खिल से चमन में अगर मौसम बहार ना होता, ना मैं आपको कॉल करता कभी जो आपसे प्यार ना होता।
1: क्या बात है, सुपर्ब। बहुत शुक्रिया आपकी ये जरनवाजी के लिए।
0: अगर मुबारका ना समझो
1: जी,
0: अगर मुबारका ना समझो तो जबान से शायद बरसता है, जिसको सुनने के लिए मेरा दिल करता है।
1: वाह, क्या बात है, पूरा शेर बना दिया आपने।
0: शेर लिखने का मुझे शौक है जी, शायरी में मैंने पोएट्री की अंग्रेजी में भी किताबें लिखी है दो
1: जी,
0: और हिंदी में ज्यादा, डोगरी में दो अपनी भाषा में। तो आपने हिंदी भाषा की बात की तो ये ऐसे वक्त पर मेरे पास, मेरे जहन में पहले से ये बात थी, क्योंकि बच्चे स्कूल में जो पढ़ते हैं उनके लिए भी ये निकला था। तो मुझे कोई बच्चा पूछ रहा था हिंदी दिवस पर आप क्या बोलना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो आपकी भी वही बात आई है, हिंदी दिवस की बात आप कर रहे हैं किसी से भी, तो मैं भी हिंदी दिवस के बारे में आपके तदनुसार कुछ कहूंगा। मैं इतनी जटिल हिंदी तो नहीं बोल सकता, इतनी हिंदी की भाषा में मुझे प्यार तो है, पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, लेकिन जितनी आम लोग, बहुत विद्वान लोग बोलते हैं उतनी मैं हिंदी तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने इसके लिए भी एक छोटी सी कविता लिखकर किसी को दी है, तो मैं आपको भी अगर समय दे तो मैं आपको सुना सकता हूँ।
1: जी प्लीज प्लीज सुनाइए।
0: कोई मेरे शब्दों में अगर कोई भूल हो तो मैं क्षमा भी कर याचना कर लूंगा आपसे।
1: बिल्कुल, आप सुनाइए।
0: हिंदी हिंदी शब्द से हिंदू है, हिंदू से हिंदुस्तान, हिंदी यहाँ की भाषा है, जानता है सारा जहान।
1: वाह, क्या बात है।
0: हिंदी मेरे खुद लिखा हुआ, मुझे पढ़ना मुश्किल रहता है, लिखा था मैंने
1: जी।
0: हिंदी संस्कृति की बेटी है, जिसमें मिलते हैं पर बेद प्राण, इस भाषा के प्रचार की होगी होगा हमारा उत्थान, इस भाषा के बोलने से होगा हमारा उत्थान,
1: हमारा उत्थान।
0: माँ के दूध में पलती है, माँ के दूध में और गोद और माँ के गोद में पलती है, देश के हर कोने में ये हमको मिलती है।
1: वाह, क्या बात।
0: अपनी भाषा, अपना अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति कभी ना भूले कोई, कभी ना भूलो।

0: इन दोनों का सम्मान करो, है इसमें हमारी भलाई,
1: है इसमें हमारी भलाई।
0: सरकार क्या भी दे इसका, इसकी सरकार भी दे इस पर ध्यान, राज्य की इसे बनाए, राज्य की का व्यवहार, राज्य की व्यवहार में इसे विशेष स्थान दिलाए। तो ये मैं चंद शब्द में ऐसा कहता हूँ कि इसके प्रचलन के लिए, इसके बढ़ावे के लिए सरकारी ऑफिसों में भी इसका बोलना, जैसे बच्चे मैं देखता हूँ, हमारे बच्चे, हमारी स्थानीय भाषा डोगरी है
1: जी,
0: लेकिन
1: जी।
0: बच्चे हिंदी बोलने का प्रयास ज्यादा अधिक करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ डोगरी भी सीखो, अपनी स्थानीय भाषा भी जानो, परंतु जो देश की भाषा है इसको मत भूलो।
1: वाह,
0: ये तो माँ की गर्भ से और माँ से दूध से और माँ के जो गोद से वहीं से चलनी चाहिए, और हिंदी हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। अरे पूरे देश में, अपने देश में किसी प्रांत में जाए तो हिंदी आपके काम आएगी, और हिंदी शब्द जो है हर शब्द भाषा में आपको कहीं ना कहीं कर्ण मात्र मिलेगा, लेकिन अवश्य मिलेगा।
1: सही बात है।
0: और ये मैंने संस्कृत की बेटी इसलिए कहा इसको, ये संस्कृत का जो वेद पुराण लिखे हैं उससे ही हिंदी निकली हुई है।
1: सही बात है, बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल बहुत प्यारी बात कही है आपने, और बहुत अच्छी सी कविता जो खुद लिखी थी वो सुनाई।
0: नहीं लिखी मैंने, ये मैं लड़के को लिख कर दे रहा था, तो मुझे ये ख्याल था कि मैं सुनाऊंगा, लेकिन एक मुझे समस्या हो गई है, अपने हाथ से लिखा होगा, हाथ नहीं कटता है मेरा ठीक।
1: मैं समझ रहा हूँ,
0: थोड़ा संपन्न होती है
1: उम्र का तकाजा है,
0: ट्रेम्बलिंग होती है, उस ट्रेम्बलिंग की वजह से मैं इतना अच्छा नहीं लिख पाता, खुद भी थोड़ा दिक्कत आती है पढ़ने में।
1: हाँ,
0: और जो मेरी 3.5 नंबर की अंक थी उसको 4 कराया, 500-400 रुपया दिया भी, लेकिन फिर भी लग नहीं रही थी।
1: कोई बात,
0: एक अंक का ऑपरेशन भी हुआ है। आई एम इन 93 एंड गोइंग टू कम्प्लीट 93 ऑन 30th of September।
1: वाओ क्या बात है,
0: ये 30 नंबर को मैं 93-94 में एंटर करूंगा।
1: बहुत अच्छी बात है, और स्वस्थ रहिए, हमारी दुआ आपके साथ में।
0: ये शुक्रिया शुक्रिया आपका, आपकी शुभकामना के लिए मैं कृतज्ञ हूँ आपका, और आपका बोलना मुझे, मैं तो कहूँगा कि रेडियो वाले तकरीबन सभी सिलेक्टेड लोग होते हैं, इनकी आवाज भी टेस्टेड होती है और इनका ज्ञान भी टेस्टेड होता है, इनको सब ज्ञान से पूर्ण और स्वभाव से प्यारे, और इनके पानी भी उतनी प्यारी लगती है हर एक को तकरीबन हमारे यहाँ लोटे हैं। लेकिन एक बात मैं इसके साथ निंदा करूंगा कि कुछ लोगों को एक थोड़ा ईगो हो जाता है कि हम ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां हमारे लिए दुनिया तरसती है, लोग तरसते हैं सुनने के लिए, तो हम इनकी बात का ध्यान कम करते हैं, बिना हमारी बात का,
1: सही बात,
0: खास करके बूढ़ों की बात का।
1: बिल्कुल,
0: ये कठुआ वालों की ज्यादा कर रहा हूँ, यहाँ हम देते थे तो मेरी बात को इग्नोर किया, मैंने बात करना ही बंद कर दी, मैं कभी फरमाइश ना प्रोग्राम देता था, इसी रेडियो स्टेशन की वजह से मेरा नाम दूर दूर तक गया है।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
0: मेरी दो लोगों तक आवाज पहुंची है या नाम पहुंचा है, तो इसी कारण से मुझे यूपी से, मथुरा से और त्रिपुरा से फोन आते हैं।
1: जी जी,
0: तो किसी एक है बीए कुमार पांडे जी, वो यूपी से है, बलरामपुर से पता नहीं कौन सी जगह है।
1: जी जी जी जी,
0: तो उन्होंने, उनको बड़ा बोलने में बड़े अभ्यासी हैं, शायर हैं वो उर्दू के, और मुझे भी कभी कभी सुनाते भी हैं, और कभी कभी लेकिन कहते भी हैं कि सुनाओ कुछ, तो है उनको भी सुनाता हूँ कभी कभी, तो उनकी वजह से मेरा नाम आधे भारत वर्ष में मेरे ख्याल में घूम गया है।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, और जगह
0: आपके पास भी पहुंच गया है, मुझे खुशी हुई आपसे बात करके। धन्य है आप, और धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दे करके इतना पढ़ाई और इतनी प्यार भरी बातें करने के लिए, भगवान ने आपको समर्थ किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। तो भाई ये तो थे हमारे साथ में, देखिए जम्मू कश्मीर से 94 इयर्स ओल्ड होने वाले हैं, और कितनी खूबसूरत बात आपने कही, कितना जज्बा है, कितना कुछ आपके पास है जो आपने कहा, अपनी बातों को रखा। इसी में अब चलते हैं आखिरी इस कॉल की तरफ, और चूंकि फराग से हम बस एक कविता सुनेंगे और उसके बाद हम आपसे विदा लेने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं आज के लास्ट कॉलर कौन है। हाँ जी, हेलो
2: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग, हिंदी दिवस की शुभकामना।

0: कामना है आपको भी।
1: सर आपको भी हिंदी दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: थैंक यू। सो क्या है अनु सुनाने वाली हैं आप?
1: आज ने सर कुछ लिखी है, मैंने वही सुनाऊंगी।
0: हाँ प्लीज सुनाइए।
1: फूलों से महकती है हिंदी मेरी भाषा, फूलों से महकती है हिंदी मेरी भाषा, हृदय में धड़कती है हिंदी मेरी भाषा, पूरे विश्व में सूरज की चमकती है हिंदी मेरी भाषा, इसे हृदय में बसाए रखना मधुर है हिंदी मेरी भाषा, घर से मत निकालो ये माँ है हिंदी मेरी भाषा, घर से मत निकालो माँ है मेरी हिंदी मेरी भाषा।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी कविता थी अनु, बहुत अच्छी लगी हम लोगों को हिंदी दिवस पे। और आप
1: सर अभी हमने तैयार किया था कि अभी हमको बात करना है तो हम क्या सुनाएंगे।
0: बहुत बढ़िया, नहीं बहुत अच्छी लगी, एंड थैंक यू सो मच कि आपने कॉल
1: किया। एक मिनट मेरी सिस्टर की आपको कुछ सुनाई थी, उसने भी आज ही कुछ लिखा है।
0: ओके।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग विवांशी, क्या सुनाने वाली हैं आप?
1: सर मैंने एक छोटा सा हिंदी से लिखा है सर, पता है मैंने सुबह सुबह रोटियां बना रही थी तब लिखा है उसको।
0: अरे वाह, तो चलिए गोल गोल सुना दीजिए उन कविताओं को।

0: महासागर से भी गहरी है हिंदी मेरी भाषा है, महासागर से भी गहरी है हिंदी मेरी भाषा है, भाषाओं की भाषा है वो हिंदी सबसे प्यारी है, बच्चा बच्चा बोल रहा है हिंदी सबसे न्यारी है, बच्चा बच्चा बोल रहा है हिंदी सबसे न्यारी है।
1: वाह, बहुत प्यारी कविता सुनाई आपने, वो गाकर सुनाया, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल फील हुआ। एंड थैंक यू सो मच, आपको भी हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं रेवांशी
0: सर। आपको भी और जितने लोग रेडियो सुन रहे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, उन सभी को हिंदी दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सो मच।
0: ओके सर, बाय
1: बाय बाय, टेक केयर। सो भाई, ये भी थी रेवांशी जिन्होंने ऑफकोर्स हमको कविता सुनाया। और फिलहाल अब वक्त हो गया है आपको आज की लास्ट कविता, प्रीति जी की आई है बहराइच से, हिंदी दिवस उन्होंने डेडिकेट किया है। हिंदी है हमारे भारत की शान, हिंदी से ही भारत महान, संस्कृति की यह है अमूल्य धरोहर, हर भारतीय में बसे इसका सुंदर पहर, जन जन की यह अनमोल भाषा, स्नेह प्रेम और भाईचारे की अनमिट आशा, विश्व में हिंदी का हो अति प्रचार, जिससे हिंदी का बढ़े विस्तार, हिंदी दिवस पर हम सब लिए प्रण, हिंदी को दे मान सम्मान ऊंचा स्थान, हिंदी से ही हमारे भारत की पहचान, इसलिए हिंदी है हमारे भारत का अभिमान, अपनी मातृभाषा का करे सम्मान, जिससे बने हम सुसभ्य इंसान। क्या बात है, थैंक यू सो मच प्रीति जी, बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और नगेश्वर ने भी कहा, हिंदी के ऊपर एक बिंदी से नहीं, ऐसे बिंदी जिस किसी के ऊपर लग जाए तो उसका मान सम्मान, उसकी खूबसूरती बढ़ा देती, हिंदी भाषा से आपकी पहचान होती है, एक भारतीय होने का गर्व है। इंग्लिश जो पढ़ना ये विदेश जाते हैं लोग, शायद वो हमारे भारतीय संस्कृति से वंचित रह जाते हैं, अपने भारतीयों के संस्कार ही भूल जाते हैं। आप इंग्लिश बोलो, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर अपने प्रतिदिन की चर्चा में हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। थैंक यू, प्रीति जी ने भी थैंक यू बोला, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी पटना, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। एंड इसके अलावा जो है आर के श्रीवास्तव गोंडा यूपी से, आपका भी स्वागत कर

करते हैं। संतोष कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। अंबर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सो आई होप कि भाई आज का शो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और देखिए भाई, हिंदी अपनी ही भाषा में, अपने अंदाज में क्या कहती है, ये इस गाने से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। और एक बार वापस से हम आपसे कहते हैं कि भाई आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: हे, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: अरे किरण दी, फोन उठाइए, पता नहीं कहाँ बिजी हो जाती हैं। जब भी मिलाओ तो फोन ही नहीं उठाती हैं।
6: हेलो जया, अरे क्या हुआ, तुम स्टूडियो नहीं पहुंची क्या? हम लोगों को आज संतोष भैया के गांव चलना है।
5: अरे कैसे पहुंचें, हमें तो यही गुरु नानक चौराहे पर रोक दिया गया है। पता नहीं क्यों बल्लियां लगा के रखे हैं, बोल रहे हैं पैदल जाओ। अब स्कूटी कहाँ खड़ी करें, हम तो वापस घर जा रहे हैं, आप लोग ही चले जाइए।
6: अरे जया परेशान मत हो, बस स्टेशन के पास रचना का घर है, वहाँ पर स्कूटी खड़ा करो, हम लोग तुम्हें वहीं से ले लेंगे, जानती हो ना?
5: ठीक है दी, फिर मिलते हैं, हमें तो लगा था कि हम जा ही नहीं पाएंगे।
7: कहाँ हो जया? अरे जया कहाँ हो भाई, गाड़ी के हॉर्न की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अरे चलो यार, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, भीड़ बहुत है, मालूम है कचरी तीज की तैयारी चल रही है।
6: अरे रुको रुको, देखो रचना के घर में कितनी सुंदर सुंदर सबने मेहंदी लगाई है, अरे देखने तो दो।
7: अरे चलो किरण, अरे जो संतोष की वाइफ नीतू है ना, वो बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है, हम लोग भी चलकर उससे मेहंदी लगवा लेंगे।
5: अरे सावन तो खत्म हो गया है, सारे त्योहार भी खत्म हो गए हैं, फिर क्या है जो सब मेहंदी लगवा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि फिर से कोई नया त्योहार आने वाला है।
6: हाँ मेरी लाडो रानी, कजरी तीज आने वाली है, फिर से कांवड़ी यात्रा लेकर चलेंगे, फिर से झूले पड़ेंगे, फिर से हम सब गाएंगे, व्रत रखेंगे, अपने पारंपरिक कपड़े पहनेंगे, जैसे सिद्धे पल्ले की साड़ी, लहंगा, चोली

0: अब समझी जया क्यों हम सबको सीधे पल्ले की साड़ी पहनने को कहा गया था। आज हम लोग पारंपरिक पहनावे में कजरी तीज मनाने जा रहे हैं खरगोपुर।
1: चलो पहले चलते हैं संतोष के घर। संतोष कह रहा था ना कि वहाँ उनके बरगद के पेड़ में बहुत बड़ा झूला पड़ता है, तो पहले हम झूला झूलेंगे और फिर बाद में मेला देखने चलेंगे, बहुत मजा आएगा।
2: दीदी याद है हम लोग जब नवरात्र में मेला देखने गए थे और प्लाजो कॉट सूट पहना था तो सब कैसे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। आज हम सब मिलकर इस त्योहार को गांव के लोगों के साथ गांव के रंग में मिलकर मनाएंगे।
3: सच कहा किरण दी आपने, कजरी तीज सिर्फ पूजा पाठ का दिन नहीं बल्कि अपने लोगों के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी बांटने वाला दिन है।
0: जया हम लोग संतोष के गांव नहीं जा रहे हैं बल्कि पृथ्वीनाथ मंदिर में जो मेला लगा है ना वो देखने चल रहे हैं। वहीं संतोष का परिवार भी मिल जाएगा, पर सबसे पहले हम लोग झूला झूलेंगे।
1: लो भाई हम लोग तो पहुंच गए। नमस्ते नीतू। अरे दोनों बच्चे कितने बड़े हो गए हैं और नीतू की देवरानी भी साथ आई है। और देखो किरण कितनी सारी लेडीज हम लोगों को देख रही हैं, हम सबसे मिलने आई हैं। अरे भाई नमस्ते नमस्ते, सभी को हमारा नमस्ते।
2: देखिए झूले के पास दरी बिछी है और ढोलक भी रखी है और देखो ठंडी ठंडी शरबत भी लेकर आ रहे हैं सब।

0: कितनी उमस हो रही है, पर शरबत पीकर और नीम की छांव में बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है।
1: किरण दी, ये सब बोल रही हैं कि आप एसी वाला गाना सुना दीजिए, तभी ये लोग मुलायम भुट्टा खाने को देंगी हरी मिर्च और लहसुन की चटनी के साथ।

0: ताजे नींबू की शरबत, मुलायम मुलायम भुट्टे और यह ताजी हवा, हमें इतना कोल्ड हो रहा था, जकड़न महसूस हो रही थी, पर ताजी हवा में बहुत अच्छा लग रहा है।
1: अब बातें ही करते रहेंगे कि झूला भी झूलेंगे, मेहंदी भी लगवानी है और लाल कुटी, हरी मिर्च और नमक के साथ करौंदे भी खाने हैं। देखिए जरा मुन्नी ने कितने करौंदे दिए हैं। गीता दी, प्लीज आप करौंदे का मीठा अचार बना देंगी?
2: ठीक है ठीक है, चलो अच्छा पेंग मारो जोर से। चिली सास और टोमेटो सास वाली जया रानी को गांव आते ही उसके रंग में रंग जाती है। शायद गांव की मिट्टी की यही खासियत होती है।

0: गीता दीदी, जब हम झूले पर बैठते हैं तो बचपन याद आ जाता है, अपना गांव याद आने लगता है। मेरी तो आंखें भर आईं, कितना कुछ पीछे छूट गया। शहर में जब भुट्टे का ठेला देखती हूँ तो रोज सोचती हूँ, आज तो जरूर भुट्टा खाऊंगी, पर टाइम ही नहीं मिलता। और ऐसे ही झूले तो कहीं कहीं दिखाई देते हैं।
1: अरे किरण दीदी, उदास मत होइए। हम लोग ने तो सोचा था कि अब की बार कजरी तीज गांव में मनाएंगे, आप दुखी हो जाएंगी तो त्योहार कैसे मनेगा। तीज का गाना तो एक आपसे ही सुनना है।

0: अब कोई मुझे बताएगा कि कजरी तीज का मतलब क्या होता है? कजरी का मतलब काजल और तीज का मतलब थर्ड डे, मतलब तीसरा दिन।
1: तो चलो
2: मेहंदी लगवाते लगवाते मैं तुम्हें कजरी तीज के बारे में बताऊंगी। जानती हो कजरी तीज उत्तर प्रदेश और बिहार का मुख्य त्योहार है। इस दिन जितनी भी सुहागिन स्त्रियां होती हैं व्रत रख करके शिव और पार्वती की पूजा करती हैं, अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं।
3: जया, इसे कजरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन औरतें कजरी गीत गाती हैं, झूला झूलती हैं और चांद को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करती हैं।
4: माना जाता है कि पार्वती जी ने शिव जी के लिए कठिन तप किया था, तब शिव जी उन्हें पति के रूप में मिले थे, उस तप की याद में यह व्रत रखा जाता है।
0: ये देखिए नीतू और उसकी देवरानी ने कितनी सुंदर मेहंदी लगा दी हम लोगों के हाथों में। तुम लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू।
4: यह लोग तो बढ़िया भी लाए हैं हम लोगों के लिए, मेहंदी लगा दी है, अब खिलाना तो तुम ही लोगों को पड़ेगा। अरे नीतू, तुम्हारी मेहंदी तो कितनी जोरदार चढ़ी है।
2: सुनते हैं कि जिसकी मेहंदी ज्यादा चढ़ती है उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। देखो नीतू कितना शर्मा रही है, बिल्कुल शर्म से लाल हो गई है।

0: चलो मेला घूम कर आते हैं, शाम तक बहुत भीड़ हो जाएगी। अरे मुझे चूड़ी खरीदनी है और बुढ़िया के बाल खाने हैं। ये देखो बेंत का पंखा जो बच्चे अपनी साइकिल पर लगाकर घूम रहे हैं।
1: अरे ये तो मैंने आज दूसरी बार देखा है, या तो अब कहीं देखने को ही नहीं मिलता, वही प्लास्टिक के खिलौने, बैटरी की कार।
2: अरे यह लकड़ी का घोड़ा तो देखो, प्लास्टिक का मिलता है यहाँ तो। कई खिलौने ऐसे हैं कि हम जिसे पहली बार देख रहे हैं।
3: एक बात देखी तुम लोगों ने, यहाँ मेले में लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। शहर में जब नुमाइश लगती है तो हम लोग झूला झूलते हैं और चाट चाउमीन खाते हैं, पर सामान बिल्कुल नहीं लेते। पर यहाँ तो जैसे उनके लिए ये अद्भुत चीजें हैं कि कितनी खरीदारी कर रहे हैं।
0: आज मन बार बार उदास हो रहा है, कितना कुछ हम लोग खोते जा रहे हैं। सब गांव की गूंज की टीम का गाना सुनने के लिए बैठे हैं। चलो सब उनसे विदा लेते हैं।

0: कोशिश कीजिए आप सब भी, त्योहार चाहे छोटा हो या बड़ा, अपनों के साथ अपने गांव में मनाइए और देखिएगा आपकी खुशी में चार चांद लग जाएंगे, आपकी खुशी चार गुनी हो जाएगी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
5: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
6: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
7: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
8: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
9: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
10: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
11: मतलब?
10: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
12: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
11: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
5: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
11: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
5: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9286-9976-9260-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

तेरा मुस्कुराना और मुस्कुराहट जो होती है वो बहुत खूबसूरत होती है और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में उसकी बहुत इम्पोर्टेंस भी होती है। और इसी प्यारी सी मुस्कुराहट और प्यारी सी बात के साथ प्यारी सी हो गई है शुरुआत, क्योंकि आ गया है आपका अपना बेहद पसंदीदा वाला प्रोग्राम जो कि है ज्ञान असली लाइफ, और लेकर हाजिर है आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो वेलकम वेलकम वेलकम अ वॉर्म वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं अपना बहुत प्यारा प्रोग्राम ज्ञानस्ली लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। जो भी हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, जो हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, जो हमें एप्लीकेशन से सुन रहे हैं, उन सभी का स्वागत स्वागत स्वागत तहे दिल से स्वागत है। सो आज का दिन बहुत ही प्यारा और आई होप कि आप सभी कहीं ना कहीं मेला इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मेला जो है भाई वो लगा हुआ है और मेला बड़ा ही खूबसूरत बड़ा ही प्यारा। कल रात का भी जो कह लें कि कल रात की जो रौनक थी और आज सुबह की जो रौनक अभी तक बनी हुई है उसका क्या ही कहना। शिव शक्ति का ये बहुत ही प्यारा सा कहीं ना कहीं मिलन जो कि आज है तीज, यानी कि भोले बाबा और माता पार्वती का दिन। और उस दिन पर कल से ही, मतलब मैं कल से क्या कहूँ, दो दिनों से मची हुई है तकड़ी धूम, क्योंकि हमारे दुखरानाथ मंदिर में जल अभिषेक, जो कि कांवरिये जल अभिषेक कर रहे थे, तो आपने देखा कि किस तरीके से धूम मची हुई थी। कल रात भी पूरा मेला लगा हुआ था, बहुत ही खूबसूरत माहौल, सभी घूम रहे थे, सभी प्रसाद ले रहे थे, सभी कहीं ना कहीं कांवरिये भी थे, आम लोग, मतलब उसमें आम लोग भी घूम रहे थे, और कहीं ना कहीं पूरी रौनक, मतलब मैं क्या कहूँ कि ऐसा हाल कल तो अगर आप रात को घूमने गए होंगे तो आप सभी ने देखा होगा कि बाज़ार का जो हाल, इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ कि मतलब सिर्फ वहाँ पर लोग ही नज़र आ रहे थे और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। और ये सब ये सारी आस्था, सारा प्यार, हम कह लें कि सारा जो भी लोग थे उनकी भक्ति, उनका जितना भी समर्पण, वो सारा सब कुछ सिर्फ हमारे भोले बाबा और माता पार्वती के लिए। शिव कहते हैं ना कि अगर शिव को प्रसन्न करना हो, उन्हें खुश करना हो, तो शक्ति को खुश करें, क्योंकि शिव अगर खुश हैं तो शक्ति खुद ब खुद खुश हैं, क्योंकि उन दोनों का संगम ही कुछ ऐसा है, शिव शक्ति से ही पूर्ण है, ऐसे कहा जाता है ना। तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से पूर्ण हैं और एक दूसरे के ही पूरक हैं, उनके इसी मिलने को, उनके इसी प्यार को लेकर के कहीं ना कहीं आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि होती है हरतालिका तीज। आज हरतालिका तीज है और आज के दिन ये बाबा, हमारे बाबा यानी कि भोले बाबा और माता पार्वती का दिन, आज का ये दिन हमें समझाता है कि किस तरीके से एक बहुत लंबे तप के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्हें पति रूप में पाया था, और इसीलिए आज का दिन मनाया जाता है। इस दिन के पीछे एक बात और भी होती है कि कहा जाता है कि मन में अगर किसी चीज़ को पाने के लिए वो एक लगन हो और उसे करने के लिए सच्ची मेहनत हो, प्यार हो, आपके दिल में एक लगन हो, आपको लगे कि मुझे कुछ भी कर उस चीज़ को बस पा लेना है, तो आपकी वो लगन, आपकी सच्ची मेहनत, आपका सच्चा दिल आप तक उस चीज़ को ज़रूर पहुँचा देता है। और ऐसा ही कुछ था मिलन हमारे भोले बाबा और माता पार्वती का भी, कि कहीं ना कहीं बहुत कोशिशों के बाद, बहुत मेहनत के बाद, आखिरकार माता पार्वती ने अपने तपोबल से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्हें पति रूप में पा लिया। सो आज मंडे है, आई नो कि आज हमारा काम वाला मंडे भी है, लेकिन काम वाले मंडे से थोड़ा सा आज हम पहले चलेंगे, क्योंकि जैसा आपको पता है ना कि त्यौहार चल रहे हैं, त्यौहारों का पूरा एक सीज़न ही मुझे तो लग रहा है अब शुरू हो गया है, क्योंकि आज तीज है और उसके बाद दिन होगा हमारे विघ्नहर्ता यानी कि श्री गणेश का, गणेश उत्सव भी आने वाला है, तो ये त्यौहार के दिन जो हैं वो चल रहे हैं। और बिल्कुल काम वाला दिन तो है आज ज्ञान असली लाइव में, यानी कि आज फिर हम बात करेंगे कुछ ऑफ़िस वाली बातों पर, यानी कि आपकी डेली ऑफ़िस लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको फेस करनी पड़ती हैं, आपके काम से जुड़ी हुई बातें होती हैं, और स्टूडेंट्स के लिए बताएंगे कि उनकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन पर भी बात होगी और उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन आइए लिसनर्स चलते हैं, सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वो आज एक और दिन है जो कि बहुत ही प्यारा है और आज के दिन को बहुत ख़ास भी बनाता है। आज कुछ एक ऐसी चीज़ भी है, तो आज क्या है ये आप सभी सोच रहे होंगे, तो चलिए बता देती हूँ कि आज आखिर है क्या। आज है हमारा और आप सभी का बहुत ही पसंदीदा और प्यारा वाला दिन जो कि है हिंदी दिवस।
आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदी दिवस क्यों ही मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि हिंदी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि भारत की एक शान है, हिंदी हमारा अभिमान है। सो इसीलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है, उसे सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी कहीं ना कहीं हमारा मान, हमारा सम्मान है, इसलिए हम उस सम्मान को लेकर के कहीं ना कहीं चलते हैं और हिंदी दिवस को सेलिब्रेट भी करते हैं। तो आज हिंदी दिवस पर यही कहना है कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है, हिंदी कहीं ना कहीं हम भारतीय की भावनाओं से जुड़ी होती है, हमारा अभिमान, हमारा सम्मान है, हमारा मान है। इसलिए हर दिन हमें इसे आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें करती रहनी चाहिए। सम्मान, मान, अधिकार, ये सब मिला हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक जो कहते हैं ना कि सब कुछ मिलने के बावजूद भी चीज़ें पीछे तब रह जाती हैं जब उन्हें एक तरीके से पूरी तरह से तवज्जो नहीं मिलती। इसलिए आज हिंदी दिवस के दिन खुद से ये वादा करें कि हम हमारी हिंदी को पूरी की पूरी कहीं ना कहीं एक तवज्जो देंगे। जो हमारी भारत की भावना की जान है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है, उसे उसकी जो एक प्लेस मिली हुई है उसे लगातार बरकरार रखेंगे, क्योंकि हिंदी है तो हम हैं और हम हैं तो सब कुछ है। इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, कहीं ना कहीं उसे पूरी उसकी रिस्पेक्ट देना हम सभी का एक फ़र्ज़ भी बनता है। तो कहते हैं ना, अधिकार है हिंदी, सम्मान है हिंदी और भारत का अभिमान है हिंदी। तो आज दो दो दिन हैं जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो भोले बाबा और माता पार्वती का दिन यानी कि तीज, और दूसरा है हमारा आज हिंदी दिवस। तो हिंदी के ऊपर बिंदी जो है वो ऐसे ही नहीं होती है, हिंदी के ऊपर जब बिंदी लगती है तो उसका सम्मान, उसकी पहचान बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं ये हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि हमारा भारत हिंदी से जुड़ा हुआ है, हमारा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें उस पर बहुत बहुत बहुत गर्व है और हम हमेशा चाहते हैं कि उसे उसकी पूरी पूरी ड्रेक प्लेस है वो मिलनी ही चाहिए। आइए लिसनर्स, चलते हैं इन्हीं प्यारे से बातों के साथ, एक प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। बस यूं गए और यूं आए, आप सुनते रहिए आपका अपना बहुत ही प्यारा और पसंदीदा वाला शो जो कि है ज्ञानश्री लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और वापस लौटूंगी ज्ञानश्री लाइव में फिर से इस प्यारे से सॉन्ग के बाद। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: गोंडा शहर की धड़कन का दिल धड़काने के लिए फिर एक बार वापस आ गई हूँ मैं, यानी कि आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, लेकर के आपका अपना वाला बेहद ही पसंदीदा प्रोग्राम जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव। और चलिए करते हैं शुरुआत हमारे काम वाले मंडे की। भाई त्यौहार तो हो गए, यानी कि तीज हो गया और गणेश उत्सव आने वाला है। हम सभी ने तीज को फुल ऑन एंजॉय किया, मेला देखा, घूमा, और अभी भी हमारा घूमना जो है वो पेंडिंग ही है, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमें हमारी डेली रूटीन को भी सेट करना पड़ता है, और डेली रूटीन को सेट करने के लिए आपको काम करना पड़ता है। काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जॉब तो हमें आसानी से मिल जाती है, पर उसमें एग्जिस्ट होने के लिए कहीं ना कहीं हमें काम करना पड़ता है। और काम करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि आप थोड़ा काम के प्रति जिम्मेदार हों। लेकिन होता क्या है ना कि हमारे ऑफिस रूटीन में हमें डेली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो आज उन्हीं प्रॉब्लम्स पर फिर से बात होगी, क्योंकि हर दिन हम लेकर के आते हैं आपके काम से जुड़ी हुई ही बातें, ताकि आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो थोड़ी कम हो। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि हाँ, जो नए युवा होते हैं यानी कि फ्रेशर्स होते हैं, या फिर जो काफ़ी टाइम से ऑफिस में काम कर रहे होते हैं लेकिन यूथ्स होते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ अच्छा काम करना काफ़ी है। लेकिन जल्द ही जब वो ऑफिस में काम करते हैं तो धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आ जाता है कि सिर्फ अच्छा काम ही ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि डेली बेसिस पर कहीं ना कहीं आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ उठना बैठना, बातचीत करना, उनसे मेल जोल रखना, कहीं ना कहीं कहते हैं ना टीम वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम किसी भी ऑफिस में जाकर के काम करें, अगर टीम वर्क नहीं है तो कहीं ना कहीं चीज़ें टूटने लगती हैं। इसलिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है, और कहीं ना कहीं वो हमें ही डेवलप करना पड़ता है। जब आप किसी नए ऑफिस में जाते हैं और वहाँ काम करते हैं, वहाँ उठते बैठते हैं, आप नए गए हैं, तो उस टीम में एडजस्ट होना, धीरे धीरे अपनी जगह बनाना, ये इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हमें करना पड़ता है। सो, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि कहीं ना कहीं जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनका हम क्या करें, जो कि हमारी वर्किंग एरिया में हम कहें या ऑफिसेज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं। अपनी बातों से ज़्यादा उन्हें दूसरे की बातों में इंटरेस्ट होता है। अब वो हर चीज़ जो होता है ना कि हर चीज़ पर कहीं ना कहीं आपको डम करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ पर आप में कमियां निकालते हैं। और दूसरी चीज़ कि मेहनत कोई करता है और तारीफ़ उन्हें चाहिए होती है, हमेशा खुद को ऊपर दिखाते हैं। ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, तो क्योंकि थोड़े टॉक्सिक होते हैं। और कहीं ना कहीं सबसे मुश्किल होता है ऑफिस वर्क में ऐसे टॉक्सिक लोगों से डील करना, क्योंकि ये एक दिन की बात तो होती नहीं है। हमें ऑफिस डेली जाना है, काम डेली करना है, और डेली उन्हीं से बातचीत भी करनी है, उन्हीं के साथ रहना भी है। तो कैसे हम डील करें कि हमारा काम भी चलता रहे और कहीं ना कहीं उनकी बातों से, उनकी हरकतों से हमारा काम इफ़ेक्ट भी ना हो। क्योंकि जब आपके पास ऐसे आसपास ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं, तो उनकी बातों से, उनकी चीज़ों से, उनके कहने से कई बार आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपको लगता है कि अरे ये कह रहे हैं तो शायद सही होगा और मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट होते हैं, हमारे अंदर सारी स्किल्स होने के बावजूद हमें लगता है कि हम काम नहीं कर पाएंगे। और ऐसे टॉक्सिक लोगों की वजह से माहौल भी जो होता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, और तब हमें काम करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन हम हमारे काम को छोड़ भी तो नहीं सकते ना, क्योंकि हमें डेली करना है। तो क्या है ऐसी चीज़ें जिनसे कि हम इस काम से निकल सकें, यानी कि काम से नहीं निकलना है, इस इन्वायरमेंट से निकल करके पूरा पूरा फोकस हम अपने काम पे करें, न कि उन टॉक्सिक लोगों पे। तो ये कैसे हो सकता है कि हम ऐसे लोगों पर ध्यान न दें और हमारा काम भी चलता रहे? सो बताएंगे आपको कि ये आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए चलिए लिसनर्स सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, एंजॉय करते हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव में। बस यूं गए और यूं आए, आप सुनते रहिए और एंजॉय करिए। स्टे ट्यून्ड।

0: आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

और दूसरी चीज़ यह है कि बाउंड्रीज सेट करने का मतलब है कि बस उतनी ही बात करें जितने में आपका काम हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको उनसे बात करनी ही पड़ती है, वो आपके कलीग हैं, आपको थोड़ा बहुत उनसे बात करनी ही पड़ती है, तो आप बस काम जितनी बातें कीजिए कि आप मेरा ये काम है और ये काम हो जाना चाहिए, मतलब सिर्फ काम की जितनी बातें करें, बाउंड्रीज सेट करें, हम ज़्यादा उनके साथ ना बैठें, ज़्यादा बातचीत ना करें, और कहीं ना कहीं जितनी ज़रूरत हो बस उतनी ही काम से रिलेटेड आप बातें करें। अब बात आती है कि ऐसे टॉक्सिक लोग जो होते हैं वो ऐसी ही बातें करते हैं जो दूसरे को कहीं ना कहीं दिल पे लग जाती है या फिर उन्हें बुरी लग जाती है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो थोड़ा सा इमोशनल डिटैचमेंट रखें, यानी कि अगर वो आपसे रूखा व्यवहार कर रहे हैं, रूखी बातें कर रहे हैं, तो आप उसे पर्सनल ना लें, समझें कि ये उनका स्वभाव है। किसी किसी का होता है ना कि नेचर वैसा होता है, तो आपको बस ये समझना है कि उनकी नेचर में ही है ऐसी बातें करना, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, नहीं आप में कोई कमी है। खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी इसकी वजह से लूज़ नहीं होने देना है, और हमेशा यही समझना है कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरी चीज़ है कि ऐसी चीज़ों से हटकर ज़्यादातर अपने काम पर फोकस करें, चुपचाप काम ना करें, मीटिंग्स में सही समय पर बोलना, अपने काम का अपडेट सही तरीके से करना सीखें, और अपनी मेहनत को, अपनी काबिलियत को सबसे ऊपर रखें, यानी कि पूरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे करें, अपने काम को अच्छा करने पर करें। बाकी इन सब बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या समझ रहा है मेरे बारे में, किसकी कैसी राय है, कि इस सब से थोड़ा सा हट करके आपको अपने काम पे फोकस करना है। क्योंकि जो ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उनकी कोई राय नहीं होती, वो किसी के बारे में भी बस कुछ भी सोचकर कुछ भी कह देते हैं। अगर आपको किसी की राय को, किसी की एडवाइस को इम्पॉर्टेंस ही देनी है, तो आप अपने ऑफिस में उनको दीजिए जो आपके अपने हैं, आपके अपने इन द सेंस कि जिनके साथ आपके अच्छे रिलेशन्स हैं, जो वाकई में आपका भला सोचते हैं, जिनको वाकई में आपको आगे लेकर के जाना चाहते हैं, और आपको लगता है कि हाँ ये सही है, तो आप उनकी चीज़ों को सोचिए, उनकी बातों को लीजिए, पॉजिटिव चीज़ों को सीखिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहिए, और पॉजिटिव लोगों के साथ कहीं ना कहीं उठना बैठना करें। तो अब आते हैं इस पर कि हम हमारा काम सही तरीके से कैसे करें। तो उसके लिए है कि बातचीत बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि कोई भी अगर आपको प्रोजेक्ट मिला है या कुछ भी है, तो आप अपने ग्रुप मेंबर्स से, अगर एक ग्रुप में आपको ऑफिस में प्रोजेक्ट ख़त्म करना है, तो आप अपने ग्रुप मेंबर्स से वो आइडिया शेयर करिए, उनके साथ बात करिए, ऑफिशियल चैट, ईमेल, इन सभी पर इसलिए बात करनी है ताकि कहीं ना कहीं आप एक अच्छे आप परफॉर्मेंस की तरफ जा सकें। सो आइए लिसनर्स, चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं, बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं NVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: और फिर हम वापस आ गए हैं इस धड़कन के दिल को धड़काने के लिए लेकर के आपका अपना बेहद पसंदीदा वाला प्रोग्राम जो कि है ज्ञान स्थली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो अभी तक हमने बात की कि किस तरीके से जब हम ऑफिस वर्क में काम करते हैं, यानी कि ऑफिस जाते हैं, और टॉक्सिक लोग जो होते हैं उनसे कहीं ना कहीं हमें डेली डील करनी पड़ती है, तो कैसे उनसे बचते हुए अपने काम को पूरा करना है और ये ध्यान रखना है कि उनकी बातों का ज़्यादा जो एक मेंटल प्रेशर है वो हम पर ना पड़े। तो ये सारी बातें की हमने, आइए अब चलते हैं, थोड़ा रुक करते हैं स्टूडेंट्स का, उन स्टूडेंट्स का जो कि 10th, 12th, 7th, 8th, 9th इन सब में होते हैं, यानी कि स्कूलिंग में होते हैं कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ बोर्ड के स्टूडेंट्स भी जो कि डेली रूटीन में पढ़ाई करते हैं। लेकिन डेली रूटीन में पढ़ाई करते वक्त उन्हें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उन स्टूडेंट्स के लिए इन प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे, क्योंकि आज जो हमारा मंडे होता है वो दो सेक्शन में होता है। पहला होता है हम ऑफिस वर्क को लेकर के बात करते हैं, और दूसरा बच्चों की पढ़ाई को लेकर के। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि फ़िज़िकल क्या कुछ प्रॉब्लम होती है। फ़िज़िकल प्रॉब्लम में सबसे पहला होता है कि अगर बच्चा स्कूल में है या मोबाइल लैपटॉप पे है या लगातार किताबों से भी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कि अब तो मोबाइल और लैपटॉप पे ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, ऑनलाइन कोचिंग होती है, या स्कूल में पूरा दिन हमें ब्लैक बोर्ड पे देखना होता है, पढ़ना होता है, कहीं ना कहीं किताबों में भी अगर आपके पास के बुक्स हैं तो भी आपको पढ़नी होती हैं, जिनसे कि बच्चों में कुछ नॉर्मल फ़िज़िकल प्रॉब्लम होती है, आँखों में दर्द, आँखों में पानी आना, सिर दर्द की समस्या, ये आम हो जाती है। दूसरा होता है कि कई बार बच्चे जो होते हैं झुक कर पढ़ने से बच्चों की रीढ़ की हड्डी पे भी बुरा असर पड़ता है, जिससे उन्हें पीठ, गर्दन और कंधों में दर्द शुरू हो जाता है। तीसरी होती है कि सिर्फ बैठकर, जैसे बैठकर कई जब ज़्यादा टाइम तक वो पढ़ते हैं तो इससे कहीं ना कहीं उनमें फ़िज़िकल एक्टिविटी की कमी भी आ जाती है, जिससे उनका डाइजेशन ख़राब होता है और वो हमेशा थका थका महसूस करते हैं। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, इसे कैसे ठीक करें, क्योंकि हर घर में कहीं ना कहीं हर माँ जो होती है वो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही होती है, हर बच्चा फेस कर रहा होता है। तो आइए बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि डेली पढ़ाई करते हैं, और कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को फेस करता ही करता है। सो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि हर 20 मिनट में पढ़ाई के बाद 20 सेकंड के लिए ब्रेक लेना चाहिए। कम से कम 20 सेकंड का ब्रेक जो होता है, इससे आपकी आंखों की जो मांसपेशियां होती हैं उन्हें आराम मिलता है, और फिर 20 सेकंड के बाद अपनी पढ़ाई आप शुरू कर सकते हैं। हर 20 मिनट में अपनी पढ़ाई से कम 20 सेकंड का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, लगातार बिल्कुल भी ना पढ़ें। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिस्तर पर लेटकर या झुककर पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। पढ़ाई करने के लिए आप स्टडी टेबल और चेयर का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी पीठ जो है वो बिल्कुल सीधी रहे और आपको कंधे में, पीठ में, गर्दन में दर्द ना हो। बिस्तर पर लेटकर और झुककर कभी भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी चीज़ आती है कि फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है, इसलिए शाम को कम से कम 30 से 45 मिनट बाहर खेलने जाएं, साइकिलिंग करें या फिर यूं ही पार्क में टहलने जाएं। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जब हम खेलते हैं या स्कूल साइकिलिंग करते हैं या फिर कहीं खेलने बाहर चले जाते हैं शाम को, तो इससे हमारी सिर्फ ये नहीं होता है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, इससे आपका माइंड एक्टिव होता है और आपका फोकस भी बढ़ता है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, वो चाहे 7th 8th के हों या बोर्ड के हों, कि कहीं ना कहीं हम फोकस नहीं कर पाते। तो शाम को जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, टहलेंगे, साइकिलिंग करेंगे, तो इससे आपकी फिज़िकल एक्टिविटी होगी और फिज़िकल एक्टिविटी होने से हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी और इससे हमारा फोकस भी बढ़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि हमेशा छोटी छोटी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करती रहनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी भी होती हैं और बहुत अच्छी भी होती हैं। सो आइए लिसनर्स, इन्हीं बातों के साथ चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, आएंगे इस सॉन्ग के उस पार कुछ और बातों को लेकर के जो कि आपसे अभी है करना बाकी। तब तक के लिए आज सुन लेते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा और प्यारा वाला शो जो कि है ज्ञानश्री लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए बात करते हैं, अब जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक हमने बात की कि यूथ्स की पढ़ाई को लेकर के, अब बात करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए और यूथ्स दोनों के लिए ही, जो पढ़ाई के साथ साथ होता है ना कि हम सोचते हैं कि कुछ अर्निंग भी की जाए, और कहीं ना कहीं आजकल इंटर्नशिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी स्टूडेंट्स के लिए साबित हो रही हैं। तो आज ऐसी ही कुछ इंटर्नशिप योजनाओं के बारे में भी हम बात करेंगे जो कि हमारी सरकार ने पूरी तरीके से लागू कर रखी है गवर्नमेंट की तरफ से। सो आइए बात करते हैं सबसे पहले जिसके बारे में, वो है पीएम इंटर्नशिप योजना, यानी कि पीएमआईएस, और ये केंद्र सरकार के द्वारा होती है। इस योजना के तहत देश की जो टॉप कंपनियां होती हैं उनमें इंटर्नशिप का मौका मिलता है, जहां सरकार की तरफ से 9,000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड भी दिया जाता है और 6,000 की वन टाइम पेमेंट भी आपको दी जाती है, राशि दी जाती है। आइए अब बात करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि इनमें पार्ट कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि अगर आप 10th 12th पास आउट हैं या ITI में डिप्लोमा होल्डर हैं, ग्रेजुएट हैं, और आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है, तो आप आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म मिलता है जो कि आपको फिल करना होता है। अब बात आती है कि हमें आवेदन कहाँ करना है, तो आपको करना है पीएम इंटर्नशिप पोर्टल पे। आपको पीएम इंटर्नशिप पोर्टल पे जाकर ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए, और फिर आप इसके लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। दूसरी आती है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है, यानी कि यूपी मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना, यानी कि CM इंटर्नशिप स्कीम, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। इस वक्त यूपी सरकार ने विभिन्न विभागों, निकायों, सरकारी उपक्रमों जैसे कि UPPCL, UPSRTC के लिए 6 महीने से 1 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मौका मिलता है, और इसमें आपको 2500 प्रतिमाह स्टाइपेंड भी मिलता है, और साथ ही साथ में वर्क सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जो कि आगे बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आप यूपी के मूल निवासी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट युवा हैं या स्टूडेंट हैं जिनकी उम्र 18 साल से 35 साल के बीच में है, तो आप CM इंटर्नशिप स्कीम के लिए क्वालिफाइड हैं। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि कहाँ करना है ये भी आपको हम बता देते हैं। यूपी रोजगार संगम के आधिकारिक पोर्टल पे, जो कि होता है सेवायोजन पोर्टल। मैं एक बार फिर बता दूं, यूपी रोजगार संगम के आधिकारिक सेवायोजन पोर्टल पे जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो आता है वो आता है यूपी पुलिस लर्निंग प्रोग्राम, एक्सपोनेंशियल लर्निंग प्रोग्राम है ये, यूपी पुलिस के लिए है, और साथ ही साथ में युवाओं को इसकी ग्राउंड लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन और वर्किंग को समझने के लिए शॉर्ट टर्म यानी कि 6 से 120 घंटे की इंटर्नशिप भी दी जा रही है। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए केंद्र सरकार के युवा पोर्टल यानी कि MY भारत पोर्टल के में जाकर के अप्लाई करना है। यूपी एक्सप्लेनेशनल पुलिस ट्रेनिंग लर्निंग प्रोग्राम पूरी तरीके से उनके लिए है जो पुलिस में जाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, यानी कि यूथ्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी स्टूडेंट हैं। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से 35 के बीच में है और आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप पुलिस ट्रेनिंग में जाकर पुलिस का काम कैसे करना है ये सीखना चाहते हैं, पुलिस ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस इंटर्नशिप में जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। सो आइए लिसनर्स, आप चलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं बस यूं गए, और फटाफट से आएंगे आपको बाय करने के लिए। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

तुझे जीत जीत हारूं, तुझ पे प्राण निवारूं। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। तो आइए लिस्टनर्स, इसी सॉन्ग के साथ अब मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और हाँ, मेला चल रहा है, इंजॉय करते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, आपसे मिलूंगी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुन सहेली में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सेहत सही लाभ कई में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कोई आम स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं है, यहाँ हम सेहत के साथ साथ बचत की बातें भी करते हैं। एक स्वस्थ शरीर न केवल जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि परिवार और समाज को भी मजबूत करता है। और इसी संदेश को लेकर आज फिर हमारे साथ हैं सेहतिया भैया।
4: प्रणाम साथियों, सेहत से बड़ा कोई धन नहीं और सही जानकारी से बड़ा कोई हथियार नहीं। आज स्टूडियो आते वक्त सविता ताई मिली, चेहरे पर ऐसी खुशी जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। मैंने पूछा तो बताया कि उन्होंने हमारे शो पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के बारे में सुना है। उन्हें मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना था, डॉक्टर ने भर्ती और टेस्ट बताए थे, पैसे की चिंता थी, बट अब PMJAY के जरिए उन्हें हर साल 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। अब ना किसी का एहसान और ना उधार का बोझ।
3: वाह, ये सुनकर तो दिल खुश हो गया। जब शो से किसी की जिंदगी में फर्क पड़ता है तो हमारा मकसद पूरा होता है। PMJAY के तहत अस्पताल में भर्ती से पहले के 3 दिन और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक की जांच व दवाओं का खर्च भी शामिल है। भारत में हर साल लाखों लोगों का स्वास्थ्य पर अधिक खर्चा करने के कारण आर्थिक दबाव ज्यादा पड़ जाता है, जिससे उनको अपना जमीन जायदाद खेत खलिहान बेचने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में ये योजनाएं एक असली राहत होती हैं और इस जानकारी को पहुंचाने का श्रेय टीकन भाभी और सेहतिया भैया आपको जाता है।
4: अरे अब आप लोग भी बस हर एपिसोड में मुझे ही श्रेय देते रहते हैं। सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का जरिया तो आपने दिया है। अरे बस एक मिनट, ये फोन भी ना यार, हर वक्त बज जाता है। जी हाँ, आप आ गए। अच्छा, कहाँ कहाँ हो गया? जिले में सब जगह कूलर नाली सब जगह। अब तो सब सुरक्षित है ना? चलो, बीमारी से बच गए, बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: आखिर किसके साथ बातचीत हो रही है भैया? कौन सुरक्षित है, कौन बीमारी से बच गया है, जरा बताइए तो।
4: बात ये है कि हमारे गांव में अभी अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी। अच्छा। मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के लिए दवा छिड़काव करने के लिए। अब आपको तो पता ही है, जैसे हमारे देश में मलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफेलाइटिस, काला आजार, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस और चिकनगुनिया जैसे वेक्टर जनित रोग प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियां हैं। इन रोगों का प्रभाव न केवल स्वास्थ्य पर बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी गहरा पड़ता है। उसी सिलसिले में स्वास्थ्य विभाग से कॉल आया था कि हम हर जगह दवाई का छिड़काव कर चुके हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया थोड़ा माफ करिएगा, लेकिन इस मुद्दे को लेकर मेरी समझ थोड़ी सी कम है। आपने अभी वेक्टर शब्द का प्रयोग किया, इसका क्या मतलब है?
4: अरे नहीं नहीं, माफी की जरूरत नहीं है। वेक्टर वो कीड़ा होता है जो इंसान या जानवर से बीमारी लेकर दूसरे इंसान तक पहुँचाते हैं। अक्सर ये छोटे मच्छर या फिर मक्खियाँ जैसे खून चूसने वाले कीड़े होते हैं। जब ये किसी बीमार इंसान या जानवर का खून चूसते हैं तो उनके शरीर में बीमारी वाले कीटाणु चले जाते हैं। फिर जब वही कीड़ा किसी और को काटता है तो वो बीमारी आगे फैल जाती है। एक बार अगर कीड़ा बीमारी वाला बन गया तो वो जिंदगी भर दूसरों को बीमारी देता रहता है।
3: ओ अच्छा, तो ये जीव बीमारी फैलाने वाले वाहक होते हैं।
4: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे देश में सबसे आम वेक्टर है मच्छर, बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई, और कुछ टिक्स या जू जैसे कीड़े। ये जीव किसी बीमार व्यक्ति या जानवर को काट कर उसके शरीर में मौजूद वायरस या परजीव अपने अंदर ले लेते हैं, और जब ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो वही वायरस उसके शरीर में चला जाता है। इस तरीके से बीमारी फैलती है।
3: अच्छा सेहतिया भैया, एक बात और बताइए, इन बीमारियों के उदाहरण क्या हैं?
4: भारत में जो प्रमुख वेक्टर जनित बीमारियां हैं उनमें से सबसे पहला नाम आता है मलेरिया का, जो कि एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, डेंगू एडीज मच्छर से, फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर से, और काला आजार बालू मक्खी से फैलता है। डेंगू मलेरिया बारिश में ज्यादा होते हैं, जबकि फाइलेरिया और काला आजार कुछ खास इलाकों में साल भर पाए जाते हैं। समय पर इलाज ना होने पर ये बीमारियां जानलेवा साबित हो सकती हैं।
3: अच्छा मलेरिया, मुझे तो लगा था कि ये तो बीते जमाने की बात है, तो क्या ये बीमारी आज के समय में भी गंभीर है?
4: अरे किस दुनिया में जी रहे हैं दीदी। मलेरिया भले ही पहले से कम हो गया है, लेकिन ये बीमारी आज भी भारत के लिए एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। 2025 के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक करीब 1.3 लाख मलेरिया के केस सामने आते रहते हैं हर साल। भारत सरकार ने मलेरिया को 2030 तक पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन जब तक अंतिम केस सामने आ रहे हैं तब तक हमें सतर्क रहना ही होगा।
3: मुझे तो बस ये मालूम है कि मलेरिया में ठंड लगती है, पर मलेरिया आखिर होता कैसे है?
4: बुखार और ठंड तो इसके लक्षण है ही, लेकिन मैं आपको और जानकारी दूंगा, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
5: मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है।
6: इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है।
5: सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है।
4: तो श्रोताओं, मलेरिया एक परजीवी बीमारी है जो प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से होती है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है और फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो ये परजीवी उस व्यक्ति के खून में पहुंच जाता है और लीवर में पनप कर शरीर को बीमार कर देता है। मलेरिया के आम लक्षण हैं तेज बुखार आना, ठंड लगना, बदन दर्द, पसीना आना, सिर दर्द और कभी कभी उल्टी और बहुत ज्यादा थकान। बच्चों और बुजुर्गों में ये और भी गंभीर हो सकता है।
3: पर इसका इलाज तो है ना?
4: इलाज आज के समय में बिल्कुल आसान है। सभी सरकार स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC और आंगनवाड़ी केंद्रों पर इसका इलाज और जाँच बिल्कुल मुफ्त है। जरूरी ये है कि बुखार आने पर तुरंत जांच करवाएं। मलेरिया की पुष्टि ब्लड टेस्ट से होती है और उनके अनुसार दवाइयां दी जाती हैं।
3: मुझे उम्मीद है कि सभी श्रोता ये जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि देखिए सवाल भी आने शुरू हो गए। रमेश जी का पूछना है कि उनके पिताजी को डेंगू हो गया है जो मच्छर के काटने से होता है, तो क्या मलेरिया और डेंगू दोनों बीमारियां एक है, बस नाम अलग अलग है?
4: अरे रमेश जी, दोनों ही वेक्टर जनित बीमारियां हैं और मच्छर इनके मुख्य फैलाने वाले होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मलेरिया फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर से, जबकि डेंगू फैलता है एडीज एजिप्टी मच्छर, और ये मच्छर दिन में काटते हैं, यानी कि मलेरिया वाला मच्छर ज्यादातर रात में सक्रिय होता है और जबकि डेंगू वाला मच्छर सुबह और दोपहर के समय काटता है। इसीलिए हमें दिन और रात दोनों समय सतर्क रहना चाहिए।
3: एक और खास बात मैं बताना चाहती हूँ, मलेरिया फैलाने वाले मच्छर अक्सर गंदे या स्थिर पानी में जैसे गड्ढे, नालों या झाड़ियों के आसपास जमा पानी में अंडे देते हैं, और डेंगू फैलाने वाले मच्छर साफ पानी और ठहरे हुए पानी में पनपते हैं, जैसे फूलदान, पानी की टंकी, कूलर, बोतल के ढक्कन या किसी खुली जगह में जमा साफ पानी।
4: बिल्कुल सही, तो दोनों मच्छर पानी में ही पनपते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि ये डेंगू वाला मच्छर साफ पानी पसंद करता है और मलेरिया वाला मच्छर अक्सर गंदे पानी में पाया जाता है।
3: और डेंगू का प्रमुख लक्षण तेज बुखार होता है। इसके साथ सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, थकावट और शरीर पर चकत्ते भी आ सकते हैं। गंभीर मामलों में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, जिससे डेंगू हेमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है। एक प्रोमो मैं भी सुनाना चाहती हूँ।
7: 4-5 दिनों से तेज बुखार है, सिर शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है,
8: शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण हैं।
7: डेंगू?
8: डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्त स्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें।
4: सही बात है, डेंगू का कोई खास इलाज नहीं है, इसलिए समय पर रोकथाम जरूरी है। इलाज सिर्फ लक्षणों को कम करने पर होता है, जैसे बुखार में पैरासीटामोल देना, खूब पानी पिलाना और आराम करवाना। एस्पिरिन या ब्रूफेन ना देना, इससे ब्लीडिंग हो सकती है। प्लेटलेट्स बढ़वाने के लिए पपीते का रस, अनार, कीवी, नारियल पानी, गिलोय और चुकंदर जैसे चीजें देना फायदेमंद होती है। मरीज को एस्पिरिन या ब्रूफेन जैसी दवाइयां बिल्कुल ना दें, क्योंकि इससे खून बहने का खतरा बढ़ सकता है।
3: इसके अलावा घर के आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टंकियों और बर्तनों को ढक कर रखें। सप्ताह में एक बार पानी की जगहों को खाली करके साफ करें। पूरी बाहों के कपड़े पहने, मच्छरदानी या मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करें। बच्चों को स्कूल भेजते वक्त विशेष ध्यान दें और याद रखें, सफाई ही बचाव है। पर आगे बढ़ने से पहले हम हमारे शहर के डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर की कुछ अहम बातें सुन लेते हैं।
9: मैं रणजीत कुमार, लैब टेक्नीशियन, महाराजगंज। आज हम लोग बात करेंगे मलेरिया। मलेरिया के बारे में जानेंगे कि मलेरिया क्या है। मलेरिया जो है, हमारे आसपास जो गंदगी फैलती है, जो गंदा पानी इकट्ठा होता है गड्ढे में, नालियों में, तालाबों में, या गंदगी जहाँ होती है, झाड़ झंखाड़ जहाँ होते हैं, वहाँ ये पनपते हैं। और ये पनपने के साथ साथ बहुत ज़्यादा घातक बन जाते हैं। ये मच्छर काटने से होते हैं और मच्छर जो है ऐसी जगह पे ही अपने लार्वा यानी अंडे देते हैं। और ये मलेरिया जो है एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो एक मादा होती है। अगर इसका हम लोग सही तरीके से बचाव ना करें तो ये बहुत घातक साबित हो जाती है और इसमें जो मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति है उसकी जान भी जा सकती है। मच्छर जो पनपते हैं, सबसे पहले तो हम जानेंगे इसके लक्षण क्या हैं। लक्षण में सबसे पहले क्या होता है कि हमें तेज़ बुखार आता है, कपकपी के साथ होता है, ठंड भी लगता है और पसीना भी छूटता है, सिर में दर्द भी होता है, सिर के में दर्द के साथ साथ शरीर में भी दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है, थकावट भी होती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, उल्टी भी होती है, जीभ भी मचलाता है, भूख में कमी भी आ जाती है और दस्त भी होती है, यानी कई बार पेट खराब हो जाता है, सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है, सांस फूलता है। और एक ये मस्तिष्क मलेरिया भी का रूप हो सकता है, जो जानलेवा हो सकता है। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि इसका अगर बुखार कपकपी के साथ आ रहा है, ठंड के साथ बुखार आ रहा है, तो हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तुरंत जो है अपने ही जो नज़दीकी अस्पताल हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे जैसा भी हो, वहाँ जाकर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सलाह के बाद डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि आप सबसे पहले खून की जांच कराइए। खून की जांच में ही कंफर्म होता है कि आपको मलेरिया है कि नहीं है। तो उसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, तुरंत के तुरंत जो है खून की जांच करानी चाहिए। और खून की जांच कराने के बाद फिर प्रॉपर तरीके से जो है उसका जो है इलाज होना चाहिए। यदि मरीज को गंभीर लक्षण हैं तो डॉक्टर उन्हें तरल पदार्थ, दवाइयाँ और अन्य उपचार दे सकते हैं। और बचाव के लिए ये भी है कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को, मच्छर काटने से बचने के लिए, जैसे मॉर्टिन हो गया, उडनाइट हो गया, अन्य चीज़ों का भी घर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कोई नुकसान ना हो रहा हो। इसके बाद जो भी आसपास के गड्ढे हैं, उन गड्ढों को साफ़ कर दें या उसमें मिट्टी डाल दें जिससे उसमें पानी ना रुके। अगर आपके घर में कूलर है या फिर बाल्टी में पानी है तो प्रयास ये करें कि पानी पहली बात तो रुके ना, और बर्तन का पानी रात में निकाल

0: करके उसको पलट के रखते हैं जिससे पानी ना रुके। और जैसे कूलर का पानी अगर क्या कहते हैं कि नहीं खाली कर पा रहे हैं तो उसमें जो है आप छिड़काव कर दें जिससे कि उसमें बैक्टीरिया ना पनपे। दूसरी चीज़ ये कि जो है ना पनपे। और इसके बाद इससे मलेरिया अगर अपने लार्वे या अंडे नहीं देगा तो मच्छर पनपने के चांस कम हो जाते हैं, जिससे हम लोग इस घातक बीमारी से बच सकते हैं, हम भी बच सकते हैं। और ये चीज़ें सभी को, जैसे हमारे आसपास के जो लोग हैं जो कि झोपड़ियों में रहते हैं, उनको भी ये चीज़ें बताना चाहिए कि हम अपनी सावधानी कैसे कर सकते हैं और कैसे बच सकते हैं। और इसके बाद जो है मलेरिया, जैसे हमने कहा कि मलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसका इलाज न किया जाए तो ये जान भी जा सकती है। तो किसी भी तरह से जो है हम मतलब अपने स्तर से ना, जैसे भी कोई दिक्कत हो तो हम डॉक्टर के पास जाकर सही उचित सलाह लेकर के अपना इलाज करवा सकते हैं और दूसरों को सलाह दे सकते हैं।
1: चलो अब क्यों ना आपका टेस्ट लिया जाए, देखते हैं आपको हमारी कितनी बातें याद रहती हैं।
2: बिल्कुल भैया, लेकिन सवाल थोड़ा आसान पूछिएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद है जब हमने इस श्रृंखला की शुरुआत की थी तो टीवी के साथ एक और बीमारी पर काफी जोर दिया था।
2: अरे आपने तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि श्रृंखला की शुरुआत में हमने फाइलेरिया पर चर्चा की थी। फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, जो गंदे पानी और नालियों में पनपता है। जब ये मच्छर काटता है तो माइक्रोफाइलेरिया नाम के कीटाणु शरीर में पहुंच जाते हैं, जो धीरे धीरे फैलते हैं। शुरुआत में लक्षण नहीं दिखते। और हाँ, आपने उस समय एक प्रोमो भी चलाया था, क्यों ना श्रोताओं को फिर से वो प्रोमो सुना दें?
3: दो हफ्तों से ज्यादा बुखार कालाजार हो सकता है, इसकी जांच तुरंत अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में करवाएं। सरकारी अस्पतालों में इसकी जांच और इसका इलाज मुफ्त किया जाता है और इसका इलाज एक ही दिन में हो जाता है।
4: भारत सरकार कालाजार के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है और हर रोगी को इलाज पाने के बाद 500 रुपए भी प्रदान करती है। कालाजार से निजात पाएं, इलाज कराएं।
1: यही इस बीमारी की सबसे खतरनाक बात है, सालों तक पता ही नहीं चलता और जब लक्षण दिखाई देते हैं तब तक शरीर में नुकसान हो चुका होता है। सबसे आम लक्षण है शरीर के किसी हिस्से, खासकर पैर, अंडकोश में लगातार सूजन। इसे आम भाषा में हाथी पाव कहा जाता है, क्योंकि सूजन बहुत ज्यादा हो जाती है।
2: ये सुनने में ही बहुत तकलीफ दे लग रहा है और अफसोस की बात ये है कि ये एक लाइलाज बीमारी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसकी वजह से डरने की जरूरत नहीं है। फाइलेरिया के बचाव के लिए सरकार हर साल MDA यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाती है। इसमें हर व्यक्ति को DEC और एल्बेंडाजॉल की गोली दी जाती है। ये दवाइयाँ शरीर में छिपे हुए संक्रमण को खत्म करने में मदद करती हैं। इन्हें खाली पेट ना खाके बल्कि खाना खाने के बाद लेना चाहिए।
2: हाँ, ये दवाएं सिर्फ 2 साल से ऊपर के स्वस्थ लोगों के लिए हैं। गर्भवती महिलाएं या बहुत बीमार लोग इसे ना लें। दवा लेने के बाद थोड़ा जी मचलाना या थकान हो सकती है, जो इलाज का असर है। अगर दवा नहीं लेंगे तो बीमारी बनी रहेगी और आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। ये बताइए कि कालाजार भी वेक्टर डिजीज है ना? क्या ये भी मच्छर के काटने से होता है?
1: हाँ, वेक्टर डिजीज ही है। और कालाजार मच्छर के नहीं बल्कि बालू मक्खी के काटने से होती है। मुख्य रूप में भारत में कुछ खास राज्यों में ही पाया जाता है, खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इन इलाकों में नमी और गंदगी की वजह से बालू मक्खी बहुत पनपती है और यही मक्खी इस बीमारी की वजह बन जाती है।
2: बालू मक्खी मच्छर जैसी दिखती है क्या?
1: जी हाँ, लेकिन ये मच्छर से थोड़ी छोटी होती है और बहुत ही चुपचाप काटती है। काटने पर कोई दर्द या जलन महसूस नहीं होती, इसीलिए लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये संक्रमित हो गए हैं। ये मक्खियाँ दिन की बजाय शाम और रात को ज्यादा सक्रिय होती हैं, खासकर नम और अंधेरे इलाकों में।
2: और भैया, जब एक व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं?
1: सबसे आम लक्षण है लगातार बुखार, जो 3 हफ्तों से ज्यादा बना रहे और जो दवाइयों से ठीक ना हो। इसके अलावा वजन कम होना, भूख ना लगना, थकावट और खासकर तिल्ली और जिगर का बढ़ना। कई बार पेट फूला हुआ लगता है। अगर समय पर इलाज ना हो तो शरीर अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है और जान भी जा सकती है।
2: ये वाकई बहुत चिंताजनक है। सुनते हैं कि इसे काला आजार इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे त्वचा का रंग काला पड़ने लगता है, लेकिन क्या इसका इलाज संभव है?
1: जी हाँ, सही कहा आपने, इसका इलाज पूरी तरीके से संभव है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। जैसे ही लक्षण दिखे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पतालों में जांच करवाएं, जहां बहुत आसान है, खून की जांच से ही पता चल जाता है।
2: एक बात कंफ्यूजिंग है, तभी वेक्टर डिजीज के लक्षण मुख्य रूप से बुखार आना होता है, लेकिन बुखार को तो बहुत सारे लोग मामूली ही समझते हैं और खुद ही इलाज करने लगते हैं।
1: यही सबसे बड़ी समस्या है। लोगों को जब बुखार होता है तो वो सोचते हैं कि ये मौसम की वजह से हुआ है या खुद से ही ठीक हो जाएगा, लेकिन जब बुखार लंबे समय तक बना रहे और साथ में शरीर कमजोर पड़ने लगे तो सतर्क हो जाना चाहिए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगातार लोगों को यह जानकारी देते हैं, लेकिन जागरूकता अभी भी कम है।
2: तो चलिए ये बताइए कि बालू मक्खी से कैसे बचा जाए?
1: घर और घर के आसपास साफ सफाई जरूरी है, क्योंकि बालू मक्खी गंदगी, नमी और अंधेरे में पनपती हैं। खिड़कियां खुली रखें और भारी पर्दे ना लगाएं ताकि मक्खियां छुप ना पाएं। सरकार DDT का छिड़काव कराती है जो असरदार होती है। आप भी खुद DDT का छिड़काव करा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे बदबू या नुकसान के डर से नहीं करवाने देते। ये गलती ना करनी चाहिए। मेरे पास एक और प्रोमो है, उसको भी सुनते हैं।
5: बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे।
6: चौंकिए मत, डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज ना लें।
7: इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया।
5: और सफाई के नंबर 100 में से 100।
7: हाँ।
2: अच्छा, तो DDT का छिड़काव करवाना सुरक्षित है?
1: बिल्कुल, यही पूरी तरह से सुरक्षित और सबसे प्रभावी तरीका है मक्खियों से बचाव का। इसके अलावा मच्छरदानी का उपयोग करना भी फायदेमंद है, खासकर रात में सोते समय। और हाँ, अगर किसी को लंबे समय से बुखार है तो दवाइयाँ खुद ना लें, सीधे डॉक्टर के पास जाएं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया भैया। श्रोताओं, साफ सफाई रखें, DDT छिड़काव करवाएं, और अगर लंबे समय से बुखार हो तो तुरंत अस्पताल जाएं। भैया, अब मैं जानना चाहूंगी कि इन बीमारियों से निपटने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है।
1: सबसे पहले सरकार इन बीमारियों को गंभीरता से ले रही है और इनके नियंत्रण और उन्मूलन के लिए एक व्यापक योजना चला रही है, जिसका नाम है NVBDCP, यानी नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और काला आजार जैसी बीमारियों की रोकथाम और अंततः उनका पूरी तरह उन्मूलन करना। इसके तहत इन बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए सरकार कई उपाय करती है, जैसे MDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत हर साल 2 बार फाइलेरिया के खिलाफ सुरक्षित दवाएं दी जाती हैं, जिन्हें सभी को लेना चाहिए ताकि शरीर में छुपे कीटाणु खत्म हो सके। IRS इंडोर रेसिडुअल स्प्रे, ये एक कीटनाशक स्प्रे है जो घर की दीवारों पर छिड़का जाता है ताकि मच्छर मर जाएं और मलेरिया या काला आजार का फैलाव रोका जा सके। LLIN लॉन्ग लास्टिक इंसेक्टिसाइडल नेट्स, यानी लंबे समय तक असर करने वाली मच्छरदानियाँ, खासकर काला आजार प्रभावित इलाकों में बांटी जाती हैं, जो मच्छरों से बचाव का आसान तरीका है। वहीं फंगिंग से डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छरों की संख्या कम की जाती है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर कीटनाशक धुआं छोड़ा जाता है।
2: तो सेहतिया भैया, हमारे राज्य में बहुत से इलाकों में तालाब या पोखरे होते हैं, जो कि बहुत से हमारे मछुआरे भाइयों के लिए आय का स्रोत होता है। बहुत से इलाकों में पर्यटन स्थल भी है, तो ऐसे में पानी की सफाई कैसे की जाए?
1: तो ऐसी स्थिति में एक मछली आती है, उसका नाम है गैंगबूसिया। ये मछली मच्छरों के लार्वा और अंडों को खाकर नाश कर देती है और इस तरह मच्छरों को पनपने नहीं देती है, ना ही मलेरिया के मच्छर और ना ही डेंगू के मच्छर, और साथ ही पानी में अन्य सूक्ष्म जीवों को खाकर पानी को साफ कर देती है।
2: ये तो वही बात हो गई कि एक तीर से दो निशाने, बीमारी से भी बचाव और प्रकृति की भी सुरक्षा। तो श्रोताओं, सरकार तो अपना काम बड़ी मुस्तैदी के साथ कर रही है, पर जनता भी तो माने कि हम लोग क्या कर रहे हैं।
1: आकांक्षा जी, सरकारी योजनाएं तभी सफल होती हैं जब जनता उसका पूरा साथ दे। लोगों को चाहिए कि खुद जागरूकता बनाएं और दूसरों को जागरूक करते रहें। जब सरकार की टीम दवा देने के लिए आए तो बिना झिझक दवा लें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मच्छरदानी का नियमित उपयोग करें, खासकर सोते समय। अपने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष देखभाल करें क्योंकि वो ज्यादा संवेदनशील होते हैं।
2: मतलब ये है कि इन बीमारियों से लड़ाई सिर्फ सरकार की ही नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब सरकार और समाज मिलकर काम करते हैं तभी बीमारियों को जड़ से मिटाया जा सकता है। जागरूकता, सहयोग और समय पर दवा, यही मंत्र है स्वस्थ समुदाय और स्वस्थ भारत का। इन बीमारियों से बचने के लिए कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली उपाय अपनाना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल सही भैया, साफ सफाई और जागरूकता ही सबसे बड़ी ढाल है इन बीमारियों के खिलाफ। तो चलिए, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का।
8: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
9: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
8: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई
2: तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लें। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। अगली बार फिर आएंगे सेहत से जुड़ी और भी बातें लेकर। तब तक के लिए सुनते रहें आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, जो है आपके अपने शहर गोंडा की धड़कन। धन्यवाद।
4: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
10: सरिता उम्र से पहले बड़ी हो गई है। किताबों से ज्यादा किताबों पर लगी धूल उसे नजर आने लगी है। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने नाजुक हाथों में ले ली है।

0: सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।

0: हाँ जी, और इतना प्यारा भजन सुनने जा रहे हैं हम सभी, यानी आप, हम और आज सभी, आज हमारे श्रद्धालु तो इस प्यारे से भजन को सुनेंगे और एंट्री करेंगे। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ आपकी आरजे समता
1: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
0: तो आज हरतालिका तीज यानी कि कजरी तीज के उपलक्ष में हमने सोचा कि एक प्यारे से भजन को आप तक पहुँचाते हैं और उसके बाद आते हैं फिर से आपसे बातचीत करने, ढेरों बातचीत करने आज के दिन की, और लाइव यानी कि दुखनाथ मंदिर पर लाइव हम आपको बताएंगे, लेकिन इस प्यारे से भजन के बाद।

0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता, यानी मैं हूँ आपकी आरजे समता
7: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
6: तो भाई, एक साथ एक ही फ्रेम में आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है, जिसका नाम है
7: सुन सहेली।
6: एंड प्यारे से दिन में, प्यारे से दोपहर में आइए एक साथ विश कर देते हैं
7: शुभ दोपहरिया।
6: भाई, इतना प्यारा सा भोले बाबा और पार्वती माता जी के दिन को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कजरी तीज के नाम से, यानी कि कहा जाता है कि माता जी, माता पार्वती माँ की ये पहली तीज मानी जाती है, आई थिंक सो, है ना
7: जी मैम।
6: तो ये पहली तीज होती है और सुहागिनों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कहा जाता है कि सभी सुहागिने आज के दिन माता पार्वती को सुहाग के सब चीजों को उनको अर्पण करती हैं, चढ़ाती हैं, और जो सुहागिने नहीं है वो सुहाग पाने की उम्मीद से माता जी को चढ़ाती हैं। एंड जो आधी सुहागन एंड आधी जो बॉयफ्रेंड वगैरह रखती हैं, वो लोग भी माता जी को आज मनाने जाती हैं, भोले बाबा को मनाने जाती हैं कि भाई, मेरे जीवन में जो अभी मेरा बॉयफ्रेंड है, इसी को ही मेरा पति परमेश्वर बनाने की हम चाह रख करके आपके पास आए हैं। क्यों अंशिका?
7: बिल्कुल, टेम्परेरी को परमानेंट।
6: और जिनके पास कोई नहीं हो लाइक अंशिका, तो वो अभी ऐसे ही व्रत रख रही है ताकि उनको भविष्य में भोले बाबा जैसी एक उनकी उनकी आदत वाला इनको पति मिले।
7: ये तो मैम ने दिल की बात मेरे कही कि ऐसा ही है। वाकई में मैं चाहती हूँ कि मुझे जो भी मिले वो मेरे जैसा ही कोई मिले,
6: नहीं भोले बाबा जैसे। भोले बाबा जैसे,
7: भोले बाबा जैसे,
6: यानी कि उनमें इतने गुण हैं। अगर उनका एक गुण भी एक पति में आ जाए ना, यानी सिर्फ एक गुण कि अपनी पत्नी के लिए उन्होंने ब्रह्मांड को हिला दिया।
7: यस,
6: मतलब पत्नी के प्यार में, पत्नी में मोह नहीं था, प्यार। प्यार और मोह दोनों अलग अलग चीजें होती हैं।
7: बिल्कुल,
6: प्यार जो था वो, मतलब जो प्यार है माता पार्वती के लिए, वो शिव भगवान जैसा प्यार अपनी पत्नी जैसा कोई नहीं कर सकता है। मैंने बहुत सारे कथाएं सुनी है, मैंने बहुत सारे चीजों को पढ़ा है, बट जो प्यार, जो इश्क, जो मोहब्बत पार्वती माता से मेरे भोले बाबा करते हैं, शायद ही कोई करता होगा। तो इसी कामना के साथ में लड़कियां व्रत रखती हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही पति मिले जैसा प्रेम भोले बाबा अपनी पत्नी से करते हैं।
7: बिल्कुल सही। और कई बार क्या होता है ना कि जैसे कहते नहीं है कि जब आप भगवान शिव के पास जाते हैं, वैसे तो सभी भगवानों के लिए होता है, बट स्पेशली हमारे भोले बाबा के लिए होता है। हाँ। कि जब आप उनके पास जाते हैं तो आपको मांगना नहीं पड़ता है।
6: Exactly.
7: ठीक वैसा ही होता है कि कई बार बिना मांगे हमें बहुत अच्छे जीवन साथी बहुत लोगों को मिल जाते हैं। लेकिन सिर्फ मिलने से नहीं होता है ना, कई बार हम कहते हैं कि मिल तो जाते हैं पर संभालना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो संभालना भी ये प्यारा सा रिश्ता सिखाता है। कहते हैं कि मैम भोले बाबा जो थे वो बहुत गुस्से वाले थे, मतलब जितनी जल्दी वो किसी से खुश होते थे उतनी जल्दी वो किसी से गुस्सा भी हो जाते थे, लेकिन उनके इस क्रोध को संभालता कौन था?
6: उनकी पत्नी। तो वैसे भी तो होता है कि जब पति गुस्सा होता है तो संभालता कौन है, पत्नी संभालती है।
7: उल्टा भी तो हो सकता है, रिवर्स साइकोलॉजी भी हो सकती है।
6: वो एक्सेप्शनल केस में होता है, वो कभी कभी वाले केस में होता है,
7: मतलब हो सकता है। कहने का सेंस ये था कि एक दूसरे को संभालना पड़ता है एक रिश्ते में। अगर किसी अगले में कोई खामी है तो हम उसे उसको सुधारते हैं, अगर सामने वाले में कोई है तो हम बताते हैं। अगर देखिए अगर हस्बैंड में है तो उसको वाइफ बताती है कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, अगर वाइफ में है तो उसको हस्बैंड बताते हैं कि देखो आप ऐसे नहीं ऐसे करिए। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को संभालना भी रिश्ते की पहचान है, जो हमारे भोले बाबा और माता पार्वती में भरपूर। अच्छा,
6: हमें लगा कि कहीं ना कहीं रिश्ते संभालने वाली बात तो जैसे मेरे, तो हम तो डर ही गए थे।
7: मैम पूरा इसीलिए मैं कहती हूँ मैम पूरा ध्यान डाइवर्ट कर देती है, तो मैं भूल जाती
6: हूँ। मुझे लगता है कि किसी किसी को पर्सनल चीजों में फंसाना, पर्सनल चीजों को बताना भी ये खतरे से खाली होता है कि कहीं ऑन एयर कोई बात ना निकल जाए। जैसे अंजिका की बहुत सारी पर्सनल मुझे पता है और जैसे मेरा पर्सनल उसको, तो मुझे लगता है हाँ जी नागेश्वर जी नमस्कार एंड भाई कहते हैं ना कि जो पिता और पुत्र दोनों अगर आगमन पे आ जाए तो मतलब बड़ा अच्छा हो जाता है। तो
7: बहुत अच्छा।
6: आप उनके पुत्र को कैसे भूल गई आज? आज गणेश चतुर्थी कोई पहला दिन है और आने वाले मतलब दिनों में कोई चार दिन गणेश
7: पूजा,
6: भगवान जी की पूजा के लिए उनकी मूर्ति स्थापित करते हैं, कोई 9 दिन करता है, कोई 11 दिन करता है, तो उनके पुत्र को कैसे भूल गए? मतलब पिता को याद कर लिया, माता को याद कर लिया, उनके पुत्र को कैसे भूल गए?
7: ये तो हो सका, क्या होता है ना मैम, ये
6: एक भजन आया था कि जिनके पूत हैं, जिनके पिता हैं और जिनके पति हैं, जिनके पिता हैं जिनके पति हैं उस परमेश्वर के हम भक्त हैं। तो भाई नाम नहीं आया तो कॉमन सेंस है, जिनके पिता हैं
7: पिता
6: और जिनके पति हैं,
7: पति हैं
6: और जो पर उन उस परमेश्वर के हम परम भक्त हैं,
7: बिल्कुल,
6: जिसमें सब
7: तो भाई हमारे जो विघ्नहर्ता सुखकर्ता कहे जाते हैं यानी कि गणपति जी, उन्हें भी आज हम याद करेंगे। और विघ्नहर्ता जो है वो आपके सारे विघ्न हरे और आपको ढेर सारी खुशियां दे, यही हम कामना करते हैं सभी के लिए।
6: तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक सॉन्ग हम सुना दें शिव भगवान जी का एंड उसके बाद में एक गणेश भगवान जी का गाना सुनाने के बाद में हम सीधे लौटेंगे रेसिपी की ओर।
7: बिल्कुल,
6: कोई बकवास नहीं, कोई कुछ
7: कुछ नहीं,
6: और उसके बाद में एक प्यारी सी पोयम जो कि शिव मिलन, शिव पार्वती के मिलन पर एक प्यारी सी पोयम हमारे हाथ में लगी है आज, तो चाहती हूँ सुनाना। लेकिन शिव शक्ति ही पूरन जो कि है, बहुत ही प्यारा सा गाना है भाई, ये गाना मुझे बहुत पसंद है अंशिका, तो सुन ले।
7: बिल्कुल सुनते हैं और आइए शिव और शक्ति के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। आप सभी बने रहे हैं अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुन सहेली में और हाँ सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इसके बाद होने वाली है प्यारी सी पोयम मिलन पे और सुनाने वाली है आज समता। तो भाई सुनने का मौका अगर कोई छोड़ दे तो फिर कहते हैं ना कि जलेबी में आपको रस नहीं मिला।
6: अच्छा।
7: तो इसलिए वो जरूरी है।
6: हाँ।
7: तो आइए सुनते हैं और इंजॉय करते हैं
6: जी। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से, बहुत ही प्यारे से भजन को।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपके अपने शो सुन सहेली में। और एक भोले भाले इंसान की बातचीत चल रही थी। हमारे भोले बाबा शिव ने उनके कई रूप हैं, इस पृथ्वी पर भी कई रूप हैं, तो उन्हीं में से एक रूप की बात मैं कर रही थी, अभी अंशिका को बता रही थी। तो काश कुछ नहीं, चलिए
6: काश
5: सुने पोयम दीजिए रास्ता।
6: शिव का संगम है और पार्वती का मिलन, शिव का संगम है पार्वती का मिलन, इस दिन को कहते हैं शिव शक्ति का सम्मिलन। आइए करते हैं इस प्यारी सी मिलन की शुरुआत आपकी अपनी RJ समता के साथ।
5: थैंक यू सो मच। तो आज कुछ ऐसा करते हैं कि आज है बड़ा पर्व, तो चार लाइन मैं पढ़ूंगी और उसके बाद चार लाइन आप पढ़िए, ठीक है
6: जी।
5: कैलाश शिव पर बैठे थे भोले बाबा वैरागी, सती वियोग में खोए थे जग से अतिशय अनुरागी। तब की ज्वाला में जलकर तब हिमगिरी की लाली आई, पार्वती बन जगदम्बा ने फिर से प्रीत जगाई। कठिन तपस्या की गौरी ने तज कर सब सुख संसार, वाह धूप दीप जल अन्य त्याग कर किया शिव का सत्कार। देखा जब वैराग्य डिगा तब भोले का मन हर्षाया, साधु रूप तज शंकर ने अपना दिव्य रूप दिखाया। बहुत ही प्यारी। अब इसके बाद इसको कंप्लीट करके मैं आपको एक चीज बताऊंगी जल्दी से।
6: शुभ घड़ी आई मिलन की, गूंज उठा सारा आकाश, देवों ने पुष्प बरसाए चारों ओर फैला प्रकाश। हाथों में वरमाला लेकर पार्वती जब आगे आई, भोले के चरणों में अपनी सारी सृष्टि समाई। मिला पुरुष को प्रकृति का साथ, जग का कल्याण हुआ। शिव और शक्ति के मिलन से हर जीवन धन्य हुआ। अर्ध नारेश्वर रूप सजा या प्रेम अमर कहलाया, सृष्टि के कण कण ने मिलकर पावन मंगल गान गाया।
5: बहुत ही प्यारी। और मुझे इसमें एक लाइन को बताना है अंशिका
6: जी, कि
5: आपने इसमें अभी एक लाइन सुना कि धूप दीप जल त्याग कर अन्न त्याग कर किया शिव का सत्कार, और देखा तब जब वैराग डिगा तब भोले का मन हर्षाया। मतलब हम सिर्फ जल चढ़ाने जाते हैं, हम सब केवल अगर व्रत रख लेते हैं। मैं अभी उज्जैन गई थी इसके पहले, थोड़े पहले जब मैं 3-4 दिन का जब मैंने लीव लिया था, तो मैं उज्जैन गई थी। मैं आज इसको इस चीज़ को रिवील कर रही हूँ। तो उज्जैन में क्या था, मैंने देखा कि लाखों की तादाद में रोज एक टाइम पर, मतलब पता है अंशिका की वो तादाद बंद नहीं होती है
6: जी,
5: वहाँ पर आप दर्शन के लिए वहाँ कभी भी किवाड़ बंद नहीं होते। इवन रात में 10 बजे के बाद में, शायद 11 बजे के बाद में 3 बजे तक केवल वो बंद रहता है किवाड़। बस वो खाना है
6: आज तो ये होना चाहिए,
5: वो होना चाहिए। उनसे कितनी बड़ी लालसा करते हैं अपने भोले बाबा से, भोले बाबा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये कर दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। पर हमारे भोले तो भोले हैं ही ना, जैसा नाम है भोले वैसे भोले हैं भी। आपकी सिंपल एक सिंपल लोटे जल से वो इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके नसीब में नहीं भी होती है ना, उसको लिख देते हैं। ये मेरा खुद का मानना है।
6: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। और जैसे कि अभी मैम ने बताया कि माता पार्वती ने तप किया, बहुत कठिन तप किया, और तप करके शिव को प्रसन्न कर लिया उन्होंने, और आखिर में हमारे भोले बाबा और माता पार्वती का मिलन भी हो गया। लेकिन वो क्यों हुआ? क्योंकि माता पार्वती के मन में कोई लालसा नहीं थी। जैसे हम कहते हैं ना, रिश्तों में क्या होता है कि अधिकार में और हक में बहुत बड़ा फर्क होता है। अधिकार का मतलब होता है जब किसी पर ज़बरदस्ती अधिकार किया जाता है, और हक का मतलब होता है जो हम अपनी मर्जी से देते हैं। कि जैसे हम कहते हैं ना मैम कि उसका तो मुझ पर पूरा हक है, या उनका मेरे रिश्ते पर पूरा हक है, लेकिन अधिकार मतलब आप ज़बरदस्ती लेना चाहते हो। तो हमारी जो माता पार्वती थी, उन्होंने अधिकार नहीं दिखाया, उन्होंने सच्चे मन से बस शिव को पाना चाहा, और जब सच्चे मन से पाना चाहा तो पा लिया। इसीलिए कहते हैं कि प्यार हमेशा सच्चे दिल से होना चाहिए।
5: Exactly. और ये रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ भी अंशिका ने बता दिया साथ साथ में। मैं एक लाइन और जोड़ना चाहती हूँ कि अगर आपको जिंदगी में कभी भी किसी इंसान से सच्चा प्यार हुआ है, भले उसके पास कुछ नहीं हो, अंशिका मेरा खुद का एक्सपीरियंस है
6: जी मैम,
5: मैं उस पर अभी आपको एक और बात बताऊंगी अभी कि जरूरी नहीं है कि आप जिससे प्यार कर रहे हैं वो उसके पास में वो सारी ऐशो आराम की चीजें हों तभी आप उनको ये देख के प्यार करो। अगर किसी इंसान के पास प्यार के अलावा कुछ नहीं है ना, तब भी उसको अपनाना चाहिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि जिंदगी में प्यार से बढ़कर, और सेम सिचुएशन जो हमारे भोले बाबा पार्वती माता की है, हमारी पार्वती माता महलों की रानी, हमारे भोले बाबा ने क्या किया, कहाँ पे वो रहते थे सोचो। तो पता है जब मैं ये सब सोचती हूँ तो इतना ज्यादा सुकून मिलता है कि आज की दुनिया क्या ढूंढ रही है, प्यार में क्या ढूंढ रही है।
6: केवल कहीं ना कहीं हम कहना नहीं चाहिए बट सिचुएशन वो सच्चाई है कि हम लग्जरी ढूंढते हैं, ढेर सारी सुविधाएं ढूंढते हैं, यहाँ तक कि अगर हम किसी से मतलब होते भी हैं टच में तो हम कहते हैं यार सुंदर होना चाहिए, यार स्मार्ट होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लग्जरी की तरफ, स्मार्टनेस की तरफ, इन सारी चीज़ों की तरफ भागते हैं, लेकिन एक्चुअल जो रियलिटी है जो मैम ने अभी बताया कि प्यार वो नहीं देखते, वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जो एक एक्चुअल खुशी है वो धुंधलाती चली जा रही है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
5: Exactly. मुझे लगता है कि एक गरीब झोपड़ी में भी हम अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं अगर प्यार है तो, और भारी भरकम महलों में हम अगर जाएं और अपने पति के साथ हम एडजस्ट नहीं हो पाए, प्यार नहीं हो, बच्चे इज्जत नहीं करे, तो क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ प्यार, इश्क। तो भाई जिनसे भी अगर आपको है तो आज के दिन आप बिल्कुल वादे शादे कर लीजिए और उन्हें अपनाने का बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लीजिए, क्योंकि आज है शिव पार्वती जी के मिलन का दिन, और इतनी प्यारी आज की दिन की शुरुआत हुई है क्योंकि आज गना हमारे गजानन भी हमारे सभी के घरों में पधार रहे हैं। तो इस खुशी में आइए एक प्यारा सा भजन, घर में पधारो गजानन, मुझे लग रहा है सुना देना चाहिए।
6: बिल्कुल सुना देना चाहिए। तो आइए करते हैं श्री गणेश हमारे गणपति के साथ, सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा भजन, सुनिए और खो जाइए भक्ति रस में।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ आपकी RJ समता, यानी अब मैं हूँ आपकी RJ समता
4: और मैं हूँ RJ अंशिका।
3: क्या हो रहा है, ये दो दो बार क्यों बोल दिया मैंने?
4: आज कुछ हो रहा है
3: एक्चुअली, दिमाग कहीं और डाइवर्जन था मेरा, जैसे नहीं रूट डाइवर्जन हो जाते हैं, तो सेम वैसा ही था। तो
4: दिमाग डाइवर्जन है या कुछ और डाइवर्जन?
3: दिमाग ही है, दिल तो मेरे पास है ही नहीं एक्चुअली, वो मतलब चेंज हो गया है।
4: ओह
3: तो, हाँ जी, वो क्लियर है, वो चेंज हो गया है, तो जिनका है वो अभी सो रहे हैं।
4: जाग भी सकते हैं,
3: चले
4: चले,
3: मेरा दिल मेरे पास ही है, फालतू की कुछ नहीं ऐसी बात होती है। ठीक है, चलो,
4: कई बार होता है बहुत कुछ,
3: इसीलिए कहते हैं कि किसी कभी भी अपनी सहेली को कोई दिले हाले दिल नहीं बताना चाहिए, वो फर्जी का फिर वो ना हमेशा से अच्छा ऐसा होता है, अच्छा वैसा होता है, ये शुरू हो जाती है फर्जी की चूचू चूचू मैम। चले चले फटाफट शुरू करते हैं,
4: चलेंगे मैम। मैम पूरा वो कर देती है
3: डाइवर्ट
4: डाइवर्ट। चलिए खैर,
3: पर इस डाइवर्जन में मुझे आपसे करनी है बात, यानी हमारे लिसनर्स फ्रेंड से मुझे उनको देना है आज कुछ बोनस। जानती हो क्या बोनस है?
4: क्या
3: बोनस ये है कि आज जो कि बहुत बड़ा पर्व है, आज है हमारे भोले बाबा और माँ पार्वती का दिन एंड है गणेश चतुर्थी का पहला दिन, तो भाई आज आप कर सकते हैं अपनी भजनों की फरमाइश इसी आधे घंटे के अंदर, यानी 2:22 हो रहा है, तो आप अपने मन का कोई भी भजन भेज सकते हैं। तो या तो आप गणेश भगवान जी का भेजें या तो आप शिव पार्वती पर भेजिए, तो आपको भेजने के लिए मौका मिलता है केवल आधे घंटे का, क्योंकि आज हम कोई भी गाना नहीं चलाएंगे, आज हम चलाएंगे आप लोगों की फरमाइश, यानी हम लोगों की फरमाइश। तो ये बोनस आपको दिया गया है एंड जल्दी से इस बोनस का फायदा उठाएं एंड जल्दी जल्दी से आपको अगर कोई भी भजन सुनना है तो हमें चैट बॉक्स में लिख भेजें।
4: वाओ, ये तो हो गया, जिसे कहते हैं ना कि त्योहार पे शगुन
3: शगुन हो गया,
4: तो ये हो गया हमारी तरफ से आप सभी के लिए आज का शगुन। तो फटाफट से भजन लिखने भेजने शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, और जब मिला है तो फिर उसका फायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में मौके बहुत कम मिलते हैं। सो फिलहाल आज हमारा मंडे भी है, लजीज वाला, टेस्टी वाला, अच्छा वाला, तो कुछ मुझे लगता है कि होना चाहिए।
3: जी हाँ,
4: तो आज मंडे के लिए जो हम आपको बताने वाले हैं वो हमारे दोनों जो कहते हैं ना पिता और पुत्र हैं, उसमें से पुत्र को बहुत पसंद है, और वो क्या है?
3: मोदक?
4: नहीं,
3: मोदक नहीं, तो फिर क्या?
4: लड्डू।
3: लड्डू
4: जो हमारे गजानन को बहुत पसंद है, लड्डू, तो आज हम आपको लड्डू बताने वाले हैं। सो चलिए आज बताती हूँ नारियल के लड्डू, और जो भी इंस्टेंट बनने वाले, तो सबसे पहले आपको चाहिए नारियल का बुरादा, 2 कप आपको नारियल का बुरादा चाहिए, और चाहिए 1.5 कप कस्टर्ड मिल्क। ओके, कस्टर्ड मिल्क के बाद में आपको चाहिए ड्राई फ्रूट्स ढेर सारे होने चाहिए, काजू, बादाम, पिस्ता, सब दो तीन चम्मच ऐसे ही होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है इलायची पाउडर, ले लेना है आपको आधा चम्मच, और साथ में देसी घी ले लेना है 1 बड़ा चम्मच। अब करना क्या है आइए बताते हैं। सबसे पहले एक पैन में देसी घी गर्म करें, उसमें जो नारियल का बुरादा है उसे लेकर के थोड़ी देर आपको उसको रोस्ट करना है।
3: ओके,
4: ठीक है, और थोड़ा सा उसमें से आपको नारियल का बुरादा अलग कर लेना है, थोड़ा सा बचा लेना है। धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट इसे हल्का सा भून लें। ध्यान रखें कि इसका रंग न बदले। अगर इसका रंग बदल जाता है कि इट मींस वो जल जाता है, इसलिए रंग नहीं बदलना चाहिए। और खुशबू जब आने लगे हल्की हल्की तो इट मींस कि वो पूरी तरीके से हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि इसमें 1/2 कप कस्टर्ड मिल्क और इलायची पाउडर डाल देना है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो इसी समय आपको ड्राई फ्रूट्स भी डाल देने हैं। अब हमें इसे चलाते रहना है और इन सभी को मिक्स करना है तब तक जब तक कि वो पैन के किनारे पर न लगने लगे और पूरा एक डो जैसे ना बन जाए। जब वो पूरा एक डो जैसा बन जाए उसके बाद में आपको इस गैस को बंद कर देना है और थोड़ी देर के लिए आपको आपका ये बैटर जो है उसको ठंडा होने देना है। थोड़ी देर जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद अब आपको क्या करना है कि हाथों में घी लगा लेना है थोड़ा सा और हाथों से इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है और उसके बाद उन छोटी छोटी गोलियों के आपको लड्डू बना लेने हैं। जब लड्डू बन जाए उसके बाद जो बुरादा आपके पास बचा हुआ था, जो मैंने नारियल का बुरादा कहा था ना कि थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, उसको आपको इन लड्डुओं के ऊपर से लपेट देना है, लगा देना है बुरादे को। बहुत अच्छे टेस्टी आपके नारियल के लड्डू बनके तैयार हैं और अब आप इनको भोग लगा सकते हैं हमारे गणपति जी को, क्योंकि गणपति जी को बहुत पसंद होते हैं लड्डू।
3: लड्डू आई लव लड्डू। तो गणपति बप्पा मोरिया, आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा जो भजन अभी हमको आशु जी ने लिख करके भेजा है। बहुत ही प्यारा वाला भजन भेजा है, मतलब क्या बता दूं कि, और उसके बाद में मैं प्ले करूंगी पता है किसका, प्रीति जी का मेरा भोला है भंडारी, बहुत ही प्यारा सा गाना है। एंड देन महेंद्र जी का, क्योंकि उन्होंने भेजा है सांसों की माला पे, इतना फेवरेट सॉन्ग महेंद्र जी, बहुत ही प्यारा सा ये भजन है। तो ये 3 गाने बजने के बाद ही अब हम अगला गाना बजाएंगे। एंड देवा ओ देवा श्री गणेश आय देवा जी, राहुल जी आप कभी सॉन्ग को प्ले करेंगे, लेकिन लाइन से हम अभी 2 गाने आपको सुनाएंगे एंड देन मास्टर शेफ की रेसिपी वेट कर रही है। तो इस 2 गानों के बाद मास्टर शेफ की रेसिपी एंड देन आगे के गाने।
4: सो आइए लिसनर्स चलते हैं, सुनते हैं ये प्यारा सा भजन। स्टे ट्यून्ड।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, वापस आ चुके हैं हम फिर से करने सुन सहेली में कुछ बातें। लेकिन उससे पहले आइए, आ चुकी हैं हमारी मास्टर शेफ हमारे स्टूडियो में। तो आइए सुनते हैं हमारी मास्टर शेफ की आवाज में कि आज उनके पास हमारे लिए क्या है। तो आइए सुनते हैं सीधा मास्टर शेफ से।
1: सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आपके लिए स्पेशल राज कचौड़ी और ढोकला लेके आई हूँ। यूँ तो ढोकले की जो है रेसिपी बहुत पुरानी है, एक दो बार मैं आपको बता भी चुकी हूँ, लेकिन इस बरसात के मौसम में ढोकले का बहुत चलन रहता है और सभी लोग की डिमांड रहती है कि शाम के समय नाश्ता करते समय अगर ढोकला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और राज कचौड़ी जो है ये बड़ी पॉपुलर डिश है, और इसको आप कानपुर में जो तिवारी रेस्टोरेंट है उसमें हम लोग जाते थे, वहाँ बिरहाना रोड पे है, उसमें खा के आते थे, क्योंकि उनके यहाँ की स्पेशल राज कचौड़ी बहुत अच्छी होती थी। परंतु फिर धीरे धीरे हम लोग ने कोशिश की और अब हम आपके सामने राज कचौड़ी ला रहे हैं। ये आप ज़रूर बनाइएगा। थोड़ी सा सामान इसमें ज़्यादा लगता है, थोड़ी मेहनत भी रहती है, पर यदि आप एक बार बना लेंगी तो बार बार अपने मेहमानों को ये राज कचौड़ी ज़रूर खिलाएंगी। और हमारा ख्याल है आप सबको अलग से भी इनविटेशन देके ये डिश खिलाएंगी। चलिए अब सामान लिख लीजिए। एक कप मैदा लेंगे और 3/4 प्याला आप सूजी लेंगी, और हल्का हल्का पानी का छींटा देकर इसको हम मुलायम मुलायम सान लेंगे, और सान करके कपड़े से ढककर हम अलग रख देंगे। अब क्या करेंगे कि बेसन लेंगे हम 1/2 कप, और इसमें खाने वाला मीठा सोडा 1/4 चम्मच डाल देंगे, और इसमें अगर हम चाहेंगे तो थोड़ा फूड कलर पीले रंग का डाल देंगे। और इसको भी हम क्या करेंगे, हल्का सा पानी डाल करके मुलायम सान करके अलग रख लेंगे। इसके बाद अब इसके अंदर राज कचौड़ी में हमें क्या भरना है, हम सफ़ेद चना भी भर सकते हैं, सफ़ेद मटर भी भर सकते हैं, और आलू आपने देखा है उबला हुआ आलू मसालेदार छौंका हुआ वो भी भर सकती हैं, हरा मिर्च हरा धनिया है, छोला जो है वो मसालेदार नींबू उबू निचोड़ के हरी मिर्च हरा धनिया डाल के जो बनता है वो बना सकती हैं। आप फिलिंग जो है आप जैसे भी रख लीजिए, इसमें आप अनारदाना भी डाल सकती हैं और सेव डाल सकती हैं, फ्रूट्स भी कोई डाल सकती हैं, दही और मीठी चटनी ये बिल्कुल अनिवार्य है। इससे एक तो राज कचौड़ी सुंदर बहुत लगती है और दूसरे खाने में स्वाद भी बहुत रहता है। अब आप क्या करेंगी कि जो आपने सफ़ेद आटा मतलब जो आपने आटा सान के सूजी के संग रखा है उसको हल्के हाथ से अपनी हथेली में रह के थोड़ा मुलायम करेंगी। इससे ये खूब अच्छे से सन जाएगा और एक सार होके कुछ ना कुछ तो फूल जाएगा। इसके बाद आपने जो पीला बेसन वाला स्टफिंग रखी है इसके छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और अलग रख लें। अब आप क्या करेंगी कि जो आपने सफ़ेद आटे की पूड़ी है उसके अंदर ये गोली बेसन वाली भरिए। भरने के बाद इसको आप जो है उसको करें क्या कि अलग सब रख लें, उसके बाद एक एक पूड़ी आप सेकेंगी। इसके लिए आप एक टूथपिक रख लीजिए। आपकी कचौड़ी जैसे ही फूले वैसे ही आप बिल्कुल बीचों बीच जो है जरा सा छेद कर दें टूथपिक से, नीचे नहीं करना है, सिर्फ ऊपर ही ऊपर एक परत में हल्का सा छेद कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी पूड़ी जो है वो फूली भी रहेगी, कुरकुरी भी हो जाएगी और खूब अच्छी फूलती है। आप जो है जैसे खस्ता कचौड़ी बनती है उतनी बड़ी बड़ी आप बना करके ऐसे सब रख लेंगी, और आप एक एक करके पूड़ी फुलाइएगा क्योंकि आपको टूथपिक से हल्का सा बीचों बीच एक छेद करना ही करना है। अब आप जो है जब सब बन जाए आप उसको तोड़ के खुद देखिएगा। एक आप सेकिएगा, सेकने के बाद हल्का सा ऊपर छेद करिएगा, छेद करने के बाद मध्यम आंच में इसे फिर से सेकिएगा और पलट करके फिर सेकिएगा। ये देखिएगा कि गुलाबी गुलाबी हो गई है, निकालिए, देखिए ये ठंडी होने पर भी मुलायम नहीं पड़ेगी, ये कड़ी ही बनी रहेगी, जैसे पानी के बताशे आपके कड़े रहते हैं। अब आप इसको क्या करेंगी, स्टफिंग आपकी तैयार है, नहीं तैयार है तो इन सबको सेकने के बाद आपने सब तैयारी कर रखी है, आप स्टफिंग बना लीजिए। इसको आप प्लेट में रखिए, कचौड़ी को फोड़िए, उसमें सब सामान भरिए। भरने के बाद ऊपर से मीठी चटनी, हरी धनिया सब डाल के सजाइए, अनार डालिए, दाना डालिए, सेब डालिए और आप अपने मेहमानों को खिलाइए। देखिएगा कि ये कितनी स्वादिष्ट और कितनी सुंदर आपकी राज कचौड़ी बन जाती है। तो मुझे आशा है कि ये वाली डिश आपको बहुत पसंद आएगी और पसंद आनी भी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी स्पेशल डिश है, हर कोई नहीं खाता बनाता है, पर आपके लिए मैं लेके आई।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840 3395 84 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता, यानी मैं हूँ आपकी आज समता
5: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
0: तो चलिए भाई बता दूं, दुखरनाथ मंदिर स्थित में हम आप बैठे हुए हैं कॉलेज में, यानी कि आपके अपने एफएम 89.6 एफएम में। लेकिन कल रात 12 बजे से जो भव्य नजारा हम लोगों को रील्स के माध्यम से, हम लोगों को लाइव के माध्यम से जो मिल रहा था, ओ माय गॉड, जो कहा जाता है कि इस बार सरयू नदी से 10 लाख श्रद्धालुओं ने जल को भरा है। तो भाई वहां से भर करके आए तो हमारे भोले बाबा मंदिर में ही है, तो हम कितने भोले बाबा के करीब हैं अंशिका, सोचो तुम।
5: yes,
0: लोग कितनी दूर दूर से आते हैं और हम लोग कितने करीब हैं भोले बाबा के। तो भाई ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक कहते हैं ना कि उनका आशीर्वाद हम पे है कि हम लोग वाकई में रोज उनके दर्शन करते हैं, मतलब वहीं से आना वहीं से जाना, हम लोग रोज उनके दर्शन करते हैं। और इतनी ज्यादा मतलब जो कि सुरक्षा लगाई गई थी, उस सुरक्षा के दौरान किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सब लोगों ने आराम से जल को अर्पित किया, जल को चढ़ाया और अपने अपने घरों को गए। इस बार तो महिलाओं का भी तादाद था, रात में 12:15 बजे से शुरू हुआ है और हमने अभी अभी रील देखी कि 12:15 से शुरू हुआ है और सुबह 4 बजे तक महिलाओं की भी तादाद लगी हुई थी, उनकी कतार टूटी नहीं। मतलब इतनी ज्यादा भव्य जो कि संगत आई थी दूर दूर से जल चढ़ाने के लिए।
5: बिल्कुल सही कहा आपने मैम, और मतलब क्या कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कहीं ना कहीं उसमें बिल्कुल थे और ऐसे लग रहा था छोटे छोटे बच्चे।
0: लेकिन इन सब में तुमने एक बात को गौर किया कि पुलिस प्रशासन हमारे गोंडा का कितनी मतलब समझदारी से लगा रहा और किसी को कोई भी खरोच तक नहीं आई।
5: बिल्कुल मैम,
0: तो थैंक यू सो मच हमारे गोंडा निवासी जितने लोग हैं उनका, जिन्होंने इस भव्य जो की आयोजन में सबका सहयोग रहा एंड पुलिस प्रशासन का। ऑब्वियस सी बात है, अगर उनका साथ ना हो तो वाकई में ये इतने से बड़ा आयोजन मतलब जैसे कहते ना सुरक्षापूर्ण होना संभव हो ही नहीं सकता है।
5: बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक सेफ्टी नहीं होती, हमें लगता नहीं है कि माहौल सेफ है, तब तक हम जाना भी नहीं चाहते।
0: बिल्कुल,
5: लेकिन कल ऐसा ही था कि माहौल भी सेफ था और हमारे भोले बाबा की कृपा भी थी और हम सभी ने बहुत सारा एंजॉय भी किया।
0: जी हाँ, तो चल कांवरिया का एक सॉन्ग मुझे लग रहा है कि मिला था, पर मुझे हर हर शंभू का गाना एक और मिल गया। आइए जाते जाते आज हम अच्छा तो हम नहीं चलते हैं, हम ये गाना नहीं लगाएंगे, आज भोले बाबा का दिन है तो उन्हीं के गाने से हम अपने आज के शो को एंड करते हैं। फिर मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय
5: बाय दोस्तों।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब?
3: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
7: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
6: सच में? क्या खास है वहाँ?
7: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
6: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
7: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
6: और फोटोग्राफी वगैरह?
7: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
6: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
7: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839-613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
6: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

हाँ जी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। पहले तो भैया आज का जो माहौल है, गणेश चतुर्थी और इसी के साथ साथ कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं आपका अपना गोंडा का एफएम रेडियो 99.6 एफएम, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरशी उन्नति। और आज का दिन तो भैया दुकाननाथ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ है कि भीड़ ने हमको निकलने ही नहीं दिया। हालांकि हम पहुंच गए हैं धक्का धुक्की खा करके, और इतना खूबसूरत माहौल आज बना हुआ है मेरे स्टूडियो के बगल में। इतने सारे लोग, मुझे लगा नहीं था गोंडा में इतने लोग हैं, लेकिन देख के लगा कि उड़ी बाबा, गोंडा में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, इकलौते हम ही नहीं रहते हैं। तो फिलहाल आप गोंडा में से कहां से हैं जरा बताइएगा चैट बॉक्स में, और हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गोंडा विद राज उन्नति। और हमारी पहली फरमाइश भी आ चुकी है हमारे पास, जो किसी और की नहीं, राजस्थान से आई है राहुल जी की, और उसके बाद आई है हमारे पास नरेश प्रजापति की। और दोनों ने कहा कि एक ही फरमाइश की है, AR रहमान के म्यूजिक पर लगान फिल्म से आप सुनने जा रहे हैं ओ पालन हारे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फरमाइशें भेजते रहिए, क्योंकि ये है आपका अपना कॉल ट्यून गोंडा 6393316429 पर, यानी कि 6393316429। और इन्जॉय करते रहिए, और मेरी तरह आप भी कहीं ना कहीं दुखरनाथ की भीड़ में खो जाएं उससे पहले अपने फ़ोन उठाकर फरमाइशें भेजते रहिए।

लता जी और उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन रहे थे यार रहमान का म्यूजिक, जावेद अख्तर के लिखे बोलो पालनहारे। और ये फरमाइश थी हमारे राहुल जी की फ्रॉम राजस्थान और नरेश प्रजापति की। और आप एंजॉय कर रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा, क्योंकि ये है आपके अपने फरमाइश वाला कार्यक्रम। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें कि आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। अगली फरमाइश को ट्यून करने से पहले आइए बढ़ते हैं आपके चैट बॉक्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि कुछ पैगाम हमारे पास आ चुके हैं, कुछ मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं, तो पहले उनको ले लेते हैं। एंड सबसे पहले मैसेज जो आज के शो में आया था वो आया था राहुल जी का, बहुत प्यारा भजन। एंड नाजिया जी लिख रही हैं, यानी कि नाजिया अंसारी जी, आपका भी स्वागत करते हैं। इसके बाद रोशनी रावत जी का मैसेज है, गुड आफ्टरनून डियर क्यूट क्यूट मैम जी। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा क्यूट हूँ मैं, डबल डबल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। एंड सुनते रहिए ज्ञानस्थली रेडियो, हमारे लिखा है राहुल जी ने। जी हाँ बिल्कुल, सुनते रहिए, इसमें तो कोई भी होड़ नहीं है, आपको सुनना ही पड़ेगा। और रिजु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। रोशनी जी ने लिखा है कि मेरा सॉन्ग डेडिकेटेड है सबसे पहले आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद है गुलाबशाह जी को, महेंद्र भैया को, बबीता राव को और अनु पांडे जी को। महेंद्र दीपन हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम राजस्थान, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, नमस्ते आशुमती मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। एंड नाजिया जी लिख रही हैं वेरी वेरी गुड आफ्टरनून अदी मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। पप्पू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून टू यू। एंड राहुल जी ने लिखा है उन्नति मैम को नमस्ते, नमस्ते आपको भी। एंड संजय जी जुड़े पटना से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, और मैं अंशिका नहीं, मेरा नाम है उन्नति। एंड हमारे साथ आप जुड़े हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। एंड के श्री हमारे साथ जुड़े हैं, यानी कि आर के श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आशुति बेटा, आज से मेरी फिर से वापसी हो गई है, क्या बात है, आइए आपका वापस से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा विद आशुति। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे पास है गुलाबशाह जी की, और ये गाना डेडिकेट किया गया है मुझको। भैया सारे गाने सबसे पहले मुझे ही आजकल डेडिकेट हो रहे हैं, मुझको बड़ा मज़ा आ रही है, आई होप आपको भी आ रही होगी। फिलहाल इसके साथ साथ ये डेडिकेट है हमारी अनु पांडे जी को एंड रोशनी रावत जी को। गाने का नाम है ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, हर दिल जो प्यार करेगा, सलमान खान पर फिल्माया गया गाना, समीर के बोल सोनू निगम की आवाज़ में और अनु मलिक का म्यूजिक, आप इन्जॉय करने जा रहे हैं। सुनते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पर अगली फरमाइश को लेकर के। तब तक के लिए अपनी फरमाइशों को भेजने के लिए डायल करें 6393316429। स्टे ट्यून्ड।

0: और भैया अगर इसका टेबल थोड़ा सा टर्न कर दिया जाए, यानी कि थोड़ा सा सिचुएशन बदल दिया जाए, तो तन्हाई में दिल धड़कता है, थोड़ी सी आहट से भी जग जाता हूँ, और ये सारी सिचुएशन को अगर हम थोड़ा सा हॉरर फिल्मों में डाल दें तब ये कुछ अलग साउंड करेगा, है कि नहीं? फिलहाल क्योंकि रोमांटिक में बहुत रोमांटिक साउंड कर रहा है और लग रहा है कि तन्हाई में ही दिल धड़कता है। अब दिल भी अंदर से बोल रहा है मैं तन्हाई हो, भीड़ों में हर जगह धड़क रहा हूँ, तुमको ही तन्हाई में सुनाई दे रहा हूँ, उसमें मेरी दिक्कत है क्या? बताइए बताइए, मैं तो शुरू से ही धड़क रहा था ना। बट क्या है ना कि जब हम बोल लिखते हैं गाने की और जब तक हम उसको थोड़ा सा नज़रिया पलट कर नहीं देखते, हर एक चीज़ बड़ी खूबसूरत दिखती है। इसीलिए मैं कहती हूँ नज़रिया मैटर करता है दोस्त। आप क्या चीज़ देख रहे हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप किस नज़रिए से उसको देख रहे हो। अगर आपका नज़रिया रोमांटिक है तो आपको ये बातें भी रोमांटिक नज़र आती हैं, और अगर आपने इसको थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट किया, थोड़ा सा हॉरर मिक्स किया, तो फिर ये आपको डरावनी नज़र आती हैं। और अगर कहीं आप निकले बायोलॉजी के स्टूडेंट और आपने कहा दिल तो रोज़ धड़कता रहता है, तो ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इलॉजिकल चीजें हो जाती हैं। तो नजरिया मैटर करता है आपकी बातों से भी ज्यादा। फिलहाल आज का ज्ञान इतना काफी हो चुका है और हम बढ़ेंगे अगली फरमाइश की ओर, लेकिन उससे पहले आपके मैसेजेस को देख लेते हैं। आइडल हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं हाय हाय, लेकिन आप आइडल हैं किसकी जरा ये भी मुझे बताएं। अंबर जी हमारे साथ जुड़े हैं, आज तो रास्ते में भंडारा भी खाकर आई होंगी। अनफॉर्चुनेटली जब तक हम आए तब तक भंडारा साफ हो चुका था तो हमने नहीं खाया, एंड वाकई में ये गोंडा शहर की ही नहीं पूरे देश की धड़कन है। क्या बात है, ये रेडियो ज्ञान असली बात हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज से मैं इसको ये नहीं बोलूंगी कि ये आपकी गोंडा शहर की धड़कन, आज से मैं बोलूंगी ये है आपके भारत देश की धड़कन। शहर तो हो नहीं सकता ना भारत। फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं प्रोग्राम लाजवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी फ्रॉम इंदौर, आप लिख रहे हैं, थैंक यू लिखा है हमारी रोशनी रावत जी ने गुलाबशाह जी को। और वैसे यहाँ पर एक चीज़ तो है, गुलाबशाह जी रोशनी रावत को डेडिकेट करती है, रोशनी रावत गुलाबशाह जी को डेडिकेट करती है, और दोनों लोग मिलकर मुझे डेडिकेट करती है, और आए मुझे इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि हम खुश हो जाते हैं तुरंत ही। फिलहाल आइए इन्जॉय करते हैं अपने अगले गाने को। अगला गाना हमारे पास आया है देवी प्रसाद जी की फरमाइश पर। देवी प्रसाद जी अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और गाने का नाम हम आपको बता दें, रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे रे यार को आना है मुश्किल। मोहम्मद रफी की आवाज में प्लस आपकी अपनी आशा जी की आवाज में अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया गाना मजबूर फिल्म से, जो कि 1974 में आया था। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉल ट्यून गोंडा।
1: मनाना मुश्किल है रूठे यार को मनाना मुश्किल।
0: अरे भैया अरविंद जी को हमने इग्नोर नहीं मारा। अरविंद जी आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं कॉल ट्यून गोंडा में।

और ये फरमाइश थी हमारे देवी प्रसाद जी की। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली फरमाइश को ट्यून करने के लिए। आपके अपने कॉलर ट्यून गोना में, और एनी गैस अगली फरमाइश किसकी हो सकती है, अगर नहीं तो आइए हम आपको बता देते हैं। अगली फरमाइश हमारे पास आई है रिजु जी की, एंड बहुत ही खूबसूरत सा गाना है अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाज़ में, तू ही है आशिकी। आए हाय हाय, बहुत ही खूबसूरत ड्यूट वर्जन है। इन्जॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। स्टे ट्यून्ड।

तू ही है आशिकी, आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाज में ढिश क्या हूँ फिल्म से, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा और बहुत ही पसंदीदा गाना है ये हमारे सभी का, और हमारे लिसनर्स ने भी तारीफ कर दी है। नाइस सॉन्ग, नाइस सॉन्ग, नाइस सॉन्ग। काश ये सॉन्ग 2000 में रिलीज होता। अजी लो जनाब, यही तो मसला है कि जो भी चीज जब होती है तब हमको समझ में नहीं आती है, उससे पहले या तो आगे मांगते हैं, कहते हैं या तो 2000 में रिलीज होता या तो उससे पहले होता, ये काम आज नहीं कल होता, ये काम परसों होना चाहिए था। अरे भैया, जब जैसे हुआ, जहां भी हुआ उसको एक्सेप्ट कीजिए ना, जस्ट एक्सेप्ट इट। लेकिन गाना बहुत खूबसूरत है, ये भी आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिलहाल आइए चलते हैं अगले गाने की तरफ, और हमारे नागेश्वर धाकड़ जी की एंट्री हो चुकी है। बहुत ही धाकड़ तरीके से लिखा है, गुड इवनिंग मती मैम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून बाय द वे, एंड सुना है कि आज आपके घर में गणपति जी विराजमान हुए हैं, ये आपको कैसे पता चल जाता है सब कुछ? हमको लगता है कि आप हमारे घर में स्पाई कैमरा लगाकर घूम रहे हो, पता है, एक बार मिल जाए मुझे वो कैमरा फिर मैं आती हूँ आपको बताने के लिए। आपने धाकड़ अंदाज में फिलहाल के लिए आपका स्वागत करते हैं, चलते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग जो हमारे पास है वो मुसीना अंसारी जी का है, और वो सुनना चाहती हैं, तुम अगर साथ देने का वादा करो। क्या बात है, बेहद ही रोमांटिक और बेहद ही हसीन गाने की बात आ चुकी है, बहुत ही खूबसूरत नगमा है आपके लिए पेश। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगला सॉन्ग हमारी रोशनी रावत जी का होने वाला है, तो दिलों को थाम के बैठिएगा, बिकॉज आपको भी नहीं पता अगला गाना किस कौन सा हो सकता है।

महेंद्र कपूर की आवाज में आप सुन रहे थे हमराज 1967 से सुनील दत्त और भीमी पर फिल्माया गया गाना तुम अगर साथ देने का वादा करो, मुसीन अंसारी जी की फरमाइश थी। और वक्त है अब अगले गाने को ट्यून करने का, अगली फरमाइश को ट्यून करने का, जो ऑफकोर्स रोशनी रावत जी का है। और ये गाना आप सभी को डेडिकेटेड है, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हालांकि उन्होंने नहीं, ये गाना हमने डेडिकेट कर दिया है। गाने का नाम है ऐसा लगता है जैसे आई एम इन लव। ये दिल आशिकाना फिल्म से आप सुनने जा रहे हैं कुमार सानू और अलका जी की आवाज में। मिलते हैं अगले सॉन्ग को लेकर के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और आप क्यों उदास हो रहे हैं, हमारे दो लिसनर जिनका नाम है अरविंद जी एंड हमारे संजय जी फ्रॉम पटना, आप दोनों के चेहरे पर क्यों 12 बज गए भैया? अभी तो गाड़ी में 3:30 ही हो रहे हैं।

आप एंजॉय कर रहे थे ऐसा लगता है जैसे आई एम इन लव, और ये गाना था हमारी रोशनी रावत जी की फरमाइश। आइए बढ़ते हैं अगले गाने को ट्यून करने के लिए। दुखरना से हमारे पास गाना आया है राकेश वर्मा जी का, और वो सुनना चाह रहे हैं मेला दिलों का मेला है, बाहर भी लगा एक मेला है जिसमें भीड़ ने सब कुछ अकेले ही संभाला है। फिलहाल आप एंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे अगले सॉन्ग पर जो कि हमारे रईस साहब का है। इसके बाद है महेंद्र दीपन जी का फ्रॉम राजस्थान, और ये गाना डेडिकेटेड है उनकी तरफ से हमारे अंबर गोयल जी को।

फरमाइश थी हमारे राकेश वर्मा जी की, और आप सुन रहे थे अलका जी, उदित नारायण, साधना सरगम, अभिजीत शंकर, महादेवन, पूनम और सोनू निगम की आवाज में, और ऑफ कोर्स लिखा था बोल देव कोहली और धर्मेश दर्शन, नया संगीत था हमारे अनु मलिक साहब का, मेला फिल्म से आप एंजॉय कर रहे थे। एंड हमारे संजय जी लिख रहे हैं कि मैम मेरे पहचान वाला कोई दिख नहीं रहा है, मैम अकेला हूँ, मुझे कोई पहचानता नहीं है, काफ़ी दिनों बाद आए हैं आपको छोड़ के, किससे बात करें, आपस में लोग बात कर रहे हैं और हम अकेले हैं इसीलिए उदास है। अजी अकेले से उदास नहीं होते, हम हैं और हमारे सारे लिसनर आपके साथ मौजूद हैं। हाँ भले ही अभी आपको वो आप नहीं जानते हैं, बट धीरे धीरे आपको जान जाएंगे। और मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पर कुछ लिसनर ऐसे हैं जो हमारे नए नवेले को या फिर जो पहली बार दर्शन देते हैं उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, वो मेरी तरह है। तो आइए एंजॉय करते रहिए, उदास होने की ज़रूरत नहीं है आपको। और हमारे

अरविंद जी लगातार जुड़े हुए हैं हमारी कॉल पर, कोई और था जी? हाँ, वो हमारी टीम थी जो आपसे बात कर रही थी। एंड आइए ट्यून कर लेते हैं अगले गाने को। अगला गाना हमारे पास आया है रईस साहब की फरमाइश दिल लेके, तो हम आपको सुनाने जा रहे हैं आपके अपना वांटेड फिल्म से सलमान खान पर फिल्माया गया गाना, शान और श्रेया की आवाज़ में साजिद वाजिद का संगीत। एंजॉय करते रहिए।

और ये फरमाइश थी हमारे रईस साहब की। एंड महेंद्र दीपन जी, आप दोबारा से कॉल करके देख लीजिए, टीम से बात हो चुकी है, अब आपकी कॉल उठ जाएगी। फिलहाल अगला गाना हमारे महेंद्र दीपन जी का ही है और ये गाना डेडिकेट किया है उन्होंने हमारे गोयल साहब यानी कि अंबर गोयल को। गाने का नाम है तू निकला छुपा रुस्तम। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम मिलते हैं अगले गाने को लेकर के, जो कि हमारे आदर्श सोनी जी का है। एंड इसके बाद मुमताज अंसारी जी, अरविंद मौर्या जी और हमारी अनु पांडे जी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉल ट्यून गुंडा विद राज्य नती।

मतलब हमारे महेंद्र जी अमर गोयल साहब से कहना चाहते हैं तो निकला छुपा रुस्तम है कि ना मैंने सही पकड़ा ना, वैसे सही पकड़ लेते हैं हम कभी कभी। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास आदर्श सोनी जी का आया है, बेमान पिया रे बड़ा जुल्म किया रे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, उदित नारायण जी और अलका जी की आवाज है। एंड इसी के साथ हम चलेंगे अगले गाने पर। तब तक के लिए अगर आप एंजॉय कर रहे हैं क्वालिटी उनगुना और आपकी फरमाइशें नहीं आई हैं तो भैया क्या बात का इंतजार है, क्यों दुख है, किस बात का गम है। 6393316429 अभी भी खुला है तो आप अपनी कॉल करके भेज सकते हैं क्योंकि बहुत जल्द अब आपकी कॉल्स होने वाली है बंद, वक्त को मद्देनजर रखते हुए।

और इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले गाने की फरमाइश को पूरा करने के लिए। अगली फरमाइश हमारे पास आई है मुमताज अंसारी जी की, और वो सुनना चाहते हैं दीवाना फिल्म से तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले गाने पर, जो कि हमारे अरविंद मौर्य जी का है, उसके बाद अनु पांडे जी का है, देन हमारे पास अगली फरमाइश आई है बाबू अंसारी जी की और साक्षी जी की। स्टे ट्यून्ड।

ये गाना था हमारे मुमताज अंसारी जी की फरमाइश। अगला गाना पेश करते हैं आपके लिए हम अरविंद मौर्य जी की फरमाइश पर, और इसी के साथ आपकी अगली फरमाइश जो होने वाली है वो ऑफ कोर्स अनु पांडे जी की, साक्षी मिश्रा जी की, एंड इसके अलावा बाबू अंसारी जी की और इम्तियाज अहमद जी की।

और भैया इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश को ट्यून करने के लिए। अगली फरमाइश हमारे पास आई है सत्यम शिवम सुंदरम का टाइटल ट्रैक, और ये गाना डेडिकेट हुआ है एज यूजुअल बहुत सारे लोगों को, प्लस मुझे भी, आप सभी को डेडिकेटेड है हमारी अनु पांडे जी की तरफ से। तो एंजॉय करते रहिए और इस डेडिकेशन को भी ज़रा थैंक यू बोले, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा नगमा, बहुत ही प्यारा सॉन्ग डेडिकेट किया गया है। एंड इसके बाद हम मिलते हैं अगले गाने पर ट्यून करने के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

चकमे को बीच में रुकने के लिए माफी चाहेंगे, लेकिन वक्त है अगले गाने को प्ले करने का, जो कि हमारे इम्तियाज अहमद जी की है। तो आइए एंजॉय करते हैं बम बम भोले, और उसके बाद हम मिलेंगे अपने अगले गाने पर। स्टे ट्यून्ड।

ये फरमाइश थी हमारे इम्तियाज जी की, और अब बारी है हमारे बाबू अंसारी जी की फरमाइश को ट्यून करने का, और गाने का नाम है चुपके से कोई आएगा। तो जरा इंजॉय करते रहिए, और हम मिलेंगे अपनी आखिरी फरमाइश पर जो हमारे साक्षी जी की है। तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए। आप सुन रहे हैं गुना का अपना FM रेडियो ज्ञान, असली 89.6 FM विद राजनती।

ये फरमाइश थी हमारे बाबू अंसारी जी की, और अब हमारी आखिरी फरमाइश का वक्त आ चला है, जो हमारी साक्षी जी का, नागेश्वथाकर जी का, और डेडिकेट है उन सभी लोगों को जिन्होंने आज अपनी फरमाइश हमको नहीं भेजी है और लगातार हमारे साथ बड़े हुए हैं पूरे टाइम से कॉलोटीन गोंडा में। मुझे महादेव का नशा है, आखिरी फरमाइश ये है हमारे नागेश्वर जी की और हमारी साक्षी जी की। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे कॉलोटीन गोंडा। फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त अब आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। रखिएगा अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे गोंडा का अपना FM रेडियो 89.6 FM। अगला कार्यक्रम है आपका, यानी कि अगला प्रोग्राम है आपका ज्ञान असली बीट्स। बहुत सारे गाने, बहुत सारी बीट्स सुनना मत भूलिएगा। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा फीडबैक में जरूर से बताइएगा चैट बॉक्स के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9286 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9268-9976-9260-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9860 9876, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: अरे दादा, रे दादा, इलाक धाई दी नहीं चटपटाऊ, मुंह पिरा इलाक हमार चबात चबात, का करत ही है घर मैया, का करती हूँ?
4: देखो चिल्लायो ना, हमरे कनवा में दर्द होत है, ये जान लियो।
3: ई का है कनवा पिरात है, पाकवा की गा है?
4: अतना बोलत यो ना, हमार कनवा एकदम जरे लागत है कि हम का बताई, वार कड़ाकुल हुई गई हो तू।
3: अब जब ना बोली तब कहा तू कि काहे दुलारी चुप हो, बोलते नहीं हो, और जब बोली तब कहा तुम्हार कनवा पाकी गा है।
4: अतनी जोर जोर से चिल्लावा जात है,
3: लाओ तोहरे कनवा मैया भैंसिया के अपने मुँह ती डाल दी बठिकाए जाए कनवा। हाँ हो, ई दवाई है ठो। हंसती है लो, कुछ कहो तो हंस, ये सही हो के पसबा डाल दो कनवा काय जात है।
4: तो रह जइयो अनपढ़ के अनपढ़, अब तू का चाहे जितना पढ़ाए लेकिन तू ना सीखियो।
3: देख लो एक बात हम बताई दी, आज हमें 6 महीना से
4: अगर डॉक्टर सुने ना तो तुमका इतना दौड़ाई इतना मारी के कहीं क्या भाई, हम पढ़ाए दे तू का अच्छे से।
3: 6 महीना से हमका एको अच्छा पढ़ाई नाई है अंग्रेजी के,
4: नहीं पढ़ाए हैं।
3: कहाँ पढ़े? वो देखो यह बिटिनी आएगी, वो देखो पथरका आई बैठी है चुप पैसे।
5: राम राम चाची,
3: तो राम राम तो बहनी, राम राम, और यह नहु आई ही।
5: राम राम चाची,
3: का नाम है इनके? निधि।
5: अच्छा
3: वो आए हैं,
6: बहुत दिन बाद आए ना चाची, हमारे बढ़िया स्वागत करियो,
5: गाना लगाई
3: है। बहनी आओ, हम मूंगफलिया चबाई थी, तू चबा लो, बरते हो
4: बरते नहीं
6: है चाची, लेकिन तब भो खा।
4: हाय बोरी माई, बर्तन नहीं हो?
3: बर्तन नहीं
6: चाची, बर्तन नहीं रह पाए थे, भूख लग जाते।
4: या मोरी माई, भैया देखो यहाँ तो होत है कि 9 दिन का महारानी का व्रत आवत है और लोग चलते रहते हैं।
3: वहाँ होते है सही
6: चाची, कब्बो कब्बो आप लोग कहाँ थे कि तहाँ से कोई खाए पिए कुमार है, बस हम खाए पिए।
3: देखो जब बर्ते होते थे बहुत खाते, हमारे चटपटी चाची देख लो, जब से हम आए तब से इनके मुँह है चले थे बकर बकर।
4: देखो मूंगफली अपना चबा दी बैठी, तब से हम भूने हैं और तब से मखाना मूंगफली दरे डाल रही हैं।
3: तो बहनी ये बताओ, एक डब्बा लायक धाई थी नहीं हमारे अगवाए, तो हम का करी ना दरी? तो
6: थी चाची
3: बहुत मुहा थी,
5: लाओ चाची बांध ली थोड़ा।
3: ए बहनी यहाँ देखो तरी,
4: अब अतना देखो हमरे घर में ना है कि तुम बांध के ले जाओ।
3: तू जो है हमारे वाला कम हुआ करे लगी का
5: चाची, हम लोग दे तो बांध ले जाए।
4: वाह लो, अब समय बांध ले जाइए तो चाची का खाइए।
3: ऐसा है चाची, ऐसा करो एक बोरिया मंगा लो मखाना, और एक बोरिया मंगलिया।
4: बहुत नीक बतायो, हमारे घर जो है बिलाए जाए बिकाए जाए,
3: भूज के और कुल सबका बटवाई दो।
4: हाँ बटो, हाँ लंगर खोल दिया है, सब खाए आके।
3: तो पढ़ाई वो कुछ बुलाई हो सवेरे से बैठाए हो?
4: हम ये लिए बुलाए हैं कि कीर्तन वीर्तन का कुछ सोचे हो कि बस खाली ऐसे बकर बकर लगाए हो?
3: कीर्तन का तो खैर सोच भाई कर भाई, लेकिन एक बतिया और नहीं जानू
4: का,
3: हमारे घर मैया हमारे एक जनी नंद रहा थी।
4: हाँ।
3: रहत रही पहलवा, अब तो उनके ब्याह हुआ हो गवा, तो उनका कोई रिश्तेदार है जे हुआ रहा था, जहाँ गयु रहा तू डखनवा उड़ गई
4: अमेरिका माँ।
3: हाँ
4: अच्छा,
3: वो अवैया है।
4: कब?
3: आ 3-4 दिन में आ जाये।
4: अच्छा यह नवरता भर में आ जाये?
3: आ जाये।
4: अच्छा
3: तो अब उनके समनवा हम कुछ तो बोलक जानी महीनी।
4: तब अच्छा तो तू अंग्रेजी बात कर रही हो।
3: हाँ वो है पढ़ाओ हमें।
6: अरे चाची आप अगर समय दिया होते तो उनके भरे तो हम सबका आवत है का बहनी।
4: देखो हम तो हुई है ना अमरीका ना तो अमरीका वाली अंग्रेजी हमका आवत है।
3: हाँ
4: हम सिखाई थे इनका।
3: हाँ
4: लेकिन एक दफा सिखाई दूसरी दफा ये
5: विचार
4: देती है।
3: अरे तो कुछ तो जैसे मान लो हमें बतायू है कि का बतायू रहा थंकू बतायू तो थंकू नहीं सीखे।
4: हाँ थंकू तो सीखे।
6: बड़का वाला चाची का सीखे रहा।
3: बड़का वाला का
6: नहीं
3: याद हमरे चेताओ।
4: अभी अभी देखो बार हम इनका
6: बधाई दे वाला बताए ना जो
3: कांगरे चूले सन। देखो हमरे याद है बहनी
4: कांगरे चूले सन बताए रहन।
3: तब
4: तो वहाँ तो सिखाई थे हम का तो तुरे नंद आए रही है वापस आए रही है तो यहाँ सब सीख लो। और तुका रिक्वेस्ट सिखाए रहन की नहीं सिखाए।
3: हाँ भाई रिक्वेस्ट
4: ले अब देखो फिर रिक्वेस्ट कहती है।
5: रिक्वेस्ट नहीं रिक्वेस्ट
3: आई
5: रिक्वेस्ट
4: सुनाओ सुनाओ देखो।
3: हाँ गोल काहे कह ले थी
4: सबक हो जाता है
3: हो जाता है।
4: हाँ वही देखो आई है काजल बहनी आज यहो सिखाई है अंग्रेजी हम सिखाई अंग्रेजी।
3: तो ये मैडम ही कहूँ के पर्स वर्स टांगे ही।
4: हाँ मैडम
3: चश्मा लगा ही जूड़ा बनाई
6: राम राम चाची जी
3: राम
4: बेइज्जती ना किया करो। राम राम कह रहे उसका जवाब दो ढंग से।
3: राम राम बहनी राम राम मैडम हूँ
6: जी। हाँ आप जो समझ लीजिए।
3: कहाँ पढ़ाओ तू बहनी?
6: बस एक ऐसे ही कॉलेज मिल गया जय हिंद स्कूल वहाँ पे हमने पढ़ाई शुरू की
3: पढ़ाना शुरू किया। अच्छा देखो बोले ना अंग्रेजी की नहीं बोले ना।
4: हाँ तो ये अंग्रेजी हो भाई ऐसे अंग्रेजी बोली जात है।
3: हाँ? अब देखो कहूँ कि हम बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे तो ये मैडम जी बतावा जाए
6: जी
3: कि जो है हमें कुछ कुछ हमें अंग्रेजी बता दी जाए।
6: जी बिल्कुल आप क्या सीखना चाहते हैं?
3: अब हम सीखा चाहे थे का सीखा
4: अरे बहनी कुछ ना तू सुन लो हमसे इनका का सिखा दियो इनका छोट मोट।
6: अच्छा बेसिक चीजें।
4: हाँ वह सिखा भी बड़ा बड़का वाला ना ही बोल पाई है।
6: अच्छा।
4: जैसे हम सिखावा रहे कांगरू टू लेसन।
6: अच्छा।
4: तो काती मग मुंह गोल करे पड़त ही हम ना ही बोल पाए।
3: बहनी जोन सोच सोच हुए तो बतायो हम।
6: अच्छा
3: हम पढ़े हैं दुई क्लास पढ़े हैं
6: ठीक है सीधा सीधा।
3: हाँ दुई क्लास हम पढ़े हैं और ये पढ़ी नहीं देखो हमें तकता ही बिला रही।
6: अच्छा
4: तो अब कुछ बोले हो ना के आगे
5: चाची चाची कहाँ तक पढ़े ही
4: दे अब देखो।
3: हाँ
4: तो वही तू सिखाओ ऐसा बहुत कही करी है
3: अब इनके इनके बतिया कह देवे तब फिर भी सियाई जई हम से
5: बताए दे चाची कितना पढ़े
6: चाची हमहु पता है लेकिन चाची बोलिए तब भाई
3: सुनो ना ना ही सियाई जई है
4: भाई तू अपन सीखो ना हमार पढ़ाई पीछे काहे पड़ी हो।
3: हां
4: रह दे
3: ये पढ़े ही बहनी ये पढ़े ही हम कम पढ़े हैं हम दुई पढ़े हैं
4: तो हाँ पेटवा खौलत है ना।
3: हाँ
4: हाँ
3: हाँ
4: जाओ सिवाने जाओ
3: ना लागे तब वो चली जाई
4: तब के चुप पे रहो।
3: हाँ चुप पे है मैडम जी,
6: जी।
3: बतावा जाए हमें कुछ पढ़ाई दिन जाए।
6: अच्छा जब आप दोनों मिलती हैं एक दूसरे को तो आप सबसे पहले कहिएगा मॉर्निंग टाइम में तो गुड मॉर्निंग।
4: अभी जान ना ही पाए
6: गुड मॉर्निंग
4: आप कहो मॉर्निंग टाइम अभी पता नहीं का अर्थ निकाले अर्थ का अनर्थ कर दे
6: समझो चाची।
3: हम कुछ समझे नहीं का इनका मॉर्निंग मॉर्निंग कर रखी वे
4: अब देखियो
6: मॉर्निंग नहीं मॉर्निंग
3: मुहा देखो कस के गोल कह लेती थी।
6: हम इनको हिंदी बता दे आप इंग्लिश बता दीजिए
5: ठीक है
6: चाची।
3: हाँ
6: जब सुबेरवा मिला थू चाची से
3: हाँ
6: तब उनका का बोली हो वो मैम बतावा थी सुनो।
3: हम जब इनसे सुबेरवा मिल ली तो इनसे का कही
6: गुड मॉर्निंग
4: कहो गुड मॉर्निंग
6: कही
4: गुड
3: जब जब सवेरे
4: गुड बोलो पहले गुड गुड बोलो
3: गुड।
4: हाँ मॉर्निंग
3: मॉर्निंग
4: गुड मॉर्निंग
3: सवेरे सवेरे तुम्हें मारे लगी।
4: अरे
3: यहाँ
4: देखो इतना हम
6: मॉर्निंग मतलब सुबह गुड मतलब अच्छा
4: तो का मरियो हम अब तुम्हें मारे लगब
3: देखो देखो देखो रिसियाई शुरू कर दी है मैडम जी।
4: हम कही थे गुड मॉर्निंग बोलो
3: गुड
4: मॉर्निंग
3: मॉर्निंग
4: गुड मॉर्निंग
3: गुड मॉर्निंग
5: चाची बस के
4: गुड मॉर्निंग
3: गुड मॉर्निंग
4: मार दिया
3: दिया खलो
6: चाची रहे तो मार झगड़ा ना दिया खलो भाग जाए
3: दिया खलो मैडम जी बैठी है उन्हें समझ में हमें ये मार
6: आप दोनों आपस में लड़ाई क्यों कर रही हैं?
4: अरे बहनी हमार इनकी चला कर रही थी।
6: अच्छा
4: बहनी
6: फ्रेंडशिप है।
4: हाँ फ्रेंडशिप तो
3: हाँ हाँ हाँ वह है वह है वह है
4: वह है वह है का कहो फ्रेंडशिप
3: फ्रेंड पिप
4: देखो
5: फ्रेंडशिप
4: फ्रेंडशिप बोलो सिप सिप
3: सिप सिप
4: हाँ फ्रेंडशिप
3: हाँ फ्रेंडशिप
4: हाँ
6: अब आ गया
4: बोले हुए
3: ऐसे हमें बहनी कुछ सिखाए दो, ऐसे हमारे घरे कुछ अंग्रेजी वाले आवत है, इनका तो नहीं जाबे, बहुत अंग्रेजी जानती है, दिल्ली वही क्या आई है ना,
4: दिल्ली गए रहन, अमरीका तो गए, हमार भाई रहा थे हुआ अमरीका में।
5: अच्छा
4: जानू बहन जी, अब वो बहुत बढ़िया अंग्रेजी सिखावत हमार भैया, जब हम जाए थे तो कहा थे बहनी हमारी इज्जत रखे हो।
5: अच्छा।
4: हाँ हिया अंग्रेजी बोलो, तो जो हम अंग्रेजी बोलते है ना तो हुआ के अंग्रेज सीख नहीं पावत है हमसे।
5: अच्छा।
4: डराते है हमसे, डराते है वही सब, अतरी बढ़िया अंग्रेजी हुआ बोली थे।
3: अब भैया बोले लगे तो कोई समझ न पाई का कहती है, गबड़म गबड़म
4: तो यहाँ ऐसे बोली जाते, वो गड़बड़ गड़बड़ बोला।
3: मैडम जी हमें एक बात समझा दें जाए। हाँ। कि हम कुछ बोल दी ऐसे अरबी तरबी कुछ बोल दी वह अंग्रेजी हो,
4: नहीं हो।
3: हाँ।
4: हर एक इंग्लिश बोल दे,
5: इंग्लिश होता है,
3: इंग्लिश होता
5: है, इंग्लिश मीनिंग होता है।
3: ए बहनी रचना, ये काव कहती काव कहती
6: चाची, जैसे कोनो चीज आप कोनो कहावतिया कहा थी।
3: हाँ।
6: तमने समझ ना आवत है।
3: हाँ।
6: तो आप ओके अर्थ बतावत थी।
3: हाँ।
6: वही चीजें जब हम सबे कोनो हिंदी बोला जाते है।
3: हाँ।
6: तो ओका जब इंग्लिश में बोला जाता है तो ओका कहा जाता है इंग्लिश मीनिंग।
4: अरे
3: इंग्लिश मीनिंग
4: ऐसे देखो, हम लोग अवधि बोली थे, सबसे नीक भाषा है,
6: सबसे आसान है चाची।
4: हाँ, चाहे हाँ, बोल दो।
3: हाँ हाँ,
4: सबके समझ में आ जाते है,
3: सबके समझ में। ऐ बहन तोरे लोग नहीं समझे, तू हमारे बतिया।
6: बिल्कुल चाची, हमारे सबके तो मातृभाषा है।
3: आई मैडम जी आप समझ लेते हो?
5: जी जी बिल्कुल समझ लेते हैं,
3: हमें सबके आज बोल लेते हो।
5: हाँ।
3: कौन है गाँव को?
5: गंगा धाम।
3: गंगा धाम के रहो
5: जी?
3: अच्छा, बड़ा नीक गाँव का नाम है इनके, गंगा धाम,
4: तो बढ़िया तो है।
3: तो मैडम जी सुना जाए
5: जी।
3: ओ, ओ, अरे आपके नवा का है?
5: काजल यादव।
3: काजल जादव।
4: हाँ,
3: तो ये बतावा जाए कि जादव मैडम, ये बतावा जाए कि वो बताओ तो नहीं हमें ये रचना कि ये मैडम जी बहुत नीक गाँव नहीं कर रही।
4: हाँ, तो हम यह अब तो अब आई हो ये बात समझ मत हो रहे, हम तब से यह बतावा चाहते कि हम इनका बुलावा है, नवरात्रि है, बहुत नीक गाओ दी बहनी।
3: अब चाची हमारे रिस लाग,
4: बात हमार तू फेल कर दियो।
3: तो अब हमारे रिस लाग, अब हम जाए थे, छोड़ छाड़ चली जा, पूछो का है,
4: चली जाइबो
3: पहले, पूछो
4: हमें छोड़ के चली जाइबो?
3: नहीं जाबे, लेकिन ये बताओ ढोलिया मगायो निकनी कि वहाँ धरी है मोटकी भैंसिया?
4: अब देखो लोटन चाचा मानत नहीं हमार कही, वो कहते फालतू बत कही ना करो हमसे, जौन है तौन बजाओ और ना बजाओ तो फाड़ी दो। अब तो फाड़ी दो चाहे राख लो,
3: आज हम फाड़ी दे,
4: फाड़ दे, हम तो कहीं थे फाड़ी दे, तो ना पता तो चले उनका कि दुलारी का तने जोरदार।
5: चाची चाचा से रिक्वेस्ट करा जाए तुम लाए दे हैं।
3: देखो कहते रिक्वच
4: रिक्वच नाई कहीं है।
3: हाँ।
6: ए चाची हमें लागत है आज हम सब पढ़बे पढ़ाईबे खाली यही करबे, गौ नहीं उन्हीं ना होई
3: करबे, गौ नैया करबे, आज इनके यहां आज ही कीर्तनवा करियो है।
4: कीर्तनवा के लिए इनका हम बुलाए हैं कि ये गौनई सिखाए दे हमका,
3: तो आज कही लो ना कीर्तनवा।
4: अरे भाई अब तो हमरे ना कुछ सामान अटत है ना कुछ अटत है, हम कैसे कर ले कीर्तन?
3: कीर्तन में का लगी हो?
4: कीर्तन में केला आई और हुआ से सेब आई, सामान आई, सब गोड़ा जाइए कोई तबे तो लाई।
3: हाँ।
4: गौम का मिला था अपन
3: पूरे कहू पूरे कहू तो है बहनी रचना।
6: हाँ रची,
3: आज कुछ गाय देवो,
4: आज सीख लो
3: ये मैडम से।
5: हाँ,
3: टांगे घूमा थी
4: अतवार का करब बढ़िया की,
3: पांच टांगे घूमा थी गंगा धाम से आई, कुछ गवाई लो इनसे।
4: चाची तो गई है और का,
6: मैडम जी जहाँ पढ़ावा थी वही म्यूजिक पढ़ावा थी।
3: अच्छा म्यूजिक किया पढ़ाओ थी?
6: हाँ, तो ये गई है तो अलग बात रही, हम सब तो रोज गई।
4: अब
6: तो
4: देखो ये म्यूजिक की टीचर हो, म्यूजिक
3: म्यूजिक का। हाँ। हाँ।
6: म्यूजिक चाची,
4: म्यूजिक तो कही था
5: एम एम है,
3: म्यूजिक म्यूजिक
4: म्यूजिक तो बोली था,
3: म्यूजिक ये तो हम हो कहे
4: अंग्रेजी मालूम है, म्यूजिक कहा जाता है।
3: हाँ। ये पढ़े ही हम अंग्रेजी आता नहीं, जाना थी म्यूजिक
4: म्यूजिक।
3: तो बहनी हम ढोलिया बजा दे भाई।
5: अच्छा
3: आई मैडम जी,
4: चाची
3: और परसवा धर दो तो कन्हवे टांगे।
5: हाँ, बिल्कुल
3: परसवा कोई कुछ चोराई उराई ना मैडम जी?
5: जी जी बिल्कुल।
3: हाँ
4: कुछ तो, अरे चाची चुरावे ना कहो ये सब तो देखो गाँव में कैसे ले लिहाओ मचा था, जागत रहे हो जागत रहे हो
3: जान थू का भा।
4: हाँ
3: जब बगलिया में यहाँ राहत नहीं थे और राइन।
4: हाँ हाँ
3: बगलिया में जा रहा थी।
4: हाँ रातों का हुई था
3: उनका जायक रहा सेवाने रातिया के है 1 बजे।
4: अच्छा।
3: उनका कुछ पेट वेट बगदा रहा जैसे उनके काजल के बगद जात रहा।
4: अच्छा।
3: तो जयावत नहीं काजल लग जमी इनके सबके साथ। ये आपका नाई कही थे मैडम जी, दूसरे कही थे तो उनका सिवाने जाए रहा कोनो हुलिया दिस चुअर आवा वो गई ना बैठबे की ना उठका ही भागी हमने लगी किन हे दुलारी जानू का भाम कन का भा कन चुअर आवा है भागो हम हूं बहनी भागेन और पता लाग हल्ला उड़ा रहा कोनो चोर
6: कोई मिला तो ना रहा रास्ता
3: कोनो नहीं बहनी कोनो चोर नहीं मिला हल्लवे उड़ाई रहे कुल
4: अफवाह
3: तो है हल्लो है उड़ाई दही पूरे गाँव भर में नींद हराम भरे रहा कैसे आलमार गिरा दे उनका।
7: हमारा अम्मा तो बेलना लेके बैठी रहती चाची।
3: वाह देखो
7: अरे चाची कोनो बात लेके सतर्क रहा चाहिए।
4: अरे चोर आवे चाहे ना आवे सतर्क बहने सही कही ना
3: हाँ।
4: कि सतर्क रहो
3: ये पतर्क का हुए
4: पतर्क ना सतर्क
6: अरे भाई सतर्क जो उनका हाथ
4: सावधान रहो कौन चोर और घुसा
3: हाँ।
4: पकड़ के मुड़िया निरोड़ दो
3: मारो है बहनी उनका
7: हाँ। चाची पड़ती है आपके बचाए ना वैसे
3: हाँ। अच्छा।
4: तो बहनी तुम डराओ ना अपन परसवा हुए धर दे
3: जी दिना मेरा कोनो चोर नहीं है रखी हम कुलावत है अब जाई ढोलिया लाई तुहार उतारी
4: उतारे
3: पातर ही कहूँ ढोल लेके फाट पर वो तो पता लगी की महतारी तुहार कही की पतर का खमरे मारी डाले
7: अरे चाची ती अखन पातर ही लेकिन
4: देखो पातर मनई होता है ना
3: लड़ाई हुई
4: सुना पातर मनई की ज्यादा जांगर होता है
3: हाँ।
4: अब मोट तो ऐसे ठट रहा था
3: लोटन चाचा से हम अब लड़ी लिया चलो बहनी गाओ हे मैडम जी
6: जी
3: गावा जाए गाँव नैया कीन जाए हम सब बहनी पुरवाई ले भाई
6: जी जी बिल्कुल
3: हाँ।
6: थोड़ा सोच ले कि कौन सा गाना गाएं भक्ति तो गाएं ना
4: अरे माता महारानी के गाय दो हाँ माता महारानी गाओ
6: ठीक है थोड़ा सा ही गाएंगे
3: देखो भंडर भंडर तो हाँ ढोलिया बहुत है नीक नहीं ढोलिया ठीक कराओ
6: चाची
3: हाँ।
6: आप लोग भी साथ में गाइएगा
3: हाँ हाँ हमले पुरवाई ले भाई हाँ।

0: बस चाची।
1: बहु ने गायो बनी तो थोड़े काहे गायो।
0: हाँ इतना ही बहुत है।
2: अरे हम इका सुने हैं बहुत नेक गाना होता है, चलो हम पुरवाई थे बहनी तो बहुत साथ।
0: अच्छा, ठीक है।

0: अंगना में नाचो सारे अंगना, जयकारे माँ के बोलते चलो, जयकारे माँ के बोलते चलो।
1: ऐसे तो है बहनी।

0: बोलते चलो
1: दी,
0: बोलते चलो, बोलते चलो महामाई के जयकारे, बोलते चलो।
2: बोलो सभी मिलके बोलो जय माता दी।
3: बहुत सुंदर भजन रहा
2: जी। जैसे आप नीक हो वैसे गौनैया बड़ा नीक करा गा है,
3: बहुत बढ़िया।
4: सब आप लोग का आशीर्वाद है।
2: बहुत नीक गायो मैडम जी, बहुत नीक। मैं तो जीव खुश कई
3: दी। हाँ सही बात है,
2: जीव खुश हो गया।
4: अच्छा
2: बहुत नीक लगा। बैठो अपनो सोच लियो।
3: अवधि वाले गाय दो और का मैडम जी सुन ले के अवधि गाना
2: का सो। हम यही से दूसरे लड़ी थे
3: का।
2: जब हमारे तो अपन ठंडवा का बंद कर दे तू
3: ठंडवा।
2: अब का वो नाइटिया चली गए
3: तो यहाँ तो होत है। हम झूठ नहीं कहे थे,
2: जैसे हम आए बनी तुमसे कहे थे बनी। अरे निभी जैसे हम आई तैसे इनके बत्ती चली जाए, इनके ठंड बन गई।
3: तो हम का करी तो यार जो लाइट वाले हैं वही दैजार बंद कही देते। हम करी का
5: चाची बिलो तो बढ़त हुई आपके।
3: अरे बिल की चिंता ना आई है बहन।
5: चाचा दे दे।
3: हाँ
2: गोटन चाचा बहुत पैसा है, इनके कम है अपने टिकिया
5: चाची। पैसा है चाची कंजूसी का लागत है।
3: अच्छा नहीं बताई था हमको।
2: कंजूस ना ही है हवा में पिया में लेन देन में ये बहुत उस्ताद ही बहनी।
5: सोचे हो ना चाची गुस्सा जी बंधवा ना करी है।
2: मखनवा सही कहा थी
5: ना चाची बांध दे है ऐसी बात नहीं।
4: और हम चाची के खिलाफ बोला लेकिन पहले बांध ली तब
3: चाची हो जाई हो चाची खिलाफ
5: पीठ पीछे।
3: चलो अच्छा गौ नहीं कह लो सीख लो।
4: तारीफ कह दो खाली
3: इका कहा थी बुदबुदा थी बहनी बहनी जोर से कहो बुदबुदा
4: तो पहली बार तो आई ही किस मैंने दूसरी बार आई
2: आई ही एक दाई आई नहीं भी
4: तो ये बताए थे कि चाची आपके नेचर कौन मैंने कितनी नीक हुआ।
5: हाँ। चाची हम दोनों के आपस के बात रहा
3: तो अच्छा बहनी बुराई ना बतवायो
5: ना।

0: सभी फिर से मिलके बोलो का
1: जय।
2: तो देखो ये हमारे बहन जी, ये अवधि होए, ये अवधि गाना होए
3: जी।
2: हाँ
0: तो एक सुन ली जाए का, अब तुम नाश्ता पानी सब कह दो, एक तो ब्रेक मार दो बेचारी।
4: ब्रेक वाला फिर से अनाउंसमेंट करिए, हम तब बोले बीच में बोले वो काट देंगे, ब्रेक के लिए आप बोलो।
0: आप बोली थे हम बहनी कि अब जब चलो नाश्ता पानी कर लो, खाए पी लो, सब ले थे एक छोटे ब्रेक।
4: ठीक चाची।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
0: सभी विवाहित और अविवाहित हमारी फीमेल्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। और भाई आज है हरी तालिका तीज, और इसके बारे में तो मुझे लगता है सबने बहुत कुछ जान लिया होगा, सबको बहुत कुछ पता चल गया होगा। एंड यस, पता भी चलना चाहिए, हरी तालिका तीज साल में सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है शिव जी के नाम, क्योंकि इस दिन कांवरिया लोग जल ले लेकर निकलते हैं। और भाई गोंडा शहर में तो तीन दिन से कांवरियों की ही धूम मची है, जहाँ देखो रंग बिरंगे कपड़ों में महादेव का नाम लेते हुए बोलबम करते हुए कांवरिया पूरी श्रद्धा से निकल पड़ते हैं। और निकले भी क्यों ना, शिव के लिए तो सब कुछ सर्वस्व लुटाने के लिए हम तैयार रहते हैं, क्योंकि शिव ही हैं जो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। और ये खास व्रत तो भाई औरतों के लिए होता है, फीमेल्स के लिए होता है। वैसे ये एक अवधारणा है हमारी, मेरे हिसाब से तो ये व्रत और ये दिन हर किसी के लिए है। अगर श्रद्धा से महादेव से कुछ भी मांगा जाए, महादेव सब कुछ देते हैं। पति की लंबी आयु हो, या मनपसंद पति हो, या आपके मनपसंद नौकरी हो, आपकी हर इच्छा को महादेव पूरा करते हैं। कहते हैं तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे, महादेव को गुस्सा जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी वो प्रसन्न भी हो जाते हैं। आपके एक लोटा यानी कि एक लोटा जल से ही वो प्रसन्न हो जाएंगे। लोग ना जाने क्या क्या चढ़ाते हैं महादेव को, लेकिन महादेव तो हमारी श्रद्धा के भूखे हैं। और श्रद्धा दिख भी रही है पूरे गोंडा शहर में, नंगे पांव पैरों में छाले पड़ चुके हैं, लेकिन जो बोल बम के नारे हैं उसमें तो कमी कहीं से भी नहीं दिख रही, और दिखनी भी नहीं चाहिए। वैसे आप लोग बताएं, आप लोगों ने कितनी पूजा की और कहाँ कहाँ पे महादेव को जल अर्पित किया? अलग अलग जगह अलग अलग शिव के प्रगट शिवलिंग की अवतारित प्रतिमाएं हैं और लिंग हैं, जहाँ पे शिव का अभिषेक किया जाता है जल से, दूध से, शहद से, गन्ने के रस से, अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करते हुए नाना प्रकार से पूजा की जाती है। और मुझे लगता है कि शिव की स्तुति भी जगह जगह अलग अलग रूपों में होती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि महादेव की जो स्तुति है वो उनको प्रसन्न करने के लिए हम करते हैं, और हर प्रकार से कोशिश करते हैं कि महादेव हमारे प्रसन्न हो जाए और हमें मनवांछित वर जो है वो दे दें। और एक स्तुति जो मुझे काफ़ी दिनों से याद थी और सोचा था आप लोग के साथ साझा करूंगी, वैसे स्तुति कुछ ऐसी है

की स्तुति शिव को अर्पित करती हूँ मैं आप सभी श्रोताओं के तरफ से, और मैं चाहती हूँ शिव हमारे प्रसन्न हो जाए। आइए छोटा सा एक लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और फिर आते हैं शिव की धुन में, आज मगन हो जाते हैं।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9860 9761 9861 9786। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: अरे सुना
4: क्या,
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100% डिस्काउंट।
4: वाओ।

0: ध्यान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात। Thought of the day and what happened to this day. जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
5: तो वापस आ चुकी है आपकी आज बिना एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, और जय जय महादेव। और आज का दिन भाई तीज का दिन है, हरतालिका तीज की। फिर से अनेकों अनेक शुभकामनाएं मेरे सारे श्रोताओं को। महादेव आपकी झोली में आपकी मनवांछित वर को और अवर वधु को, और साथ ही साथ आपकी मनवांछित जितनी भी कामनाएं सारी पूरा करें। और भाई शिव के स्रोत की बात की, वैसे शिव की अगर बात करें, मैंने कहा ना शिव जो है रुष्टा है छणे छणे हैं, यानी कि बहुत जल्दी रुष्ट होते हैं और बहुत जल्दी मान जाते हैं। इसीलिए तो मनाने में हम लग जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि एफर्ट्स लगाने पे अगर कोई मान जाए तो क्यों ना एफर्ट्स लगा दिए जाए। तो मुझे अभी याद आ रहा है कि शिव की स्तुति तो हम करते रहते हैं, शिव को याद भी करते रहते हैं, लेकिन एक जो स्त्रोत है तांडव, जब शिव अपने पे आ जाते हैं तो तांडव भी करने में कहीं पीछे नहीं रहते। हर प्रकार से हर समय एक एकाग्र चित्त छवि को धारण किए हमारे महादेव हर जगह सर्वव्यापक हैं। तो जो सर्वव्यापक है उसके लिए सर्वव्यापी चीज़ों का वर्णन करना ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे में मुझे याद आ रही हैं आशुतोष राणा की लाइनें, वो जो उन्होंने सुनाई थी एक किसी टेलीकास्ट में और ये शिव तांडव स्त्रोत को हिंदी में बताया था उन्होंने गा के। वैसे ही उसी अंदाज को मैं थोड़ा सा अपनी आवाज़ में ला के आपके सामने एक छोटी सी कोशिश करना चाहती हूँ। देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो चैट रूम में मैं आपके लाइक्स और आपके शेयर्स ज़रूर देखना चाहूँगी, और हर हर महादेव ज़रूर लिख के भेजें। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का,

से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके है, गले में जिनके है सज रहा हार विश्व भजंग का। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का। डमट डमट डमरू कह रहा शिवे शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। सजल लहर भी हो चली चपल चपल ललाट पर, धधक रहा है स्वर्ण सा अनल सकल ललाट पर। ललाट से ही अर्ध चंद्र कह रहा शिवे शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। जो नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, जो नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं। वो तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं। कृपालु हैं कृपालु ऐसे हैं, चित जप रहा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। समस्त प्राणियों में उनकी ही कृपाएं बह रही, समस्त प्राणियों में ही उनकी कृपाएं बह रही। भुजंग देवता के शीर्ष मणि प्रभाए कह रही, दशा दशा शिवा शिवम, दशा दशा शिवा शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे देव देवताओं के अनादि से गढ़े हुए, वे देव देवताओं के अनादि से गड़े हुए। समक्ष उनके धूल पुष्प शीर्ष पर चढ़े हुए, विभिन्न कामनाओं के हैं संपदा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा धवे धरा धरा शिव शिवम। जो इंद्र देवता के भी घमंड का दमन करे, जो इंद्र देवता के भी घमंड का दमन करे, जो कामदेव की समस्त कामना दहन करे, वही समस्त सिद्धियां वही महाशिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। विशाल भाल पट्टिका पे अग्नि वे ज्वालाएं हैं, विशाल भाल पट्टिका पे अग्नि वे जलाए हैं। वे भस्म काम देवता के शीर्ष पर लगाए हैं, है नंदनी के रूप की तरल छटा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। नवीन श्याम मेघ कंठ पर सवार घर चले, नवीन श्याम मेघ कंठ पर सवार घर चले। वही तो बाल चंद्र नाग गंग शीश पर धरे, सकल जगत का भार भी चले उठा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है, मनुष्य क्या देवता, मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है। समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सदैव सदैव सर्व मंगला कला की शीर्ष देवता, वही विनाश काल है वही जनक जनन सदा। नमन कृतज्ञ प्राण यह जपे सदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। प्रचंड तांडव प्रभा, प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर कि नित्य देवता को नित्य में विलीन देख कर, मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। समक्ष उनके देव जन का एक ही विधान है, समग्रता में उनके दृष्टि उनकी ही समान है। नमन नमन समानता के देवता शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। है मात्र एक कामना है मंत्र एक वंदना, उन्हीं के दर्शनों से पूर्ण हो सभी उपासना। न जाने कब करेंगे हम पे यह कृपा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। चरण को जिनके अप्सराओं के पराग चूमते, शरण में जिनके इंद्रलोक और देव झूमते। अनादि के उमंग की परंपरा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। प्रचंड अग्नि से समस्त पाप भस्म कर महान अष्ट सिद्ध से सभी अधर्म भस्म कर। विजय की मूल मंत्र की है साधना शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम।
वही अघोर नाथ है, वही अघोर नाथ है। उन्हीं की पूर्ण शुद्धता निहित उनके जाप से मनुष्यता विशुद्धता समस्त मोह नाश के हैं। देवता शिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिवय शिवम। पूजावसान ध्यान से करे जो पाठ स्त्रोत का, मुकुट बने वही मनुष्य परम विशिष्ट गोत्र का। उसी को देते हैं समस्त संपदा शिवय शिवम, उसी को देते हैं समस्त संपदा शिवय शिवम। तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिवय शिवम, धरा धरा शिवय शिवम। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनके जैसा धार ले वो उसके जैसा वेश है, जो उनको जैसा धार ले वो उसके जैसा वेश है। वे नेत्र से, वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है, वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है। विलय विलय भी है, प्रलय भी है, विलय भी वह प्रलय भी वह। अकाल महाकाल है, उसी के नाथ हो गए, उसी के नाथ हो गए। जो उनके साथ हो लिए वही के हो गए हैं वे, वही के हो गए हैं वे। जहाँ सुना शिवय शिवम, डमट डमट डमट डमरू कह रहा शिवय शिवम। तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिवय शिवम। तरल गगन, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिवय शिवम। तो शिव तांडव स्त्रोत का एक छोटा सा जाप जो कि मैंने आपके सामने किया, और जो भी त्रुटियां हुई हों मैं महादेव से कहूँगी मुझे क्षमा करें। एक बार पूरा पाठ यानी कि पूरा स्त्रोत पढ़ने की एक कोशिश मैंने की है, और त्रुटियां तो मुझसे होंगी क्योंकि मैं मनुष्य मात्र हूँ। और ईश्वर को समर्पित करने की भी एक भाव अगर मेरे मन में आ रहा है तो वो भी मुझे लगता है शुद्ध कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर से शुद्ध दुनिया में कोई नहीं है। ईश्वर वो है जो हमारे अंदर बसता है, हमारी सोच से पहले वो सोच और सचेत और हमारी चेतना में बसता है। तो ईश्वर की चेतना को ऐसे ही बनाए रखेंगे। एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद जय जय महादेव, और आप सुन रहे हैं गोंडा मैसे मसाला आरजे बीना वाला महादेव को समर्पित। और बजाते रहो, सुनते रहो अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन 99.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।

वापस आ चुकी हूँ एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के साथ अपने श्रोताओं के पास, और आप सुन रहे हैं शो गुंडा मैसी मसाला और बीना वाला, और आज का शो महादेव को समर्पित। और भाई सब लोगों ने बहुत ही श्रद्धा के साथ व्रत रखे होंगे, और भाई बहुत कठिन व्रत होता है तीज का व्रत, इतना आसान नहीं होता है। लड़कों को आसान होता है कहना कि अरे क्या है, व्रत ही तो रखती हैं, लेकिन ये ऐसा व्रत है जो कि एक दिन पहले शुरू हो जाता है, यानी कि एक दिन पहले से ही जान लीजिए कि उनकी तैयारी हो जाती है, और रात में 12 बजे के बाद वो कुछ नहीं खाती पीती हैं, और अगले दिन भी पूरे टाइम कुछ नहीं खाती हैं। 3 बार नहाती हैं, 3 बार जल अर्पित करती हैं, 3 बार 3 तरह की पूजा करती हैं, एंड अगले दिन सुबह मान के चलिए कि 1.5 दिन का ये व्रत है, और 1.5 दिन के दौरान 1 ड्रॉप भी पानी हमारी महिलाएं नहीं पीती हैं। तो है अपने आप में तपस्या के जैसा व्रत, और इतनी गर्मी के दिन में महादेव को जल अर्पित करना व्रत रख के, तो मुझे लगता है कि महादेव तो खुश ही हो जाएंगे, और होना भी चाहिए। बस मन में आस्था हो, मन में श्रद्धा हो, प्रेम हो, और प्रेम से कोई भी बुलाएगा तो ईश्वर समक्ष आके दिख जाए।

तो जज्बात से अगर दुनिया बनाई गई है तो उन्हीं जज्बातों से हम कहीं ना कहीं ईश्वर को जीत सकते हैं। तो अपने जज्बातों को अच्छा रखें, स्वच्छ विचार रखें। अगर आप आए हैं महादेव के द्वार तो अपने अंदर के क्रोध को, अंदर के पाप को, अंदर के द्वेष को कहीं ना कहीं मिटा दें, तभी जाकर आप कहीं ना कहीं एक आदर्श व्यक्ति और एक श्रद्धालु, सच्चे श्रद्धालु बन पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप सबके अंदर सच्चे श्रद्धालु बनने की एक बड़ी क्षमता होगी और उस क्षमता को हम प्रयास करेंगे कि आप सभी जाने और उसे पहचाने भी। होना भी चाहिए ऐसे ही कि हर कोई अपनी जो श्रद्धा है उसकी पराकाष्ठा को समझे, अपने अहम को साइड में रखकर, अपने अहंकार को भूलकर, अपनी जो कहते हैं ना कि भावना है, पराकाष्ठा है, उसे बना के रखे। और अगर हम चाहें तो सारी चीज़ें कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का साथ, ईश्वर के सहारे की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों को दुनिया की हर चीज़ मिले, तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर के जो विचार हैं उनको शुद्ध और एकदम साम्य करने की ज़रूरत है। अगर हमने अपने विचारों को साम्य नहीं किया, अपने विचारों को साधारण नहीं किया, क्योंकि किसी बड़े संत ने कहा है कि ईश्वर सरलता से मिलता है, तो आप जितने सरल बनेंगे उतना ही ईश्वर आपको समर्पित होगा। और समर्पित होने का विचार, समर्पित रहने का विचार हम सबके अंदर होता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं सरल नहीं हो पाते। हम ईश्वर को बहुत कॉम्प्लेक्स समझते हैं, बट सच कहूँ तो ईश्वर इतना कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। ईश्वर तो बहुत ज़्यादा सरल है, बहुत बहुत बहुत ज़्यादा सरल। तो आई होप उस सरलता की जो पराकाष्ठा है उसे आप और हम दोनों समझ पाएंगे, और उस समझ के माध्यम से, उस समझ के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि हमें वो सारी चीज़ें मिले जो ईश्वर हमें देना चाहता है। अच्छा, जिंदगी हर जगह एक जगह जैसी नहीं होती। हर बार ईश्वर हर तरह से हमें खुश नहीं रख सकता, क्योंकि ईश्वर हमारे माता पिता की तरह होता है। ईश्वर चाहता है कि हम एक संघर्षपूर्ण स्थिति को भी जाने कि वो क्या होती है, और एक आसान स्थिति को भी जाने। तो खुशी और दुख कहीं ना कहीं हमारी एक ट्रेनिंग का पार्ट है जो ईश्वर हमें दे रहा है। तो बिल्कुल उस ट्रेनिंग को हम लेते रहेंगे और ऐसे ही अलग अलग त्योहारों के माध्यम से ईश्वर से जुड़ते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, हर हर महादेव।

वापस आ चुकी है आरजे आपके बिना, यानी कि अपने अंदाज में, यानी कि आपके शो को एक नए आयाम तक लेकर जाने के लिए और वापस से महादेव की प्रशंसा करने के लिए। जी हाँ, आज तो भाई महादेव की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी। तो वापस आ चुके हैं आपको फिर से महादेव से जोड़ने। तो आप सुन रहे हैं शो गुंडा मैसी मसाला आरजे बीना वाला और मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे बीना। और बात हो रही थी महादेव की, ईश्वर की और इस तीज के त्यौहार की और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप सब जानते ही होंगे। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इस तीज के व्रत को किया जाता है, तीज की पूजा को किया जाता है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आप महादेव को जल भी अर्पित कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप किसी जगह जाके ही जल अर्पित करें, आपके घर में जो भी शिव की प्रतिमा है आप उसकी भी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना अगर कर लेते हैं तो समझ लीजिए महादेव तब भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और ऐसे में मुझे एक और स्तुति याद आ रही है महादेव की, जो कि मैं आपके साथ अर्पित करना चाहती हूँ। वैसे ओम नमः शिवाय तो हम हमेशा ही कहते हैं, लेकिन इस ओम नमः शिवाय जो मंत्र है इसका अर्थ भी है, इसके एक एक अक्षर का अर्थ है। और उस अर्थ को इस स्तुति के माध्यम से समझें।

ये था ओम नमः शिवाय, यानी कि नमः शिवाय। पांच वर्णों का जो ये शब्द है नमः शिवाय, इसके एक एक वर्ण का जो अर्थ है वो मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी का भी अर्थ है, उस अर्थ को समझें और ईश्वर को समर्पित होते हुए अपने जीवन की पराकाष्ठा को समझें, अपने जीवन के उद्देश्य को समझें, सच और सत्य और एक कहते हैं ना कि अच्छे भाव के साथ जिंदगी के हर लक्ष्य को पाने की कोशिश की जाए तो वो आपको मिलेगा ज़रूर। बस उसके पीछे का जो विचार है, उसके पीछे जो भावना है, वो द्वेष, वो किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट से भरी हुई नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बजाते रहिए अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन ज्ञान 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। इसी के साथ दे मुझे इजाजत, आप सुन रहे थे शो गोंडा मैसी मसाला, आरजे वीना वाला।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए।

फरमाइशी के द्वारा सिंपल इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने शो फरमाइशी में अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सभी को भी गणेश चतुर्थी, हिंदी दिवस और हरितालिका तीज की बहुत ढेर ढेर ढेर ढेर बहुत सारी शुभकामनाएं। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेलकम इन योर शो। जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों चांद क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके और यह आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल हमेशा हमेशा के लिए आपकी। और त्योहारों की ये जो झड़ियां लगी हुई है दोस्तों, इसमें दिल इतना गार्डन गार्डन बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक हो रहा है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। हमारे यहाँ गणपत बप्पा आ रहे हैं, हमारे घर वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे मोहल्ले वाले सबके सब जा चुके हैं गणपति बप्पा जी को लाने के लिए। और आई एम श्योर आप लोग के यहाँ भी गणपति बप्पा आ ही रहे होंगे। और मैं दोपहर से देवा श्री गणेशा सुन रही थी तो मैंने सोचा कि आज की मेरी फरमाइशी तो यही होगी। तो मैंने अपनी फरमाइशी गीत को, मैंने अपने जज्बात को आप सभी के बीच में रख दिया है। आप लोग का भी वक्त है कि आप लोग भी अपने जज्बात को लाके हमारी फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड करें। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। महेंद्र राजस्थान से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, सोनिया तिवारी गोंडा से, मोहित मालवीय नगर गोंडा से, निधि सीतापुर से, अनुष्का श्रावस्ती से, रोशनी रावत उन्नाव से, विजय पाल यादव लालवा लखीमपुर खीरी से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, राजेश कुमार सिंचाई विभाग गोंडा से, राजू सीतापुर से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, उषा कश्यप गोंडा से, कार्तिक कश्यप गोंडा से, मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से, रितेश साहू आपका भी स्वागत है। और इसी के साथ में जग्गू दादा उदालक शर्मा, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, इम्तियाज अहमद गोंडा से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो फरमाइशी में। इसी के साथ में महेंद्र का कहना है कि शाम की फिजा में घुली है मीठी सी बात। अच्छा, शाम की फिजा में घुली है मीठी सी बात, सिंपल मैम जी की आवाज से सज गई है शाम, आप यूं ही खुशहाल रहे हर पल, आपकी आवाज सुनना ही है हमारी सौगात, ओ माय गॉड, और आप लोगों से मिलना भी हमारी सौगात ही है। दोस्तों आप लोग को पता नहीं है कि आज आपकी आरजेएस सिंपल ने कितनी ढेर सारी मेहनत की है तब यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। एक तो आप लोग को पता ही होगा कि मैं इधर उधर से कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रेजेडी करती रहती हूँ। तो दोस्तों मेरी स्कूटी की हालत ऐसी है कि वो अभी एजेंसी में खड़ी हुई है और जब वो एजेंसी में खड़ी हुई है तो मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना पड़ता है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने में एक चक्कर आज ये हो गया भाई कि मुझे फाउंटेन चौराहे पर ही रोक दिया गया। एक तो पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चक्कर में इतनी मैंने मशक्कत की है, भगवान जी से कहा प्लीज भगवान जी, प्लीज भगवान जी जल्दी, नहीं भगवान जी, नहीं भगवान जी, तो भगवान जी ने सुना, एक रिक्शा एक फरिश्ता सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही भेजा। और उससे मैंने कहा कि भैया प्लीज आप 5 मिनट में तो मुझे नहीं पहुंचा सकते हो, लेकिन आई एम श्योर आप मुझे 10 मिनट में पहुंचा सकते हो, तो प्लीज हेलीकॉप्टर की स्पीड से चलो ना और मुझे ऑफिस छोड़ दो ना। तो बाय द वे वो भैया मुझे स्पीड में लेके आए, उन्होंने किसी और को नहीं बिठाया रिक्शे में। और देखिए इसमें भी देखिए दुविधा, फाउंटेन चौराहे पे ही मुझे रोक दिया गया। ओ माय गॉड, मुझे वहां से पैदल आना था और मेरी घड़ी में इतना ज्यादा लेट हो रहा था मेरी फरमाइशी की महफिल के लिए कि मैं क्या बताऊं। फिर मैंने वहां से भैया से कहा कि भैया ये तो गलत बात है, आपने गलत किया, लेकिन कोई बात नहीं, आपने मुझे सही समय पे पहुंचा दिया है, फिलहाल चलते हैं भैया। और उनको कुछ पैसे मैंने कम भी दिए क्योंकि ये इंडिया वाले होते हैं ना कि मैंने तो आपसे कहा था कि यहाँ से यहाँ तक छोड़ना, आपने तो यहीं से छोड़ा है, मैं आपको कम पैसे दूंगी। और मैंने भैया से कहा भैया अगर मेरी आज नौकरी गई तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। बाय द वे मैं पैदल चलते हुए जल्दी जल्दी आई। सबको लग रहा होगा कि ये पागल लड़की मेले में जाने के लिए कितनी बेताब है, कितनी जल्दी जल्दी चल रही है। उनको क्या पता कि मैं मेले में जाने के लिए नहीं, अपनी फरमाइशी की महफिल में जाने के लिए बेताब हूँ। फाइनली दोस्तों मैं आप लोगों तक पहुंच गई और कितनी एनर्जी के साथ में पहुंची हूँ, यू नो ना, वैसे इतनी मशक्कत ना करती तो शायद इतनी एनर्जी ना आती, लेकिन इतने मशक्कत के बाद में बहुत ढेर सारी एनर्जी आ गई है क्योंकि इतने मशक्कत के बाद में अगर आप लोगों से मिलने हो तो आप लोगों से मिलने की खुशी तो दोगुनी तीन गुनी हो गई है। फिलहाल अब अपने बातों को करती हूँ नॉन स्टॉप करने के बाद में इंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश है महेंद्र की राजस्थान से, उनको सुनना है गाना कुड़ी कर गई सोला पार। ओ माय गॉड, सो एंजॉय करते हैं ये कुड़ी कर गई सोला पार, शेरा पिक्चर का गाना, सोनू निगम और प्रीति उत्तम के आवाज में, सिर्फ महेंद्र की फरमाइश पर। और ऐसे ही अपने
पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी लेकिन रियलिटी चेक करवाने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए ना रेडियो 11.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना।

जंगल उड़ गई। ओह माय गॉड, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही तरंगी सा गाना, मिथुंदा वाला गाना, सिर्फ और सिर्फ हमारे महेंद्र की फरमाइश पर जो की है राजस्थान से। एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है हमारे जग्गू दादा की, हमारे जुगल किशोर वर्मा जी की एमपी से। और हमारे जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना, आई मीन भजन, तेरी जय हो गणेश। तो गणपति बप्पा जी वाला ये वाला गाना एंजॉय कहते हैं, डिवोशनल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

तिरुपति बप्पा मोरिया। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा डिवोशनल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकड़, आपका स्वागत है संजय पटना से। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। और इसी के साथ में अरविंद मनकापुर से आपका भी तहे दिल से स्वागत है। सो एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश। लेकिन उसके पहले दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज खुशियों का, आस्था का और हमारी पहचान का ट्रिपल धमाका है, यानी एक ही दिन में तीन बड़े उत्सव। ओ माय गॉड, तीन उत्सव का संगम। सबसे पहले तो आप सभी को पता ही है कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है और आज हमारे बप्पा विघ्नहर्ता श्री गणेश हमारे घरों और दिलों में पधार चुके हैं। और मैं भी जब तक जाऊंगी तब तक हमारे यहाँ भी पधार चुके होंगे। तो बस मोदक की मिठास घोलिए और जोर से बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। इसी के साथ में ही, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज है हरतालिका तीज। ओ माय गॉड, आज का दिन हमारी सुहागिन माए, बहने और बेटियां मेरी बेटियां होंगी, कुछ होंगी जो लगती होंगी पद में मेरी बेटियां, लेकिन वो सुहागिन होंगी। उनका बेहद पावन पर्व है हरतालिका तीज। निर्जला व्रत, हाथों में रची बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी पिया के नाम की, ओ माय गॉड, मेहंदी और माँ पार्वती का अटूट आशीर्वाद। तीज का ये त्योहार आपके जीवन में प्यार और खुशियां हमेशा बनाए रखे, यही आपकी अपनी सिंपल नॉट सो सिंपल का मानना है। और ठहरिए, इतना ही नहीं है दोस्तों, आज का दिन है एक और बेहद वजह से खास। आज है हिंदी दिवस भी, हमारी अपनी भाषा, हमारी पहचान जो दिल से दिल को जोड़ती है। जैसा कि किसी ने क्या खूब कहा है कि हिंदी से ही हमारी शान है, हिंदी ही हमारी पहचान है। तो आज के दिन अपनी मातृभाषा पर गर्व महसूस करें और अपनी फरमाइशी गीतों को एंजॉय करें। तो फिर किस बात की देरी है, शुरू करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश को एंजॉय करना। अगली फरमाइश हमारे पास में धर्मेश त्रिपाठी की गोंडा से, और धर्मेश त्रिपाठी को गोंडा से सुनना है गाना। मैं पागल शायर हाँ तेनु इश्क ते ला दूंगा, और मैं भी पागल शायर हाँ तेनु इश्क ते ला दूंगा, क्योंकि मुझे ये गाना बहुत पसंद है। सो एंजॉय करेंगे धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर ये गाना, वो भी दोगुनी खुशी के साथ। आई हाय आई लव दिस सॉन्ग, खाबा बिछा जाऊंगा। ओ माय गॉड, आई लव दिस सॉन्ग। थैंक यू सो मच धर्मेश त्रिपाठी फ्रॉम गोंडा। स्टे ट्यून्ड।

तेनू मैं सिखा दूंगा और तू ख्वाब न देखा कर खाबा भी छा जाऊंगा और मैं पागल शायर हाँ तेनो इश्क ते ला दूंगा। वैसे दोस्तों मैंने एंजॉय किया है और आप सभी के साथ में एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर, मेरा फेवरेट वाला गाना। और इनका कहना है कि मेरी फरमाइश को अपनी आवाज से सजाया आपने, दिल की धुन को सुरों से मिलाया आपने। आरजे सिंपल जी शुक्रिया इस प्यार भरे अंदाज के लिए, मेरे पसंदीदा गीत को बजाकर दिल जीत लिया आपने। ओहो थैंक यू सो मच धर्मेश त्रिपाठी जी, इसी के साथ में एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो एडवोकेट सुनील मझारा, आपका तहे में दिल से स्वागत है। और अगली फरमाइश है सोनिया तिवारी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना दुनिया मांगे अपनी मुरादे मैं तो मांगू साजन। ओहो तो आपके साजन तो आपको मिल ही चुके हैं, अब इसको मांगना काय को मांगना, आए हाय एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सजनी और साजन के प्यार वाला गाना लता मंगेशकर जी की आवाज में हमारी सोनिया तिवारी जी की फरमाइश पर। और आपको हरी तालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं सोनिया तिवारी जी।

बंगला है समझाने से समझे ना दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना सिर्फ और सिर्फ सोनिया तिवारी की फरमाइश पर। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले सोनिया तिवारी का कहना है कि आरजे सिंपल जी के लिए मेरी फरमाइश का गीत सुनाकर दिल को सुकून दिया, अपनी मीठी आवाज से हर पल को जुनून दिया। अच्छा सोनिया तिवारी जी, आरजे सिंपल जी आपके इस प्यार का क्या कहें हम, गाना बजाकर आपने यादों को खूबसूरत बना दिया। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सोनिया तिवारी जी, लव यू सो मच सोनिया तिवारी जी। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले हमारे एक और लिसनर हैं, उन्होंने किसी के लिए कुछ कहा है। उनका कहना है कि तेरी आंखों में कुछ ऐसा नूर है तुझसे मिलना भी जैसे कोई सुरूर है। लाख चेहरे मिले इस दुनिया में और दिल को बस तेरा ही गुरूर है। ये कहना है नागेश्वर धाकड़ का। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना। दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो। आए हाय, एंजॉय करते हैं लव डब वाला गाना।

0: सा जीलो थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: हाँ, थोड़ा सा जीलो थोड़ा थोड़ा मर लो।
2: सजीलो थोड़ा थोड़ा थोड़ा मर लो। हमने एंजॉय किया बहुत ही खूबसूरत सनंग में हमारी अनुष्का की फरमाइश पे, जो कि है श्रावस्ती से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश तो हमारे पास में है मोहित की मालवे नगर गोंडा से। उनको सुनना है गाना देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा। क्यों मोहित आपको यही गाना क्यों सुनना था बताइए ना। और मैंने पहले मैसेज भी नहीं चेक किया कि आपको यही वाला गाना सुनना है, नहीं तो आपका नाम भी उसी के साथ में मैं चिपका लेती। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने आते ही देवा श्री गणेशा सुन लिया था ना, और ये मेरी वाली फरमाइश थी, आपने भी वही फरमाइश कर दी है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा सुनूंगी ये वाला गाना, हम सब दोबारा सुनेंगे ये वाला गाना। आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जाएगी मोहित जी फ्रॉम मालवीय नगर गोंडा। आपके लिए एंजॉय करते हैं फिर से एक बार देवा श्री गणेश, और बोलिए गणपति बप्पा मारिया। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। कितनी प्यारी हूँ ना मैं, सबका दिल रख लेती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो सबका दिल रखते हैं ना, उनके दिल के बारे में कोई नहीं सोचता। Stay tuned.

गए ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और एक बार फिर से बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया। और ये फरमाइश थी हमारे मोहित की, जो कि है मालवे नगर गोंडा से। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत को, लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे दोस्तों, हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। स्वदेश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आरजे सिंपल नॉर्थ से सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, इंजॉय करेंगे अगली फरमाइश जो की है रोशनी रावत की उन्नाव से, और उनको सुनना है गाना तू चांद से मुखड़े पे काला सा तिनका ले। सो एंजॉय करते हैं ये अतरंगी सा गाना सिर्फ और सिर्फ हमारी अतरंगी सी रोशनी जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, मिलते हैं सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है फटाफट से पेट पूजा करके फरमाइश की महफिल में आ जाना। और आप लोग सच में, सारे त्योहार आते हैं चले जाते हैं, सारे उत्सव आते हैं चले जाते हैं, लेकिन सच में कोई मुझे लड्डू तक नहीं खिलाता, बताओ। बहुत गलत बात है, कोई बात नहीं।

0: समाचार संध्या की ओर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमेरिकी विश्लेषक ने कहा, दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
1: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व की कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 2 दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा है। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एकमत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया के नेता शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया। रूस ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के साथ समावेशी विकास उन्मुखी साझेदारी के लिए मॉस्को के समर्पण की फिर से पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सचिव अंतोनियो गुतरश ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सहअध्यक्षता करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
0: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
6: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर इस सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
7: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि अलवर में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन ने भारत और मरकोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति प्रकट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
8: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
9: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिस्टी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखो स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
10: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
11: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग साराजा, गणेश गली, तेजुकाया और जीएसबी जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस, रेलवे और बेस्ट ने खास इंतजाम किए हैं। कई जिलों में एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया। इस साल शोर शराबे वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

तेरे दर पे सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। हमने एंजॉय किया है ये गाना मोहम्मद मुशीर जी की फरमाइश पर जो कि है बाराबंकी से, और धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर जो कि है आवास विकास गोंडा से। धर्मेंद्र मोहन और मोहम्मद मुशीब को सुनना था ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना तेरे दर पे सनम चले आए। हमने एंजॉय किया ये गाना कुमार सानू की आवाज में। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन एक बार फिर से स्वागत है उसके पहले आप सभी का आपके अपने फरमाइशी की महफिल में, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले आज मैंने अपनी तरफ से कोई शेर व शायरी नहीं की, और जब बाहरी गजल का वक्त आता है तो नज्म गजलें शायरियाँ मुझे अपने आप याद आने लगती हैं, और आरजे मनु भी मुझे अपने आप याद आने लगते हैं। तो मुझे कहना है कि अर्ज किया है, दिल टूट ना जाए इस बात पर कितना जोर लगाया मैंने, दिल टूट ना जाए इस बात पर कितना जोर लगाया मैंने, तुम तक आवाज जाए मेरी इतना शोर मचाया मैंने। रिश्तों में हार ठीक है, रिश्तों में हार ठीक है, फायदा नहीं उठाया मैंने, मजाल कोई बुरा कहे तुम्हें इतना अच्छा बताया मैंने। तुमसे सबसे कब से कितना दर्द छुपाया मैंने, खप गई मोहब्बत अब मेरी, खप गई मोहब्बत अब मेरी इतना तुम पे लुटाया मैंने। अब इंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। आरके श्रीवास्तव जी गोंडा से नमस्ते, और पप्पू हार्डवेयर गोंडा से आपका भी स्वागत है। इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, उनको सुनना है गाना देवा ओ देवा गणपति देवा। सो इंजॉय करते हैं ये डिवोशनल सॉन्ग, और उसके पहले एक बार फिर से गणपति बप्पा मौर्य। एवरीवन स्टे ट्यून्ड। ये फरमाइश है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में।

गणपत देवा तुमसे बढ़कर कौन। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सन गणपत बप्पा वाला भजन हमारी आशा जी की आवाज में, हमारी आशु मिश्रा जी की फरमाइश पे जो की है लखनऊ से। और इसी के साथ में वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रीति शुक्ला जी बहराइच से आपका तहे हुए दिल से स्वागत है और आपको भी गणपति बप्पा मौर्या। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश दोस्तों हमारे पास में, जानते हैं किसकी है अगली फरमाइश। हमारे पास में है राजेश कुमार की सिंचाई विभाग से। राजेश कुमार को सिंचाई विभाग से सुनना है गाना करते हैं हम भी तुमसे प्यार। सो एंजॉय करते हैं बरसात पिक्चर का ये गाना सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में सिर्फ और सिर्फ राजेश कुमार की फरमाइश पर जो की है सिंचाई विभाग गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

हमारे पास में आई हुई थी बरसात पिक्चर की सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में, राजेश कुमार की सिंचाई विभाग गोंडा से। बढ़ते हैं दोस्तों हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन इस चचा के बाद में मैं कुछ कहना चाहूंगी। मेरा कहना है कि जाइए आपसे भला कैसी शिकायत, अरे जाइए आपसे भला कैसी शिकायत, हम तो अपनी उम्मीदों पर शर्मिंदा हैं। जाइए आपसे भला कैसी शिकायत, हम तो अपनी उम्मीदों पे शर्मिंदा हैं। आप पूछने आए हैं सूरत हाल मेरा, आप पूछने आए हैं सूरत हाल मेरा। देखिए नब्ज चल रही है, हम जिंदा हैं। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, राजू की सीतापुर से, उनको सुनना है गाना दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है। सो एंजॉय करते हैं दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है, सिर्फ और सिर्फ राजू की फरमाइश पर जो की है सीतापुर से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

धड़कने का बहुत बहाना ढूंढता है, लेकिन मैं उसको बहाना देती नहीं हूँ, फिर भी वो बेचारा अपने आप धड़का करता है। कितनी अच्छी बात है ना, जब किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हो और वो चीज़ उस चीज़ को मिल ही नहीं रहा हो, कि तो ना मज़ा आता है ना, दूसरे को परेशान देखने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन वही परेशानी जब अपने साथ में हो, ओ माई गॉड कितना बुरा लगता है ना दोस्तों। सो फिलहाल अभी वक्त हो चला है हमारी आज की आखिरी फरमाइश को एंजॉय करने का। आज की हमारी अगली और आखिरी फरमाइश है नागेश्वर धाकड़ की और उदालक शर्मा के मनकापुर से। नागेश्वर धाकड़ को और उदालक शर्मा को सुनना है गाना सुनो गणपति बप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरियां। सो एंजॉय करते हैं जुड़वा टू का ये डिवोशनल सॉन्ग, तड़कता भड़कता वाला गाना जिसको कंपोज किया है साजिद वाजिद ने। इसी के साथ लेना चाहेगी आपकी अपनी आरजी सिंपल, नॉट सो सिंपल अलविदा। सो दोस्तों चलते चलते बस यही कहूंगी कि बप्पा आपके जीवन के सारे विघ्न हर लें, हरितालिका तेज आपके रिश्तों में मिठास दे और अटूट प्रेम बनाए रखे, और हमारी हिंदी भाषा हमेशा हमारे दिलों की तार को इसी तरह जोड़े रखे। सो चलती हूँ, अलविदा कहती हूँ आप सभी को, ऐसे ही हर उत्सव पर हर दिन बहाना ढूंढते रहिए खुशियाँ बटोरने का। सो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समोन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं तो बहाना ही ढूंढती हूँ ना आप लोगों के पास आने का। तो कल फिर मिल लूँगी, आई मीन हाँ सच में कल फिर आऊंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय भी कहूंगी, लेकिन उसके पहले किसी का कहना है कि नब्ज देखकर हाल बता दूं मैं वही हकीम हूँ। नागेश्वर धाकड़ का कहना है कि नब्ज देखकर हाल बता दूं मैं वही हकीम हूँ, दिल में क्या है राज बता दूं, तुम कितने भी रख लो पर्दे अपने गमों पर मैं होठ पढ़कर बातें बता दूं। तो अगर ऐसा है तो प्लीज मिलना, मैं चाहती हूँ कि मेरी दिल की बातों को कोई पढ़े। शायद लोग पढ़ते हैं लेकिन बताते नहीं, गए तेरी दिल की बात को मैंने पढ़ा है, तो मैं चाहती हूँ कि कोई पढ़े और बताए भी कि मेरे दिल में क्या लिखा है, मेरे दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता होता है, मेरी फीलिंग्स तो हमेशा मिक्स्ड और कंफ्यूज्ड होती हैं। तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, बाय बाय, अलविदा, मिलते हैं कल फिर से, एंजॉय करते हैं नागेश्वर धाकड़ और उदालक शर्मा की फरमाइश, स्टे ट्यून्ड एवरीवन, बाय बाय, मिलेंगे फिर से कल नई शुरुआत के साथ में, नए जज्बात के साथ में, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही की गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द वायरस का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

जी हाँ। नमस्कार। शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करे आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये गोंडा ही नहीं, अब बन चुका है हमारे और आपके दिलों की धड़कन। और कार्यक्रम आ गया है बहारे गजल। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे हम आज, जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। और आज का दिन तो बहुत खास है भाई, हरितालिका तीज की शुभकामनाएं आप सभी को, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं आप सभी को। और आज जो लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी हमारी राजभाषा है, आज उनका भी दिन है। अमूमन जब हम आपकी महफिल में होते हैं तो शायरों की बात करते हैं, लेकिन चूंकि हमने सोचा कि आज हिंदी दिवस है तो क्यों ना कुछ हिंदी के कवियों पर चर्चा करें। सुनाएंगे आपको गजल ही। और हिंदी कविता की अगर हम बात करें तो शुरुआत जो होती है वो हिंदी कविता की, उसके चार प्रमुख युग होते हैं। वो युग रहे आदिकाल, 1050 से 1375 ईस्वी तक हम आदिकाल का युग मानते हैं। इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। डिंगल और पिंगल इस युग की मुख्य भाषा थी।

500 ईस्वी तक का जो समय बीता उसे हिंदी कविता का स्वर्ण युग कहा जाता है और वो युग भक्ति काल था। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, इस पर चर्चा भी करेंगे। तीसरा काल जो चला वो रीति काल चला 1700 लेकर के 1900 ईस्वी तक, ये रीति काल का समय हुआ। और 1900 ईस्वी से अभी तक वर्तमान समय तक हम आधुनिक काल में हैं। आदिकाल की बात करें तो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। और चंद्रवरदाई का नाम आपने सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि, उन्होंने पृथ्वीराज रासो भी लिखी थी। जगनिक ने जो है वो आला खंड लिखा था। तो इस युग में यही सब चला भक्ति काल। जब भक्ति काल आता है 1375 से 1700 ईस्वी तक, तो ये वो दौर था जब इस दौर में स्वर्ण युग कहा गया इसको हिंदी कविता का। और भक्ति काल के दो पार्ट हुए, दो भेद हुए, एक सगुण और एक निर्गुण। एक ने यह माना कि ईश्वर का स्वरूप साकार है और एक ने यह माना कि नहीं निराकार है। सगुण का विधारा के पुनः दो भेद हुए, जिसमें एक रामाश्रयी शाखा चली जिसके प्रमुख कवि तुलसीदास जी थे, और दूसरी ओर कृष्णाश्रयी शाखा चली जिनके प्रमुख कवि सूरदास जी थे। वहीं दूसरी ओर जो निर्गुण का विधारा थी उसके भी दो भेद हुए, एक ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर, जिनकी भाषा पंचमिल खिचड़ी, और प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत, तखरावत, टाकरी कलाम, ये उनकी रचनाएं हैं, अवधि भाषा में लिखते थे। मैं जब भक्ति काल को पढ़ता हूं तो सदियों पहले एक कवि ये बोला कि या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारो, आठों सिद्धि नवो निध को सुख नंद की धेनु चराए बिसारो। दस खान की लिखी हुई ये पंक्तियां, और मैंने बहुत तलाश किया कि मुझे बहुत नी अछूती तस्बीह मिले, लेकिन नहीं मिली। मीराबाई ने कहा कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, सूली ऊपर सेज पिया की सोवण किस विद होय। उधर रामाश्रयी शाखा के सबसे सशक्त हस्ताक्षर कहे जाने वाले तुलसीदास जी ने जब श्रीरामचरितमानस लिखी तो उन्होंने सबसे पहले अक्षरों की वंदना की। वर्णानाम थर संघानाम रसानाम छंद सामपी मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। उन्होंने कहा सबसे पहले अक्षरों को प्रणाम किया, क्योंकि अक्षरों में ही आशीर्वाद है, अक्षरों में ही गालियां भी हैं, बद्दुआएं भी हैं और दुआएं भी हैं। तो इसलिए सबसे पहले अक्षरों की पूजा, अक्षर अविनाशी, जो क्षर न हो जिसका वही अक्षर। उन्होंने दशरथ ने राम को घर से निकाला था और तुलसीदास जी ने राम को घर घर पहुंचा दिया। श्री रामचरितमानस विश्व का इकलौता ऐसा महाकाव्य है जो लगातार 24 घंटे तक गाया जाता है। दूसरी ओर कबीर, आह, आज के दौर में अगर कबीर होते तो शायद लोग जीना दुश्वार कर देते। समाज के आडंबरों के खिलाफ जब वो बोलते हैं तो लगता है कि हाँ कोई बोल रहा है। हम उनकी बात को सच मानने से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इतना सच बोलना अपने आप में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व का काम है जो कबीर ने करके दिखाया। कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। सोचिए, मतलब प्रेम दर्शन का नहीं, प्रदर्शन का नहीं, दर्शन का विषय है, फिलॉसफी का विषय है, सोचने का विषय है।

और जब वो रहस्यवादी हुए तो वो कहते हैं कि दुलहिनी गावहु मंगल चार, मोरे घर आए हो राजा राम भरतार। तो भक्तिकाल का जो दौर था वो वास्तव में बड़ा शानदार रहा। आज चुकी हिंदी दिवस है तो आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, और भक्तिकाल के बाद फिर अब इस चर्चा को आगे हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं एक प्यारी सी गजल की तरफ। हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी आवाज़ विकास से हैं। आरजे मनु जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, और गज़लों की दुनिया में आपका स्वागत। ये गज़ल नहीं दिलों का दर्द है, जो इंसान सुने वही हमारा आपका हमदर्द है। क्या बात है भाई। और प्रीति शुक्ला जी को मैं देख पा रहा हूँ, चरण स्पर्श बहन जी कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगी। और शुभ संध्या, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी हिंदी दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अब हिंदी के पहले कवि का नाम सरहपा, विश्व के सबसे पहले कवि जिनको हम आदि कवि कहते हैं वो है वाल्मीकि। और कविता कैसे जन्म लेती है इस बात को अगर हम सोचें तो ऐसा सुनने में आता है कि जो आदिकवि वाल्मीकि हैं उन्होंने सबसे पहली बार वर्स लिखा, श्लोक लिखा, और वो तब लिखा जब उन्होंने देखा कि एक क्रोंच पक्षी है उसको बाण लग गया था और वो वेदना से चीख रहा था। उसको वेदना से चीखते हुए देखा, हृदय में दर्द भराया और विश्व का पहला श्लोक वाल्मीकि ने लिख दिया। यानी कविता का जन्म कहां से होता है तो हम देखेंगे, हम पाते हैं कि कविता का जन्म दर्द से होता है, और वो भी अपने दर्द से नहीं, दूसरे के दर्द को अपना दर्द बना लिया जाए तब शायद आप महसूस कर पाते हैं कि इस दर्द में कितना दर्द है और आप कवि बनते हैं। नीरज जी लिखते हैं कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। अगर सौभाग्य आपके पास इकट्ठे हो गए तो जान लीजिए कि सौभाग्य से आप कवि बने। कहा जाता है बेटे भाग्य से पैदा होते हैं और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। अगर सौभाग्य मिलेगा आपका तो आपके घर में बेटी आएगी, लक्ष्मी आएगी, जो जिसका एक नाम है दुहिता, शब्द आता है संस्कृत में। तो अध्यापक पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बताया दुहिता, तो संधि विच्छेद किया तो उन्होंने कहा दुहिता, जिसको दूर कर देने में हित हो वो दुहिता। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये व्याख्या सही नहीं है, व्याख्या होना चाहिए द्विहिता, जो दो कुलों का हित करती है वो दुहिता, वो नारी होती है। अपने घर का भी हित करती है, अपने पापा का भी ध्यान रखती है, अपना घर भी चलाती है, माँ बूढ़ी हो जाती है, बेटियां खाना बनाती हैं, और अपने कुल का हित किया। कन्यादान पिता कर पाया क्योंकि उसके पास बेटी थी। अगर आप ये दान नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको अगर कन्यादान करने का अवसर नहीं दिया तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि से दूर रखा। तो बात दर्द की हो रही थी, वाल्मीकि ने क्रोंच पक्षी को देखा और श्लोक लिखा, और इसी दर्द को जब महसूस किया सुमित्रानंदन पंत ने तो उन्होंने कहा था कि वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जी हाँ, तो कविता बनती है, गीत है, गजलें हैं, इन सभी की बात करेंगे। फिलहाल आपको ले चलते हैं एक प्यारी सी गजल की ओर, और जब लौटेंगे तो फिर बात करेंगे आपसे भक्तिकाल की तरफ के बाद, फिर रीतिकाल चलेंगे और फिर आते हैं आधुनिक काल तक। तो आज का सफर हम हिंदी कविता के नाम करते हैं और सुनाते रहते हैं आपको गजलें भी। जी हाँ, तो गजलों का आनंद उठाइए, गजलें सुनते रहिए और सुनाते भी रहिए भाई अपने आसपास के लोगों को, और हिंदी कविता की बात भी करते रहेंगे। तो सुनते रहिए
और रेडियो 89.6 FM यह है गोंडा शहर की धनी, बल्कि हम सभी के दिलों की धड़कन। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

जी हाँ, दर्द से बर्बाद नहीं होते, दर्द से आबाद भी हुआ जा सकता है। बात हमने दर्द की थी, मेरे साथ संजय जी भी हैं पटना के साथ। मनु सर गुड इवनिंग, आपको भी शुभ संध्या। और यही तो है साहब, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। तो मतलब हम हिंदी कविता की बात कर रहे थे, तो हिंदी कविता का जो जन्म है वो आंसुओं से ही होता है। विश्व के पहले कवि ने दर्द को महसूस करके और कविता लिखी। तीसरा काल जो हिंदी कविता का चलता है वो रीत काल। यहां पर जब हिंदी कविता आती है तो श्रृंगार, अलंकार, नायिका का वर्णन और अगर हम बिहारी की ओर चले जाते हैं तो पाते हैं कि गागर में सागर भरने वाले कवि इसी युग में हुए। केशवदास, बिहारी, भूषण देव, पद्माकर, घनानंद, ये इस काल के प्रमुख कवि। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, मतलब बहुत ही क्लिष्ट लिखना, बहुत ही थोड़ा सा कठिन लिख पाना। जैसे अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने पढ़ा कि टीएस एलियट ने कहा कि पोएट्री शुड नॉट बी कॉमन टू ऑल, कविता सबके समझ में आ जाए और सबके बस की बात हो, थोड़ा सा कविता को क्लिष्ट होना चाहिए कि जो पढ़े लिखे लोग हों वो समझ पाए। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि सरल लिखना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। आप कितना आसान लिख पाते हैं, एक अगर हम किसी विषय की बात करें, कोई टॉपिक विद्यार्थियों के लिए हो, तो उसके लिए अच्छा ये नहीं है कि कितने कठिन तरीके से उसको समझाया जा रहा है तो उसको अच्छा लगेगा। कितने सरल तरीके से हम समझा सकते हैं, शायद यही अध्यापक का काम होता है, चीज़ों को सरल कर देना। एक अच्छे अध्यापक के पास एग्जाम्पल्स बहुत होते हैं, उदाहरण बहुत होते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें हम, तो कोई अगर दुष्ट व्यक्ति है और हमसे कोई बात कह रहा है तो अक्सर हम भी उसी क्रोध में आ जाते हैं, तो फिर उस दुष्ट में और हम में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो उपमा दी गई कि बूंद अघात सहाय गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। ऐसे स्वीकार करना चाहिए ऐसे लोगों की वाणी को, जैसे पत्थर पर जब बरसात की बूंद गिरती है, पानी की बूंद गिरती है, तो उससे पर्वत पर असर नहीं पड़ता, वो अपने ही के जैसा खड़ा रह जाता है। नहीं ठीक है भैया, आप बूंद है, आपका अपना एक महत्व है और हम आपको शिरोधार्य करते हैं। तो रीत काल के बाद अब ये वो दौर है जब लगभग लगभग अंग्रेज हमारे ऊपर हावी हो चुके थे। इंग्लैंड का अपना एक रुतबा था और कहा जाता है कि उनके शासनकाल में सूरज नहीं डूबता था। बिहारी ने लिखा कि अमीय हलाहल भद मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। उन्होंने कहा कि जो नायिका होती है उसका जो अमीय, जो श्वेत भाग होता है आंख का, उसमें अमृत होता है। जो पुतली होती है उसके चारों ओर जो घेरा होता है उसमें हलाहल होता है, विष जहर। और जो पुतली होती है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, उसमें मद होता है, मतलब शराब,
की जैसी चीज, जिसको इंसान देखे तो फिर वो अपने होश में न रह पाए। कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में वो बात ही नहीं है दोस्त, डुबोने वाले समंदर ही और होते हैं। तो आंखों की भी बात की गई, नायिका का बहुत बढ़िया वर्णन किया गया। या बलिहारी चित्त की गति समझे नहीं कोए, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। ये रीतकाल चला, और रीतकाल के बाद अब देश आ चुका था ऐसी स्थिति में जहां पर भारतीयों पर अत्याचार हो रहे थे। अंग्रेजों का फर्स्ट अत्याचार भारतीयों पर अधिक हुआ, कलम को रोक दिया गया, लोग अपने रियल नेम से लिख नहीं पाए। सबने, जैसे मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो उनका रियल नाम, वास्तविक नाम धनपत राय। इन्होंने जब पहली कहानी लिखी तो अपना नाम नवाब राय रखा, और फिर इसके पश्चात मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद का पेन नेम ही, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी पेन नेम निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय ब्रैकेट में हरिऔध। तो अब चला एक ऐसा युग, और जब वो युग चला तब माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा, सीधे नहीं कह सकते तो उन्होंने पुष्प के माध्यम से कहा कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गोथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतर आऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। कवि ने पुष्प के माध्यम से लोगों में देश की भावना का, देशभक्त की भावना का संचार किया। फूल कहता है कि मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं देवियों का श्रृंगार बनूं, भगवान के मस्तक पर चढ़ूं, अपने भाग्य पर इठलाऊं, नहीं चाहता हूं मैं। कोई राजा हो उसके शव पर मुझे रखा जाए, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। आप मुझे तोड़ लीजिए और जिस रास्ते पर माँ भारती के बच्चे उन्हें आजाद कराने जा रहे हों उस रास्ते पर मुझको फेंक दीजिए। अगर उनके पैरों की रज, अगर उनकी चरण धूल मिल जाएगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जी हाँ, बात करेंगे अब आपसे आधुनिक युग की, लेकिन ये बात चूंकि इशारों में कही गई तो हम, जब इशारा हुआ तो हमको एक बहुत अच्छा सा नगमा याद आ गया। जी हाँ, बहुत प्यारा सा नगमा है। बात इशारों की हुई है तो आइए कुछ इशारों से आपको भी जोड़ते हैं। जी हाँ, जरा कनेक्ट कीजिए और देखिए क्या इशारों में ये भी हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है। आपको कैसा लगता है जरा सुनकर बताइएगा।

जी हाँ, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। मतलब इंसान के पास कोई एक इंसान होता है जिसके लिए वो अपनी सारी जिंदगी जीना चाहता है। आधुनिक युग की तरफ बढ़ते हैं, हिंदी कविता तो 1900 से अब तक चली, और अगर इसके चरणों की बात की जाए तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, और इसके पश्चात नई कविता आती है। अब अगर हम देखें तो छायावाद में रहस्यवाद बहुत है। वहां पर जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। मैं सुभद्रक मणि चौहान भी लिखती हैं कि आ रही हिमाचल से पुकार है, उदत गरजता बार बार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। और इस थकन को महादेव वर्मा ने कुछ यूं बयान किया कि नहीं नहीं अब गाया जाता देव, थकी अंगुली हैं ढीले तार, विश्व वीणा में अपनी आज मिला लो ये स्फुट झनकार। और जब ये बढ़ती है कविता आगे की ओर तो व्यंग करती है, पूछती है कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। मतलब सांप सभ्य नहीं हुआ तो फिर वो कैसे डस रहा है, कैसे काट रहा है, ये समाज पर व्यंग है। जी हाँ, और यही जब थकन लिए इंसान, जिंदगी की थकन लेकर के जब बैठा तो गीतकार शैलेंद्र ने लिखा, आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा सो गई रंग भरी शाम। जी हाँ, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल बहारे गजल में ठीक 9:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, क्योंकि ये बन चुका है अब हम सभी के दिलों की धड़कन। चलते चलते आपको एक प्यारी सी लोरी सुनाते हैं गीतकार शैलेंद्र से। आज हिंदी दिवस को समाप्त करते हैं, और आसमान वाले ने चाहा तो कल किसी नए शायर के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है हम सभी के दिल की धड़कन।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु, आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी गुनहगार। सब मेहमानों को विदा करने के बाद वंश बुरी तरह थक गया था। शादी में खूब रौनक थी पर अब सब मेहमानों के जाने के बाद पूरा घर सन्नाटा हो गया था। सोचा क्यों ना एक कप चाय पीकर थोड़ी थकान कम कर ली जाए। और फिर वंश ने अपनी मम्मी शालिनी को आवाज दी, मम्मी एक कप चाय बना दीजिए। फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि अन्वी से भी पूछ लेता हूं। बेचारी नए घर में पता नहीं कैसा महसूस कर रही होगी। वंश ने धीमे से दरवाजा खटखटाया तो अन्वी की महीन सी आवाज सुनाई दी, कौन है? वंश बोला, अन्वी मैं हूं। अंदर जाकर देखा, अन्वी एक हल्के बादामी रंग का सूट पहने खड़ी थी। ना होठों पर लिपस्टिक, ना आंखों में काजल, ना ही कोई साज श्रृंगार। ऐसा नहीं था कि वंश कोई पुरानी सोच रखता था, पर अन्वी के चेहरे पर वो चमक जो नई दुल्हन के चेहरे पर रहती है वंश को दिखाई नहीं दी। उसने चिंतित स्वर में पूछा, ठीक तो हो अन्वी, चाय पियोगी? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी। और ये कहते हुए अन्वी का स्वर इतना सपाट था कि वंश उल्टे पैर लौट गया। मनी मन वंश सोच रहा था कि न जाने कैसी लड़की है। उसने तो सुना था कि पत्नी के आने पर पूरे जीवन में खुशी की रुनझुन हो जाती है, पर अन्वी तो न जाने क्यों इतनी सिमटी सिमटी रहती है। रात को वंश जब अपने कमरे में गया तो उसने देखा अन्वी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसको थोड़ी सी निराशा तो हुई, फिर लगा हो सकता है बेचारी थक गई होगी, वैसे भी पूरी उम्र पड़ी है बात करने के लिए। अगले दिन वंश अपने दोस्त नीरज से ये बात बोल ही रहा था तो नीरज हंसते हुए बोला, हर कोई तुम्हारी तरह बातों में शताब्दी एक्सप्रेस तो नहीं हो सकता ना, कुछ समय तो उसे एडजस्ट हो जाएगी। वैसे भी लड़कियां अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आती हैं तो उन्हें एडजस्ट होने में थोड़ा समय तो लगता है ना। उस रात वंश और अन्वी शादी के बाद पहली बार घूमने के लिए मॉरिशस जा रहे थे। वंश ने खुश होते हुए कहा, अन्वी पैकिंग में मदद करूं क्या? अन्वी ठंडे स्वर में बोली, थैंक यू, मैंने कर ली है,

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है गुनहगार। अब तक आपने सुना वंश की शादी अनवी से हुई थी, लेकिन अनवी शादी के बाद एकदम चुपचाप रहती थी, ना कोई साज श्रृंगार ना कोई हंसी मजाक। वंश को बड़ा अजीब लगता था। वो दोनों पहली बार घूमने मॉरिशस जा रहे थे। अब आगे वंश तो अनवी की सादगी पर पहले दिन से ही मोहित था। उसके होठों पर छोटा सा काला तिल, थोड़ी सी उठी

हुई छोटी सी नाक, हंसते हुए गालों पर पड़ते गड्ढे, उठे हुए चीक बोन्स और लहराते काले घुंघराते बाल। अन्वी का रूखापन उसे समझ नहीं आ रहा था। मॉरिशस में होटल के कमरे में पहुंचकर अन्वी ऐसे शांत थी कि जैसे वो वहां पर बिल्कुल अकेली हो। वंश ने सोचा था कि शायद इस ट्रिप में वो थोड़ी खुल जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहां पर भी उसने कोई शौक कोई साज श्रृंगार नहीं किया। वंश झुंझला कर बोला, अन्वी तुम्हें शादी का मतलब पता है या नहीं? अन्वी कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वंश घबरा गया और बोला, अन्वी मेरा वो मतलब नहीं था, सॉरी, मैं तुम्हारा दिल ही दुखाना चाहता था, पर तुम इस तरीके से अलग अलग क्यों रहती हो? अन्वी धीमे से बोली, वंश मुझे कुछ टाइम दे दो। अन्वी मैं तैयार हूं, पर थोड़ा मुस्कुरा तो दो। पूरी ट्रिप में वंश दोस्ती करने की कोशिश करता रहा और अन्वी तो जैसे वहां होकर भी नहीं थी। वंश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किससे बात करे। दोस्तों से बात करेगा तो वो उसका मजाक उड़ाएंगे। अन्वी का ऐसा व्यवहार वंश को अंदर तक परेशान कर देता। वो अन्वी से जितनी भी दोस्ती करने की कोशिश करता, अन्वी पे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कभी वंश को लगता कि अन्वी के मम्मी पापा से बात करे या उसकी सहेलियों से कि क्या अन्वी को कोई समस्या है, पर फिर दूसरे ही पल वो अपना इरादा बदल देता। मॉरिशस से सीधे वंश और अन्वी मुंबई चले गए, जहां वंश की नौकरी थी। अगले दिन वंश के ऑफिस जाने के बाद अन्वी ने घर की काया पलट ही कर दी। वंश जब लौटा तो चकित रह गया। अन्वी की चुप्पी तो नहीं टूटी थी, पर वो घर में वंश के साथ रच बस गई थी। एक दिन वंश ने अन्वी से बोला, घर की याद आ रही है क्या? तुम शादी के बाद एक बार भी अपने घर नहीं गई हो। तुम्हारी पगफेरे की रस्म भी होटल में ही कर दी गई थी। अन्वी ने कहा, नहीं वंश, मैं ठीक हूं। वंश को याद आया कि अन्वी को उसने कभी अपने घर बात करते नहीं देखा था, और ना ही वो और लड़कियों की तरह सारा सारा दिन अपने मोबाइल में लगी रहती थी।

ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है गुनहगार। अब तक आपने सुना, वंश की शादी अनवी से हुई, लेकिन शादी के बाद काफी समय बीत जाने के बाद भी उन दोनों में कोई खास करीबी रिश्ता नहीं जुड़ पाया। वो अभी भी जैसे खोई खोई कटी कटी रहती थी। अब आगे, रात के 8 बज गए थे। वंश अभी तक दफ्तर से नहीं आया था और अनवी बेचैनी से वंश की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही वंश ने घंटी बजाई, अनवी दौड़ कर आई और बोली, कहाँ चले गए थे? वंश मुस्कुराते हुए बोला, अनवी कपड़े बदल लो, चलो आज डिनर करने बाहर चलते हैं। अनवी एक सादा सा कॉटन का सूट पहनने के लिए निकाली, तभी वंश बोला, रुको। फिर शिफॉन का मैरून रंग का गाउन निकालकर अनवी को दिया और साथ में मोतियों का सेट। जब अनवी तैयार होकर आई तो वंश बोला, अनवी आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि तुमसे आंखें हटाने का मन नहीं कर रहा। अनवी शर्माते हुए बोली, वंश तुम कुछ भी बोलते हो। वंश कार ड्राइव करते हुए सोच रहा था, शुक्र है कम से कम अनवी हंसी तो। डिनर करते हुए वंश ने अनवी से उसके शौक और दोस्तों के बारे में बातचीत करी, पर परिवार की बात आते ही अनवी चुप हो गई। वंश को इतना तो समझ में आ गया था कि कोई बात तो है जो अनवी के परिवार से जुड़ी हुई है। एक महीना बीत गया था। अनवी बोलती तो अब भी कम थी, परंतु इस जीवन में रच बस गई थी। वंश की पसंद नापसंद को अनवी जान चुकी थी। खाने में क्या बनना है जैसे छोटी सी बात को भी वो वंश से 10 बार पूछती थी। कोई भी फैसला अनवी अपने आप लेने में जैसे सक्षम ही नहीं थी। वंश धीरे धीरे अनवी को घर के साथ साथ बाहर के काम की भी जिम्मेदारी देने लगा था, जो अनवी घर से बाहर पैर निकालने में पहले 10 बार झिझकती थी, अब वो मुंबई के हर कोने से परिचित थी। परंतु अनवी और वंश का रिश्ता अब भी उतना ही औपचारिक था। देखते ही देखते करवा चौथ का त्योहार आ गया था। वंश ने अनवी के लिए मम्मी के कहे अनुसार साड़ी, गहने और चूड़ियां लाकर दी थीं। करवा चौथ से एक दिन पहले वो शाम को ही आ गया था। उसने अनवी को कुछ नहीं करने दिया। उसके हाथों में मेहंदी लगवाई और रात का खाना बाहर से पैक करवाया। रात में वंश ने अनवी को अपने हाथों से खाना खिलाया तो अनवी बोली, वंश आई एम वेरी हैप्पी। वंश बोला, अनवी मैं कब हैप्पी बनूंगा? अनवी वंश की बात सुनकर एकदम से सकपका गई। करवा चौथ की रात को अनवी इतनी सुंदर लग रही थी कि वंश उसे देखता ही रह गया। पर अनवी फिर भी कुछ गुमसुम सी ही रही। अब तो वंश को ऐसा लगने लगा जैसे उसकी सारी कोशिशें बेकार हैं। वो इतना परेशान हो चुका था कि उसने फैसला कर लिया कि वो 3-4 दिन के लिए गोवा चला जाएगा।

0: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है गुनहगार। अब तक आपने सुना, शादी के बाद लाख कोशिशें करने के बावजूद अन्वी वंश के साथ जैसे खुलकर नहीं जी रही थी। वंश हार मानने लगा था। उसने ये निर्णय किया कि वो यहां से दूर 3-4 दिन के लिए गोवा जाएगा अकेला। अब आगे जब उसने अन्वी को बताया तो अन्वी अपना सामान भी रखने लगी। तभी वंश बोला, अन्वी मैं जा रहा हूं, तुम नहीं। तुम तो जैसे मुझसे दूर दूर भागती रहती हो, तो तुम यहां पर अपनी कंपनी एंजॉय करो। अन्वी को वंश से ये उम्मीद नहीं थी, पर वो क्या बोलती। गोवा से जब चौथे दिन वंश लौटा तो अन्वी वंश से बोली, देखो मैं बुरी ही सही, पर तुम आगे से मुझे छोड़कर मत जाना। पता है तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला महसूस करती हूँ। तुम्हें तो मेरे होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता नहीं था, पर मैं तो एक इंसान हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या तुम मुझे अपने प्यार के लायक नहीं समझती? वंश बोला। अन्वी बोली, नहीं वंश, ऐसा नहीं है। मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ये शादी मेरी गलती की सजा है, वो गलती जिसे मैंने जानबूझकर किया भी नहीं। अचानक अन्वी ने ये कहकर अपनी जीभ काट ली। वंश सकते में आ गया। क्या ये शादी अन्वी के लिए सजा है? वंश को एकाएक बहुत तेज गुस्सा आ गया। मन करा कि अन्वी से पूछे कि जब शादी का मन ही नहीं था तो क्यों उसकी जिंदगी खराब कर दी। अन्वी के मुंह से बात तो निकल गई, पर उसे समझ आ गया था कि वंश आहत हो गया है। शाम को जब अन्वी वंश के लिए चाय लेकर आई तो चुपचाप उसके पास बैठ गई और बोली, वंश मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। अन्वी मुझे पूरा सच जानना है, मुझे इस जबरदस्ती के रिश्ते से मुक्त कर दो। वंश गुस्से से बोला।
1: वंश पूरा सच जानकर आप मुझसे नफरत करने लगेंगे, शायद घर से चले जाने को भी कह दें। वंश मैं आपको खोना नहीं चाहती, ये घर मुझे अच्छा लगता है, अपना लगता है। आप मुझे अपने लगते हो।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है गुनहगार। अब तक आपने सुना, शादी के बाद लाख कोशिशें करने के बावजूद वंश अनवी को खुश रखने में नाकाम था। आखिर एक दिन उसे गुस्सा आ गया और वो उसे छोड़ के 3-4 दिन के लिए घूमने चला गया। लौटा तो अनवी उससे शिकायतें करने लगी। इस पर जब उसने और गुस्सा किया तो अनवी के मुंह से ये निकल गया कि ये शादी उसके लिए एक सजा थी। अब वंश सारी सच्चाई जानना चाहता था। अब आगे वंश ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, अनवी, मैं तुमसे एक पति की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर बात करना चाह रहा हूं। अनवी ने बताना शुरू किया, जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में थी तब मेरी जिंदगी में रोशन आया था। मैं उससे बहुत प्यार करने लगी थी और वो भी मुझे बहुत चाहता था। वंश, मैं रोशन से ही शादी करना चाहती थी। मैं उसके प्यार में पागल हो गई थी। जब मेरा परिवार लड़के देखने लगा तो मैंने अपने परिवार को रोशन के बारे में बताया, पर मम्मी पापा ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हमारे परिवार की शादी उस परिवार के साथ नहीं हो सकती। पर मेरे ऊपर तो इश्क का जुनून सवार था। जब मैंने रोशन को बताया तो उसने मुझसे समय मांगा। फिर एक दिन जब मुझे पता चला कि मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो मैं घर से निकल गई। मैं रोशन के पास पहुंच गई, पर रोशन ने मुझे अपनाने से मना कर दिया। जब मैं रोशन के हाथों अपमानित होकर अपने घर पहुंची तो मम्मी ने मुझे आड़े हाथों लिया। भैया ने 3-4 थप्पड़ लगा दिए। पापा ने मुझे नफरत भरी नजरों से देखा। सब ने मुझे गिरी हुई लड़की मान लिया। किसी ने मुझसे बात तक नहीं करी। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी, चाहती थी कोई मुझसे बात करे, मेरे साथ मेरे दर्द को बांटे। वंश, मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने रोशन पर भरोसा किया, पर कभी लगता है मैं बेवकूफ हूं। मुझे कोई फैसला लेना नहीं आता। और इतना कहकर अनवी फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद झिझकते हुए बोली, वंश, क्या आप भी मुझे चरित्रहीन गिरी हुई लड़की समझ रहे हैं? वंश ने जवाब दिया, अनवी, उस हिसाब से तो मैं तुमसे ज्यादा चरित्रहीन हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी तुमसे पहले 3 लड़कियां आई थीं। अनवी फिर सहमते हुए बोली, लेकिन अगर वही सब मेरे दिमाग पे जिंदगी भर हावी रहा तो? अनवी, मेरे लिए तुम्हारा प्यार और सम्मान सबसे जरूरी है, और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम इससे निकलने की तो कोशिश करो। सबसे पहले अतीत के पन्ने को फाड़ दो। खुद को अतीत से मुक्त करके मुझे खुले दिल से अपना लो। और इसका एक ही तरीका है, रोशन को और अपने परिवार के साथ साथ खुद को भी माफ कर दो। तुम्हारे परिवार ने जो भी किया वो सही था या गलत मुझे नहीं पता, पर उन्हें माफ कर दो और आगे बढ़ो। जब तक तुम खुद को अतीत से मुक्त नहीं करोगी, इस रिश्ते को अपना नहीं पाओगी। उस रात घर का कोना कोना खुशी से भरा था। अनवी लाल और हरी साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी।
वंश ने आगे बढ़कर अन्वी को गले लगा लिया। अन्वी भी चुपके से वंश के गले लग गई। उन दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो आज पहली बार मिले हैं।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी गुनहगार। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं, तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

संगीत तो मेरा देश है और सब तक मेरा धर्म, सुरताल मेरी जाति और रियाज मेरा कर्म। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस स्वर कोकिला की बात करने जा रहे हैं वो है हमारी प्यारी लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी की आवाज ना ही किसी पहचान की मोहताज है, ना ही किसी विवरण की, क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसी आवाज है जिसे भारत की तरह एक नाम ही काफी है। भारत, भारत की पहचान हम सबकी प्यारी लता दीदी। स्वर कोकिला की मधुर तान भारत की पहचान बनी लता मंगेशकर महान। इस प्यारी सी आवाज के साथ में आज का शो हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी प्यारी आरजे ख्वाहिश के साथ में। जी हाँ, आज ये ख्वाहिश आज लेकर के आई हैं लता मंगेशकर जी की बहुत सारी ऐसी अनसुनी अनकहे किस्तों को आपके साथ शेयर करने के लिए, जो कि हम कभी भी उन चीजों को, उन बातों को भूल नहीं पाते हैं। लता जी के लिए जितना भी कहा जाए, जितना भी उनके बारे में बात की जाए वो कम है। जैसे समुद्र से अगर हम एक बाल्टी पानी निकाल लें, या फिर भर भर के हम कितने भी टैंक पानी निकाल लें, क्या वो कम हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह जब हम बहुत सारी उम्मीदों के साथ में कहीं जाते हैं तो हमारी और उपेक्षाएं बढ़ जाया करती हैं। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे। लता जी ने संगीत की शिक्षा अपने पिता से ही पाई। पिता के अचानक से निधन के बाद में उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में परिवार की जिम्मेदारी संभाली और फिल्मों में गायन व अभिनय का आरंभ किया। कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारियां सर पे आने लगे तो हमारे ऊपर वो अलग से एक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण किस तरीके से करें। ठीक वैसे ही लता दीदी ने भी अपनी सारी इच्छाओं को दमन करते हुए उस पद पर आगे गईं, जहां पर उन्हें बहुत सारी उपलब्धि तो मिली लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बचपन खोया आगे की बुलंदियों को पाने के लिए। तो आइए लता दीदी के इस प्यारे से एक गीत के साथ, जो कि उन्होंने अलग अलग स्वरों में अलग अलग पहचान के रूप में गाए हैं। कई गाने तो उन्होंने पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए हैं, जैसे देशभक्ति गीत हो गया, बेवफाई सॉन्ग हो गया, रोमांटिक सॉन्ग्स हो गया, या फिर किसी को मनाने का सॉन्ग हो गया। आज का जो हमारा दौर हो रहेगा, आज का जो सफर रहेगा, वो कुछ बेवफाई वाले सॉन्ग्स की ओर हम बढ़ेंगे। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत एक उनकी ही आवाज में।

सन 1949 में फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला ने उन्हें रातों रात ख्याति दिखाई। उसके बाद वे हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायिका बन गईं। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, बंगाली तथा अन्य कई भारतीय भाषाओं में हजारों गाने गाए। उनकी मधुर पर सुरीली आवाज ने उन्हें स्वर कोकिला की उपाधि दिलाई। यूं ही स्वर कोकिला की उपाधि उन्हें नहीं मिली, जब उन्होंने अलग अलग भाषाओं में बहुत सारे गीतों को गाया तो हिंदी सिनेमा ने भी उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए बुलाया। जब उनसे मराठी गाना गवाया गया तो भी वह उसमें खरी उतरी। चाहे वो गुजराती हो, बंगाली हो, किसी भी भाषा में उन्होंने अपनी ख्याति को फैलाने के लिए बहुत कुछ अपने आप को आगे बढ़ाया और फिर एकाकर एक बार उन्हें उनकी मधुर व सुरीली आवाज ने उन्हें स्वर कोकिला की उपाधि दिलाने में कुछ भी पीछे नहीं रहा। लता जी ने लगभग 7 दशकों तक भारतीय संगीत जगत पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। उन्होंने शंकर जयकिशन, एसडी वर्मन, आरडी वर्मन, मदन मोहन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। ऐ मेरे वतन के लोगों जैसा उनका देशभक्ति गीत भी आज भी भारतीय को, हर एक भारतीय को भाव विभोर कर देता है। ठीक उसी तरीके से उनके कई ऐसे पद्म भूषण वाले गाने, पद्म भूषण इसलिए क्योंकि कई संगीतकारों के साथ में जब उन्होंने काम किया तो उन्हें पद्म भूषण भी हासिल हुए। उनके योगदान को देखते हुए उनके अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

लता जी की अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो पंडित पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर मराठी थिएटर के गायक व संगीतकार थे। लता जी को संगीत संस्कार बचपन से ही मिले थे। वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर यानी बचपन से ही एक ऐसा बीज होता है जिसे सिर्फ वो अंकुरित होने के लिए हमें सच्चे और एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो हमें उसको सींच सके, उस बीज को सींचने के बाद उसको अंकुरित कर सके और एक फूल की तरह हमें खिला सके। लता जी के पिताजी ने यही काम किया। उनकी सारी

कहा गया ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने 36 से भी अधिक भारतीय भाषाओं में गाया, परंतु हिंदी और मराठी गीतों में उनका योगदान सबसे ज्यादा रहा। लता जी ने लगभग 30,000 से अधिक गाने गाए, जो किसी भी गायक के लिए विश्व कीर्तिमान से कम नहीं रहा। इसीलिए उन्हें आज भी हम अपने जहन में, हम अपने दिल में यूं बसाए बैठे हैं, जैसे कि कोई अपनी बहुत ही प्यारी सी याद को कभी न भूलने वाला एक हिस्सा बना के रखता है। कहते हैं जब हम दर्पण देखते हैं तो अपने आप को देखते हैं, लेकिन जो संगीतकार होते हैं, जैसा कि लता जी ने हमेशा से यही किया, जब वो दर्पण में देखती थी तो ऐसे कई संगीतकारों को अपने सामने पाती थी, अपने अपने सामने देखती थी कि किसी दिन मुझे ऐसे संगीतकारों के साथ मिल करके गाने गाने हैं। जिस बच्चे के अंदर अगर ये ललक है, अगर ये कोशिश है कि आगे चल करके हमें इस संगीतकार के साथ बैठ करके हमें भी गाना है, हमें भी उनकी छवि में अपने आप को डालना है, तो ही मेहनत, सफलता और संघर्ष की कहानी को हम जन्म दे पाते हैं। इन सब के बीच में रही हमारी लता दीदी। आइए लता दीदी का एक और गाना सुनते हैं, जो कि उन्होंने बेवफाई के रूप में गाया और बहुत ही सबको प्रिय रहा।

बाय।

कहते हैं कि पुरस्कारों की छड़ी में अगर सबसे पहला पुरस्कार जब हमारे जीवन में कोई मिलता है तो हम उसे हमेशा से याद रखते हैं। ठीक वैसे ही लता दीदी को तो कई पुरस्कार दिए गए, उन्हें स्वर कोकिला भी कहा गया, लेकिन कुछ ऐसे पुरस्कार जिन्हें वो हमेशा से अपने जहन से लगा के रखती थी जो कि उनकी सम्मानित पुरस्कारों में से एक थे। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न 2001, पद्म भूषण 1969 में तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 से अलंकृत किया गया, क्योंकि ये पुरस्कार वो थे जिन्हें वो हमेशा अपने पास रखती थी। कहते हैं कि जब हम किसी भी उपलब्धि पे पहुंचते हैं ना, तो हमें बहुत सारे पुरस्कार तो मिलते ही हैं और हमारा घर उन पुरस्कारों से भर जाता है। लेकिन आज भी जब लता दीदी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता था तो ऐसा सुनने में आता है कि उनका एक कमरा, एक से बड़ा सा हॉल जिसमें उन्होंने कई पुरस्कारों को इस तरीके से रखा है मानो उनकी जीवन भर की पूंजी हो, यानी कि किसी भी इंसान के लिए पूंजी क्या ही हो सकती है कि हम अपने लिए, हमने अपने लिए ये जमीन बनाई, हमने अपने लिए इतना सोना बनाया, हमने अपने लिए इतने पैसे इकट्ठे किए, लेकिन लता दीदी के लिए उनका ये पुरस्कार का दिन, ये पुरस्कार सारे उनकी महत्वपूर्ण पूंजियों में से एक रहा और उन्होंने अपने घर को बिल्कुल इस तरीके से सुशोभित करके रखा जैसे उनकी जीवन भर की पूंजी उनसे कोई छीन रहा हो। और उन्होंने अपने घर के एक कोने में, यानी कि एक बड़े से कमरे में, उन्होंने आज भी अलंकृत करके उन्हें हमेशा के लिए यादों के बीच में समेट दिया। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो कि लता दीदी की आवाज में है।

आवाज उनकी अमर गूंज है और हर दिल में बसी लता दीदी की आज भी मौज है। 6 फरवरी 2022 को उनका मुंबई में निधन हो गया। उनके जाने से संगीत जगत ने अपनी सबसे अनमोल धरोहर खो दी, फिर भी उनकी आवाज आज सदैव हमारे दिलों में गूंजती रहेगी और आने वाली पीढ़ियां उनसे हमेशा से प्रेरणा लेती रहेंगी। गायन के अलावा वे संगीतकार भी रहीं। नाम अनंत घन और मराठी फिल्मों के लिए संगीत दिया। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय कोरोना का वक्त चल रहा था, उम्र संबंधी जटिलताओं के चलते उनका निधन हुआ। उन्हें विरासत की ये तो कहा जाता है कि उन्हें विरासत में एक बहुत बड़ी धरोहर मिली, एक बहुत बड़ा नाम भी मिला जो कि स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है और आज उनका नाम सदैव भारतीय जगत में अमर रहने वाला है, क्योंकि कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो सीधे हमारे यहाँ से जाकर के हमारे दिलों से तो कभी नहीं जाते हैं, लेकिन वो आसमान में जाकर के एक वो तारा बन जाते हैं जिन्हें देख करके गर्व से हम ये कह सकते हैं कि वो रही हमारी स्वर कोकिला।

सभी संगीतकारों के, जैसे कि आपने सॉन्ग सुने हैं जिसमें लता जी हैं और आशा जी हैं, आर डी वर्मन साहब जी हैं और उसके साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, लेकिन लता दीदी ने जब इन सब के साथ में काम किया, इन सब के साथ में गाने गाए, तो उनको एक ही नाम से पुकारा जाता था, हमारी प्यारी लता दीदी। लता दीदी की सादगी, लता दीदी का चलन, लता दीदी की बोली इस तरीके से थी मानो सबको मोह लेने वाली। जब वो सेट पे आती थी तो एक उनकी बहुत ही प्यारी सी आदत हुआ करती थी कि जब वो कोई भी सॉन्ग को गाती थी, जब वो उनके साथ में बैठ करके रिकॉर्डिंग करती थी, तो वो चप्पल कभी नहीं पहनती थी। आप जानते हैं क्यों? बताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो अपने काम को पूजा के नाम से ही माना करती थी। वो कहती थी हमारा काम ही हमारी पूजा है, हमारी उपासना है। इस वजह से आज तक उन्होंने जितने भी गाने गाए थे, उन्होंने कभी भी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के टाइम पर कभी भी चप्पल नहीं पहनी थी। यहाँ तक कि जब भी वो लाइव शो करती थी, इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट करती थी, तब भी वो बिना चप्पल के ही करती थी। तो ऐसी लता दीदी के साथ में ऐसी हमारी स्वर कोकिला, जो उन्हें इतनी बड़ी उपाधि यूं ही नहीं दी गई। साथ ही साथ में जब भी वो कहीं पर बड़ी से बड़े शोज में जाती थी, रिकॉर्डिंग करती थी, तो उन्हें खादी की साड़ी बहुत पसंद हुआ करती थी। सिंपल रहना, कहते हैं ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सेम ये स्लोगन उन पर फिट होता था। खादी की सफेद साड़ी, क्रीम कलर की साड़ी, पिंक कलर की साड़ी उनकी पहचान हुआ करती थी, क्योंकि सादा कपड़ा उन्हें बहुत ज्यादा ही पसंद हुआ करता था। सभी संगीतकारों के साथ जब वो काम करती थी, तो एक बार उनके जहन में ये बात आई कि हम यूं ही बिल्कुल साधारण से रहते हैं, कोई मुझे देख करके ये ना समझे कि मैं ऐसे क्यों हूँ। तो उनकी एक बिंदी लगाने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, एक छोटी सी काली बिंदी लगाती थी बस। तब क्या था, उनकी खूबसूरती में, उनकी सादगी में 4 चांस लग गए थे। संगीत के साथ साथ उनकी सादगी इस तरीके से फैली जैसे मानो सूर्य की किरणें पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जब फैलती है तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। बेवफाई के बहुत सारे गाने जब उन्होंने गाए, तो उनमें से कुछ ऐसे गाने जो आज के शो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं, एक और प्यारा सा गाना।

अगर हम बात करें लता दीदी के शुरुआती दिनों में, तो उनकी बहुत सारी ऐसी तकलीफें सामने आती हैं कि जिसके पीछे उनका ये बुलंदी वाला जो सफर रहा, उन्हें पाना वो वाकई में डिजर्व करती थी। पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी तो उन पर आ ही गई थी, लेकिन शुरुआती तौर पर शुरुआती वर्षों में उन्हें कई बार ये भी कहा गया कि उनकी आवाज बहुत पतली है और उन्हें अपनी आवाज पर बहुत ज्यादा मेहनत और अभ्यास भी करना पड़ेगा। काफी पृथक प्रयासों से उन्हें इस आवाज जो आज तक हमारे जहन पे है, काफी प्रयास करने के बाद में, काफी अभ्यास करने के बाद में इस आवाज को वो सभी के सामने प्रभावित कर पाई। साथ ही साथ में तब से और आज तक उन्होंने कई ऐसे फिल्में की जैसे बरसात, आंदोलन, बाजार, आशियाना जैसी फिल्मों में गाकर के अपनी पहचान को आगे बढ़ाया। ये थी पहचान उनके शुरुआती तौर पर। 1949 में फिल्म महल का गाना आने वाला आएगा आने वाला सुपरहिट हुआ और फिर उन्हें रातों रात उपलब्धि मिल गई थी। इस दौर में उन्होंने रोमांटिक, भक्ति, लोकगीत, गजल हर शैली में अपनी आवाज दी और फिर उन्होंने कुमार, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ में अपनी आवाज को कई विविधताओं के रूप में प्रस्तुत किया। 90 के दशक में भी लता जी ने हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, मोहब्बतें जैसी फिल्मों में गाकर यह साबित किया कि उनकी आवाज हमेशा जवां ही रहेगी। दीदी तेरा देवर दीवाना और तेरे लिए जैसे गाने आज भी सुपरहिट हैं, जो कि हर एक शादी में अगर ये गाने ना चलें तो वो शादी अधूरी सी लगती है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए हमने कई बार उन्हें सम्मानित होते हुए देखा और सुना है। लता दीदी ने विदेशों में भी कई ऐसे कार्यक्रम और शोज किए जो दुनिया भर में भारतीय संगीत का मान बढ़ाते रहे और हमेशा उनके लाइव शो हम जब आज देखते हैं तो मान बढ़ाएंगे ही। उन्हें भारत की नाइटिंगेल और क्वीन ऑफ मेलोडी भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत उनकी आवाज में।

स्वर्णिम युग की बात करें तो 1955 से लेकर के 1975 के बीच में उनका स्वर्णिम युग कहलाता है। इस दौर में लता दीदी ने संगीतकार शंकर जयकिशन, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे बहुत सारे ऐसे ख्याम के साथ में मिलकर के सदाबहार गीत गाए, इस जो की गाने आज भी हिट नहीं सुपरहिट माने जाते हैं। प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम, और साथ ही साथ में अजीब दास्तां है ये, दिल अपना और प्रीत पराई, लग जा गले वो कौन थी, ए वतन के लोगों जिसने पूरे देश को रुला दिया। पंडित नेहरू की भी आंखें भर आई थीं जब लता दीदी ने ये गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों। साथ ही साथ में जब उनकी सफलता और विविधता आगे बढ़ती गई तो कई ऐसे सामाजिक और पारिवारिक उत्सवों में भी जाकर के उन्होंने कई ऐसे गीत और कई

0: 10 out of 10.
1: क्यों नहीं चाहिए? चल
0: ओके देन। भरे कलब में रह जाएगी बिल्लो, फिर कल ही तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल।